सुप्रभात। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 मई सन 2026।

0: 101.9 MHz FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों के पश्चात हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज

0: हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमेरिकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण हम कर रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 101.9 MHz FM बैंड पर, आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार, आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है, आदर्श अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। आज से एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायक अनूप जलोटा, प्रस्तुति मनुषा जैन की। सुबह 7 से भोले बिसरे गीत 7:30 से सुनेगा हम हैं राही प्यार के। त्रिवेणी ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 8:15 से और दोपहर 2 से। चित्रलोक ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे सुबह 8:30 से। सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से सुनेगा कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता महिपाल पर।

सुबह 10 बजे से पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा में सुनेगा थैलेसीमिया की बीमारी। डॉक्टर आशय प्रमोद करपे से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत, प्रस्तुतकर्ता अनिता पटेल। सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे से आपको कार्यक्रम सुनवाएंगे रंग तरंग। दिन में 12:05 से सुनेगा यादों की महफिल। सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 1 बजे से।

सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम का वक्त होता है दोपहर 2:30 से। सखी सहेली ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे दोपहर 3 से। शाम 4 से पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेल्युलॉयड के सितारे। इसके अंतर्गत अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की कांचन प्रकाश संगीत से बातचीत। प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत। शाम 5 से छाया गीत का पुनर्प्रसारण। शाम 5:30 से आपको सुनवाएंगे तराने नए पुराने। और शाम में झरोखा सुनेगा 6:30 से। शाम 6:35 से संध्या रंजन। 6:45 से संगीत सरिता। शाम 7 से आपको सुनवाएंगे जयमाला। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस सुनिएगा। रात 8 से हवा महल के अंतर्गत झलकी सुनिएगा विश्व प्रेमी सम्मेलन। लेखन मदन मोहन खन्ना का, निर्देशन नीना नाथ का। चित्रलोक ये कार्यक्रम सुन सकेंगे रात 8:15 से। आपके लिए रात 9 से। छाया गीत ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 10 से। आलेख एवं सर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात, रात 10:30 से। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरितमानस गान भाग 186।

भरत अपनी माता कैकेयी के कठोर आचरण से क्षुब्ध होकर आत्मग्लानि की आग में जल रहे हैं। पति समेत पूरे कुल का सर्वनाश कर डालने वाली माता की कोख से जन्म लेना उनके लिए घनघोर पातक सिद्ध हुआ है। पश्चाताप की ज्वाला शांत नहीं होती। मन में ये धारणा पुष्ट होती जा रही है कि उनसे बड़ा पापी इस जगत में कोई नहीं है। शत्रुघ्न भी माता की कुटिलता सुनकर जल रहे हैं, किंतु उनका वश नहीं चलता कि क्या करें, कि तभी कुबड़ी मंथरा भांति भांति के सुंदर वस्त्रों और आभूषण से लदी फदी उनके सामने आ गई। शत्रुघ्न का क्रोध अपनी सीमा पार कर गया, मानो आग को आहुति मिल गई हो। उन्होंने उसके कुबड़ पर जोर से एक लात मारी। चीखती चिल्लाती मंथरा जो धरती पर गिरी तो कुबड़ फूट गया। शत्रुघ्न ने झूठा पकड़ उसे घसीटना शुरू किया कि तभी भरत ने उन्हें शांत करते हुए मंथरा को उनकी पकड़ से छुड़ा दिया। पश्चाताप और ग्लानि की आग को शीतल करने के लिए तब दोनों भाई माता कौशल्या के पास पहुंचे। शोक और संताप से कौशल्या का शरीर सूख गया है। लगता है जैसे सोने की कल्पलता को पाला मार गया हो। भरत और शत्रुघ्न को देख उन्हें हृदय से लगाने को वो दौड़ी, किंतु मूर्छित होकर गिर पड़ी। भरत उनके चरण पकड़ विलाप करने लगे। कभी तो वो माता कौशल्या से दिवंगत पिता वनवासी राम लक्ष्मण तथा सीता के दर्शन करा देने की विनती करते हैं, तो कभी माता कैकेयी की करतूत पर सिर धुनते हैं।

0: सरिता में आज से हम आरंभ कर रहे हैं भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे विशेष अतिथि हैं श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, आधुनिक जीवन के कोलाहल में मन अक्सर ही विचलित हो जाता है। मन के इस विचलित प्रकाश को जब आध्यात्म के शीशे से गुजारा जाता है तब भक्ति के विविध रंग उपस्थित हो जाते हैं। संगीत सरिता का प्रवाह आज से कुछ दिनों तक भक्ति के सागर में समाहित होगा। इन कड़ियों में भक्ति के अनेक भावों, भक्ति के अनेक रंगों से हम परिचित होंगे। आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है उन्हें, जिनके गाए भजन सुनकर हमारी सुबह होती है, जिनकी गाई भक्ति रचनाएं सुनकर हम सबका बचपन समृद्ध हुआ, जिनके भजन के सुरों से हम अलौकिक संसार में पहुंच जाते हैं। तो हमारे भीतर भक्ति समर्पण और जीवन दर्शन की लौ जलाने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री अनूप जलोटा जी। अनूप जी श्याम चौरासी घराने के प्रसिद्ध गायक पद्मश्री श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा के सुपुत्र हैं। पिछले कई दशकों से अपनी गायकी के माध्यम से श्रोताओं पर रस वर्षा कर रहे हैं। भक्ति संगीत पर आधारित इस श्रृंखला की पहली कड़ी में आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद अनूप जलोटा जी का। स्वागत है अनूप जी आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: अब हम तबला वादक आशीष झा जी का स्वागत कर रहे हैं।
3: नमस्कार।
1: हारमोनियम वादक अजय जोगलकर जी स्टूडियो में मौजूद हैं। अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद ममता जी।
1: श्रोताओं, जैसा कि श्रृंखला का नाम है ऐसी लागी लगन, आज हम इसी भजन से शुरुआत कर रहे हैं। अनूप जी, ऐसी लागी लगन जो भजन है हम सब के मन में है और जबान पे है, जब भी भजन का जिक्र होता है तो शायद हम ये भजन सबसे पहले गुनगुनाते हैं।
2: ऐसी लागी लगन की प्रसिद्धि कुछ इस प्रकार की है कि मैं कभी कहीं एयरपोर्ट पे घूम रहा हूँ या कहीं किसी शॉपिंग सेंटर में हूँ तो कोई व्यक्ति मेरे पास से गुजरता है, मुझे देखता है और ऐसी लागी लगन गुनगुनाता हुआ निकल जाता है
1: जी।
2: वो ये बताना चाहता है कि मैंने आपको पहचान लिया
1: जी।
2: तो मेरे नाम के साथ और मेरी उपस्थिति के साथ ऐसी लागी लगन कुछ इस तरह जुड़ गया। ये गाना कैसे बना इसकी बड़ी सुंदर कहानी है कि 1977 में मैं न्यू जर्सी अमेरिका में एक अपने मित्र के घर लंच खा रहा था। उनकी पत्नी भी थोड़ा गाना गाती थी तो उन्होंने, जब मैं खा रहा था खाना, तो एक छोटी सी बुक मेरे हाथ में दी कि देखिए इसमें कुछ भजन लिखे हैं। और मैं वो लेफ्ट हैंड से वो एक एक पेज पढ़ता जा रहा था, राइट हैंड से खाना खा रहा था, और एक पेज पे मेरी नजर टिक गई और उस पे लिखा हुआ था ऐसी लागी लगन। इंदिरा देवी का लिखा हुआ है भजन है। और मैं इसको पढ़ता रहा 3-4 बार खाना खाते खाते, और बाद में जब खाना खत्म हो गया तो मैंने उनसे कहा कि जरा हारमोनियम लाइए, और मैंने उनको वो गाना गा के सुना दिया। मतलब खाना खाते खाते उसकी ट्यून बन चुकी थी। तो वो एक बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण रहा होगा कि उसी क्षण में उस गाने की रचना हुई, जिस रचना से मुझे सबसे ज्यादा पहचाना जाता है। और मैं चाहूंगा कि वो भजन मैं आपको यहीं गा के सुना दूं। हमारे साथ आशीष जी अजय जी बैठे हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्र के महान कलाकार हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आज विविध भारती में आप दोनों हमारे साथ संगत कर रहे हैं।

0: वाह क्या बात है, हम तो भक्ति भाव में बिल्कुल खो गए थे, मंत्रमुग्ध हो गए होंगे हमारे श्रोता भी। अब अनूप जी, हम चाहते हैं कि मीराबाई की एक भक्ति रचना का जिक्र हो तो कैसा रहेगा?
1: जरूर, मीराबाई ने तो ऐसे सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं और उसमें प्रेम तो है लेकिन उसके साथ समर्पण भावना इतनी बड़ी है जो आज तक लोग सीखते हैं।

लोगों ने मीराबाई से प्रश्न किया कि मैंने लीनो गोविंद मोल, इसका अर्थ हुआ कि गोविंद खरीदा है। तो अगर गोविंद मोल लिया है, खरीदा है, तो उसका कोई मूल्य होगा, हमको भी बता दो, हम भी खरीद लाते हैं। तो मीराबाई बता रही हैं भक्तों को कि आप भी गोविंद को खरीद सकते हैं और उसका मूल्य क्या है ये बता रही है।

0: क्या बात है अनूप जी, वैसे तो सच कहा जाए तो अनूप जलोटा को जरूरत ही नहीं है कि अपने तालीम के बारे में बताएं या घराने के बारे में बताएं, लेकिन संगीत की एक परंपरा रही है अपने घराने के बारे में चर्चा करना। तो हम चाहते हैं, शाम चौरासी आपका घराना रहा है, थोड़ा सा आप प्रकाश डालें।
1: तालीम की तो बात यह है कि अभी सीख रहा हूँ और सीखता ही रहूंगा। पंजाब का प्रसिद्ध घराना है शाम चौरासी घराना, जहाँ के बहुत प्रसिद्ध गायक हुए सलामत अली नज़ाकत अली खान साहब, जो पाकिस्तान चले गए वहां रहे, लेकिन हिंदुस्तान में मास्टर रतन यहीं पे रहे हदियाबाद पंजाब में। उन्होंने लोगों को सिखाया, उसमें मेरे पिताजी ने उनसे सीखा और मैंने अपने पिताजी से सीखा। तो शाम चौरासी घराने की जो विशेषता है वो इसकी स्पष्टता है, इसकी क्लियरिटी है, कि शब्दों की बहुत क्लियरिटी होती है। जो भी भजन या ख्याल हम गाते हैं उसमें एक एक शब्द इतना साफ होता है कि आप उसको भी समझ सकते हैं कि क्या बात कही जा रही है
0: जी।
1: राग तो समझ में आ ही जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझ में आ जाएगा कि कहा क्या जा रहा है। यहाँ तक कि सरगम भी इतनी स्पष्ट होती है, इतनी साफ होती है कि उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो शाम चौरासी घराने की ये जो खूबियां हैं ये हमने अपने गाने में उतारी और अपने लाइट म्यूजिक में भी उतारी, जो भजन गजल में गाता हूँ उसमें भी उतारी, जिससे कि इसकी सुंदरता बढ़ जाती है।
0: बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि बस आंख बंद करके बिना कुछ पूछे सुनते जाएं आपके भजन और आपकी बातों को, लेकिन वक्त का जो दरिया है बहने लगता है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है। और अब वक्त हो चला है इजाजत लेने का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अनूप जी आपका धन्यवाद और अजय जी आपका धन्यवाद। हम कल मिलते हैं अगली कड़ी के साथ।
2: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं श्री अनूप जलोटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
3: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीष

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में स्वर्ण सुंदरी फिल्म के गाने के साथ। इसे लिखा है भरत व्यास ने और संगीत से संवारा है आदि नारायण राव ने।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा और एसडी बर्मन।

विविध भारती के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण हम कर रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 7:15 होना चाहते हैं और ये वक्त है हमारे स्टूडियो से हमारी आज की सभा के कार्यक्रमों के बारे में आपको स्मरण कराने का। अब से कुछ ही पलों के बाद यानी 7:20 पर आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण हम करेंगे और 7:30 पर होंगे उपस्थित लेकर भक्ति संगीत का गैर फिल्मी कार्यक्रम अमृत कलश, जिसमें आज आप सुनेंगे कुछ भजन। समाचार प्रभात प्रातः 8:00 समाचारों का ये हिंदी बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे और सुर संगम में कुछ गैर फिल्मी नगमे आप सुनेंगे प्रातः 8:15 पर। 8:30 पर प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम होगा जिसमें आज की बात के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस पर और साथ ही हम आपको सुनवाएंगे समसामयिक काव्य पाठ। कवि होंगे

डॉक्टर मनमोहन सरकार। फिल्म संगीत और समाचार पत्रों की सुर्खियां इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे। आपके संदेश आपके गीत व्हाट्सएप पर आधारित हमारा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा प्रातः 9 बजे और हेलो अयोध्या सजीव फोन इन कार्यक्रम होगा 9:30 पर। लोकरंग में अवधि लोकगीत प्रसारित किए जाएंगे 12:30 पर और 1 बजे होंगे उपस्थित कुछ तुमने कहा फेसबुक श्रोताओं के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम लेकर। गीतांजल में एक बार फिर गैर फिल्मी गीत भजन और गजल आप सुनेंगे 2:00 और 2:30 पर नारी जगत कार्यक्रम होगा जिसमें आज चर्चा का विषय होगा पौधों की सेहत का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। साथ ही आप सुनेंगी वार्ता कुसुमलता मौर्य के शिशु के व्यक्तित्व निर्माण में प्रारंभिक महीनों का महत्व। शाम 5 बजे युवाणी कार्यक्रम होगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस पर चर्चा के अलावा भारतीय इतिहास से श्रृंखला में आप सुनेंगे मौर्यकालीन स्थापत्य के बारे में। चक्रव्यूह के सवाल जवाब भी इसी कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं। लोक संगीत में लोकगीत सुनवाए जाएंगे 5:30 पर और शाम सुहानी में फिल्मी गाने 6:10 पर। गूंजे स्वर गांव के लोक संगीत पर आधारित हमारा एक कार्यक्रम होगा 6:30 पर और 6:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे जिसमें चर्चा होगी गर्मियों के ठंडे पेय पदार्थ के बारे में। साथ ही डॉक्टर स्नेहा सिंह से मंजू मौर्य बातचीत करेंगी किसान बहनें अचार मुरब्बा बनाकर लाभ कमाए विषय पर। गीत गुंजन प्रसारित किया जाएगा 8:15 पर और महफिल गजल में गैर फिल्मी गजलें आप सुनेंगे 9:15 पर। 9:30 का वक्त होगा हेलो अयोध्या का जो कि सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होता है। रात्रि 10 बजे राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत खेल दर्पण का अनुप्रसारण करेंगे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। श्रोताओं ये तो थी जानकारी हमारी आज की सभा के कार्यक्रमों की जिन्हें लेकर हम उपस्थित रहेंगे रात्रि 11:10 पर आकाशवाणी के अयोध्या स्टूडियो में। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का किया आह्वान। पश्चिम एशिया संघर्ष को

दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री, कहा अटूट आस्था दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर। नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी

0: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। और केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल गुजरात के एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
0: इस बीच केंद्र सरकार ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुए मंत्री समूह की बैठक में यह जानकारी दी गई। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ लोगों को यह याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रदेश के विभिन्न जिलों में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल हुए। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित इस कार्यक्रम में सोमनाथ मंदिर गुजरात में हो रहे मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष महापूजा का सजीव प्रसारण भी देखा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हम सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार होते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान सोमनाथ महादेव मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर सहित अनेक पवित्र तीर्थस्थल अपने वैभव के साथ विकास की नई यात्रा तय कर रहे हैं।
2: सोमनाथ फिर उसी तेजस्विता के साथ भारत के गौरव का उद्घोष कर रहा है। सोमनाथ महादेव के स्वाभिमान पर्व के साथ ही उसके पुनर्प्रतिष्ठा के अमृत पर्व के साथ जोड़ करके काशी विश्वनाथ धाम में इस आयोजन के कार्यक्रम को अपनी आंखों से साक्षात दर्शन कर रहे हैं।
0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव के पुनर्जागरण का महा

0: यज्ञ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल एआईआर न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने प्रदेश में निवेश के नए द्वार खोले हैं।
1: मैं इस बात को कह सकता हूं कि जब हम लोग आए थे 17 में, तब यूपी इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 13वें 14वें स्थान पर था। आज वो देश का टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश का अपना स्थान है। मैं मानता था कि तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। सबसे पहली सुरक्षा, दूसरा हम प्रदेश के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस से उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को उभारें और यूपी के अंदर हम अलग अलग सेक्टर की सेक्टोरल पॉलिसीज तैयार करें। और जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी वो थी सबसे पहले हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ को आगे बढ़ाना।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अयोध्या में 2 दिवसीय श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्र ने बताया कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर स्थित हनुमान जी की गैलरी के सभी कार्य 30 मई तक पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में स्थित अत्याधुनिक संरक्षण प्रयोगशाला में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के 2 विशेषज्ञ अगले 3 वर्षों तक स्थानीय कर्मचारियों को संरक्षण तकनीकों का प्रशिक्षण देंगे।
3: कोई टेक्सटाइल पे पेंटिंग हो, कोई अन्य प्रकार की कलाकृति हो, जो खुदाई में पत्थर मिले, तो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन की लैब जो बनाई गई है यह IGNCA दिल्ली में है, उनके साथ समझौता करके यह लैब बनाई गई है। उन्होंने 2 अनुभवी कर्मचारी अपनी संस्था से दिए हैं, लगभग 3 साल में वह हमारे स्टाफ को प्रशिक्षण देंगे।
0: राजस्व परिषद के अधीन लेखपाल के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 21 मई को राज्य के 44 जिलों में मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक की तरफ से कल जारी सूचना के अनुसार परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को आवंटित जिले की अग्रिम सूचना आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का किया आह्वान। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री, कहा अटूट आस्था दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर। नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। और केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी

0: जगह होती है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
0: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण हम कर रहे थे आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। प्रातः के 7:30 हो चुके हैं।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

धुन की ये गुंजायमान स्वर सिर्फ और सिर्फ आत्मा को ही नहीं रोमांचित करते हैं, बल्कि हमें एक नई स्फूर्ति, नया आत्मबल देते हैं कि हम अपने जीवन में सकारात्मक जो कुछ भी करने की ठानेंगे उसे पूर्ण होने में किंचित विलंब नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक ईश्वर, एक परमात्मा, एक अल्लाह, एक वाहेगुरु, एक यारब हम सब के साथ है, जो हम सब के भीतर विराजमान होता है हमारे स्व के रूप में, वो स्व जो हमें आत्मबल के रूप में हमें पथ प्रदर्शित करता है। ईश्वर अल्लाह नूर उपाया कुदरत ते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे।

0: अमृत कलश में भजन कुछ पलों के बाद हम फिर सुनेंगे।
1: तेज धूप और बढ़ती गर्मी इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी मुश्किल समय लेकर आती है।
2: आइए इन पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर और छत पर किसी खुले बर्तन में स्वच्छ पानी और चिड़ियों के लिए दाना रखें।
1: अपने घर के आसपास जानवरों को पानी और भोजन दें, शेड लगाकर छांव की व्यवस्था करें और घायल पशु पक्षियों की मदद करें।
2: आपकी छोटी सी पहल इन बेजुबान पशु पक्षियों की जिंदगी बचा सकती है।
1: आइए इस गर्मी इंसानियत दिखाएं,
2: जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का ध्यान रखें।
1: छोटा सा प्रयास बड़ा उपकार।
2: पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से ही सजे ये संसार।
3: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
4: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
0: दिन की शुरुआत अगर सकारात्मक ढंग से हो, यानी कि अपने परमात्मा के स्मरण से हो, तो तमाम ऐसे गलत कामों को करने से हम बच सकते हैं जिसके लिए हम कभी सोचते नहीं लेकिन अनजाने में अनायास हमसे हो जाते हैं। हमारी कई बार इच्छा नहीं होती, कई बार मंशा नहीं होती, कई बार हमारी सोच नहीं होती, लेकिन गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ पाप कर्म हमसे हो जाते हैं, वो चीजें जो सामान्यतया स्वीकार्य नहीं है। ऐसे में यदि हम परमात्मा का, अपने आराध्य का, अपने इष्ट का, उसे जिसे हम मानते हैं, उसका स्मरण कुछ कुछ पलों पर दोहराते रहें पूरे दिन, तो यकीन मानिए न केवल ये जीवन सुंदर हो जाएगा बल्कि हम भीतर से और भी मुखर, प्रज्वलित और दीप्यमान हो जाएंगे। एक बार स्मरण करके देखिए पूरा दिन अपने परमात्मा को, थोड़ी थोड़ी देर के लिए जब मौका मिले।

मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक।

होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।

परमात्मा ने हमको जीने के लिए बहुत सारे अवसर दिए हैं, बहुत सारे संसाधन दिए हैं, जिससे हम और हमारी आने वाली पीढ़ी प्रसन्न होकर जीवन यापन करती है। लेकिन हमें भी प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना ही होगा। कोशिश कीजिए पेट्रोल कम से कम खपत हो। अगर आप बाजार जा रहे हैं या फिर दफ्तर जा रहे हैं या फिर स्कूल जा रहे हैं तो पूल करके यानी कि एक कार में कई लोग कंट्रीब्यूट करके आप जा सकते हैं। संसाधनों की बचत हमारे अपने राष्ट्र के निर्माण में बहुत आवश्यक है और राष्ट्र हमारे लिए परमात्मा से कम नहीं होता है। राष्ट्र हित में पेट्रोल बचाइए, एक एक बूंद बहुत कीमती है।

अमृत कलश भक्ति संगीत का यह कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से ट्यून करके 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं को हम बता दें याद के 8:15 पर आप सुनेंगे सुर संगम और आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम हम आपको सुनाएंगे प्रातः 9:00। 9:30 पर हेलो अयोध्या कार्यक्रम सुन सकते हैं आप 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। प्रातः के 8:00 हैं। कुछ ही पलों के पश्चात हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे समाचार प्रभात, हिंदी में समाचार बुलेटिन का। बस थोड़ा सा कीजिए

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड

0: ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा

0: शिक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
1: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
4: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
6: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
4: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
7: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
4: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट, निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमेरिका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज पर संपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी। लेकिन राष्ट्रपति

0: डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी टी20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
2: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई टी20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया। हालांकि आईसीसी ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने बीसीबी को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवलसन परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने ये भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: समाचारों का अनुप्रसारण हमने किया आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 8:15 हुए हैं और ये वक्त है हमारे स्टूडियो से सुर संगम कार्यक्रम का। सुर संगम कार्यक्रम आरंभ करें उससे पहले कुछ संदेश सुन लेते हैं।
5: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267989809।
4: इश्क ने गालिब निकम्मा।

कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम के। जिंदगी में कई बार ये अफसोस हो जाता है कि हमारी छोटी सी चूक हमें आत्मनिर्भरता से कम कर देती है। आत्मनिर्भर होना ही सबसे बड़ी कामयाबी है और आत्मनिर्भर किसी भी क्षेत्र में हो यदि हम हैं तो हमसे सक्षम कोई नहीं है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम सक्षम हैं, आत्मनिर्भर होकर हम बहुत सक्षम हो सकते हैं। पेट्रोल और डीजल के भंडार हमारे पास पर्याप्त हैं, लेकिन उन्हीं की बचत करके हम और भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और तब शायद गालिब का ये शेर जिस लहजे में कहा गया था, जिस मूड में कहा गया था, जिस सोच में कहा गया था, उसी सोच में हम गुनगुना सकेंगे और लुत्फ उठा सकेंगे। एक बार फिर से वो शेर दोहराता हूँ ये मानकर कि आत्मनिर्भर आप बन जाएंगे जहां बनना है, खासकर ऊर्जा के क्षेत्र में। और अब इश्क के मामले में वो शेर दोहराता हूँ और एक भेजता हूँ गैर फिल्मी गीत कैलाश खेर की आवाज में। शेर जो फरमाया था गालिब साहब का बहुत ही मशहूर है, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना आदमी हम भी थे काम के।

तक तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गड़ैया।

कहा था कि यदि किसी विदेशी को बिना बताए आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा करा कर लाएं और फिर उससे पूछें कि उसने कहां की यात्रा की, तो निश्चित रूप से वो कहेगा उसने एक नहीं अनेक देशों की यात्राएं की हैं। विविधताओं से भरा हुआ हमारा ये खूबसूरत सा भारत देश, जिसमें प्रकृति ने हर रंग बिखेर दिए हैं, जो पूरे विश्व में अलग अलग छिटके मिलते हैं, वो एक साथ अगर कहीं मिलते हैं तो अपने मुल्क में, अपने देश में, अपने भारत में। आइए अपने भारत को देखें, आइए अपने देश को देखें, आइए पहचाने अपने भारत को। हम भ्रमण करें, घूमें, यात्राएं करें अपने मुल्क में, विदेश यात्राओं पर लगाएं लगाम, क्योंकि अब हमारे देश को जानना हमें ज्यादा जरूरी है और ये हम सब के लिए बेहतर है। अपने देश की यात्राएं कीजिए, विदेशियों की यात्राओं पे लगाइए लगाम, कीजिए थोड़ी सी कमी, क्योंकि विदेश से बहुत खूबसूरत है अपना देश। तो कीजिए थोड़ी सी मोहब्बत, कीजिए थोड़ा सा प्यार अपने मुल्क से।

जी आइए इश्क फरमाइए अपने मुल्क से, अपने देश से, अपनी स्वदेशी चीजों से। हमारे यहाँ जो लावा भूना जाता था जिसे हम भुट्टा कहते हैं, उसे जब कॉर्न और पॉपकॉर्न कहते हैं तो हम खाकर गौरवान्वित होते हैं। हमारे नींबू पानी को अगर मैजीटो कह के कोई देता है तो हमें लगता है हमने बहुत अच्छा किया। अरे भैया, गुड़ को जैगरी और योग को योगा कहने से चीज़ें बदल नहीं जाती। गुड़ गुड़ ही रहता है और योगा योग ही रहता है। पहचानिए अपने स्वदेशी की ताकत को और कहिए ना उसे जो विदेशी ब्रांड के पीछे हम भागते हैं। बस ये छोटी सी बात बनाएगी हमको और भी बेहतर। स्वदेशी अपनाइए, विदेशी ब्रांडों को कहिए ना। हमारा मुल्क सक्षम है, हम सर्वश्रेष्ठ।

देखने वालों के लिए जाम नहीं है, मासूम फरिश्तों का यहाँ काम नहीं है। डॉक्टर बशीर बद्र की इस गजल को सुना आपने हरिहरन की आवाज में, और इसी के साथ सुर संगम कार्यक्रम यहीं तक। 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर ट्यून किया आपने आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। प्रातः के 8:30 होना चाहते हैं और ये वक्त होता है हमारे स्टूडियो से हमारे उस कार्यक्रम का, नाम है जिसका प्रणाम

0: प्रणाम अयोध्या।
1: प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम सुनने वालों को नमस्कार।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: एक नया दिन, एक नई खुशबू, सांसें मिली हैं हमको 24 घंटे के लिए जीने के लिए। हमने ऐसा कोई भी बेहतर काम नहीं किया था परमात्मा की निगाह में जिससे हमें ये सुअवसर मिले कि पूरे 24 घंटे के लिए हमें पूरा जीवन मिले कुछ सकारात्मक, कुछ बेहतर करने के लिए, अपने मानव जीवन होने का एक सिद्ध करने का कि हमने मानव का जन्म लिया है। परमात्मा के प्रति कृतज्ञता अहोभाव, और इसी अहोभाव के साथ प्रणाम अयोध्या में आप सभी का है स्वागत। जीव जंतु, पशु पक्षी, प्रकृति, पेड़ झरने, कुछ भी जो बनाया है हमारे परमात्मा ने, वो कहीं से भी व्यर्थ नहीं है। एक एक चीज में प्राण दिए हैं ऐसा सनातन मानता है, और हर प्राण की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य होता है। बात आज हम करेंगे, 12 मई है, तो उन पादपों की, यानी कि उन पौधों की जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, उन पौधों की जो हमें जीवन देते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस है। सुनने में थोड़ा सा अचंभित करने वाला लगता है कि पौधों का भी कौन सा स्वास्थ्य। हम सब जानते हैं कि जो बड़े पौधे होते हैं, जिन्हें हम वृक्ष मानते हैं, जो फलदार होते हैं, उनके स्वास्थ्य के प्रति तो हम जागरूक रहते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे पादप पौधे होते हैं उनके प्रति कहीं ना कहीं हम थोड़े से असावधान हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने

0: मई 2022 को अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य यही था कि पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि ये वो पौधे हैं जो हमें भूख को खत्म करते हैं, इससे पर्यावरण की रक्षा होती है, जैव विविधता को बढ़ावा दिया जाता है। याद है आपको, याद तो हो गई कि ये जो पौधे होते हैं ना, ये 80% हमारे भोजन का और 98% हमारे ऑक्सीजन का हिस्सा हमें देते हैं और इनकी हम परवाह नहीं करते। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पादप दिवस मनाने के पीछे उसके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखने के लिए क्या कहें, हम अक्सर शहरों की आवाजें तो सुन लेते हैं लेकिन अपने पौधों की खामोशी नहीं सुन पाते। यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। सच तो यह है कि जिंदगी की सबसे गहरी आवाज अगर कहीं से आती है तो हरियाली से ही आती है। एक बीज जो मिट्टी में दबा होता है, एक छोटा सा सपना होता है जो अंधेरे में भी रोशनी पर भरोसा रखता है और धीरे धीरे अंकुर बनता है, फिर पत्ता, फिर शाख, और एक दिन किसी थके हुए मुसाफिर को वो छां देता है, हमें ऑक्सीजन देता है। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस हमें यही स्मरण कराता है कि पौधे सिर्फ खेतों की उपज नहीं है, ये हमारी सांसों के रिश्तेदार भी हैं। हमारी थाली का स्वाद होते हैं, बारिश की खुशबू होते हैं, मौसम की मुस्कान, हमारा सब कुछ इन्हीं से होकर गुजरता है। लेकिन जब ये पौधे, ये पादप बीमार पड़ते हैं तो सिर्फ इनकी पत्तियां नहीं सूखती, इनके जड़ नहीं सूखते, धरती की उम्मीद भी थोड़ी सी कम हो जाती है। कहीं कीड़े फसलों को खा जाते हैं तो कहीं मौसम बदल देता है और हरी डालियों को पीला कर देता है, और इंसान अपनी जल्दबाजी में इन पौधों को उखाड़ कर फेंक देता है, परवाह इनकी नहीं करता है, क्योंकि पेड़ों की उम्र से भी तेज भागने की हमारी आदत पड़ चुकी है। हमें यह स्मरण रखना होगा कि अगर हमारे खेत स्वस्थ रहेंगे तो रोटियों में अपनापन, वो महक बना रहेगा, अगर पेड़ सुरक्षित रहेंगे तो हवाओं में ठंडक बची रहेगी, और अगर पौधे मुस्कुराते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियों की सांसें महफूज रहेंगी। तो आइए आज सिर्फ एक दिवस नहीं हम मनाएं, एक रिश्ता याद रखें, अपनी मिट्टी से रिश्ता, अपने बीज से रिश्ता, उस हरियाली से रिश्ता जो बिना कुछ कहे रोज हमारी जिंदगी में कुछ कुछ पल बचाती है, जोड़ती है, हमें जीवन देती है। दीजिए किसी पौधे को पानी, एक नया पेड़ लगाइए, बस कुछ देर किसी पेड़ की छांव में बैठ जाइए, पीले पड़ते पत्तों को थोड़ी हरियाली लाने में अपना जो कुछ भी दे सकते हैं दीजिए, आपको महसूस होगा कि हमारी धरती आज भी हमसे नाराज नहीं हुई है। अंतर्राष्ट्रीय पादप दिवस पर बस इतना ही कहना है कि पेड़ों को बचाना है, सिर्फ प्रकृति को बचाना नहीं, अपनी भविष्य की सांसों को भी बचाना है। बचाना तो हमें वक्त को भी है, क्या कहें, 8:34 हो गए हैं और ये कार्यक्रम यानी कि प्रणाम अयोध्या आपके दिलों, जान, प्राणों में इस तरह से बसा हुआ है कि हम कितना कुछ इसमें आपको देने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं उस तरफ जहां थोड़ी सी हरियाली है, थोड़ी सी नमी है, थोड़ी सी खुशबू है, थोड़ा सा अपनापन है, और ये सब कुछ अगर कहीं मिलता है तो उसे व्यक्त करने का माध्यम होती है कविताएं, जो हमारी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, हमें जागरूक करती हैं, हमारी सोच को एक दिशा देती हैं। सुनते हैं प्रणाम अयोध्या में डॉक्टर मनमोहन सरकार से उनका काव्य पाठ।
1: मंद मुस्कान।

0: प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मनमोहन सरकार का काव्य पाठ। इसके पहले के प्रणाम अयोध्या में हम आगे बढ़े एक छोटा सा अंतराल।
1: वेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532 21909।
0: प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम में आइए अब वक्त आ गया है समाचार पत्रों की कुछ सुर्खियों पर डाल लेते हैं एक नजर। नगर के नियावां बिजली उपकेंद्र से जुड़े इलाकों में आज यानी मंगलवार को 4 घंटे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। सहायक अभियंता दीपेंद्र सिंह के अनुसार 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के निर्माण के कारण लोक निर्माण विभाग की ओर से अफीम कोठी के पास कुछ कार्य प्रस्तावित हैं। इससे उपकेंद्र यानी नियावां उपकेंद्र से जुड़े दूरदर्शन, आकाशवाणी, अफीम कोठी, नियावा, नमामि गंगे, झारखंडी और शिवपुरी क्षेत्र में मंगलवार की सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। उपभोक्ताओं से अपील की जाती है कि इस अवधि में बिजली के वैकल्पिक इंतजाम अपने तैयार रखें। बिजली विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब तक लगे स्मार्ट मीटर बदले नहीं जाएंगे, बल्कि अब वो स्मार्ट मीटर पोस्ट पेड मीटर की तरह कार्य करेंगे। अब नए कनेक्शन लेने वालों के यहां भी स्मार्ट पोस्ट पेड मीटर ही लगाए जाएंगे। सोमवार को मुख्य अभियंता ब्रजेश कुमार ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक कल यानी सोमवार को संपन्न हो गई है। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि 7D तकनीक से तैयार की जा रही हनुमान गैलरी का निर्माण कार्य 30 मई तक पूरा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी इस गैलरी को श्रद्धालुओं के लिए खोलने में थोड़ा सा वक्त और लगेगा। नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों की रफ्तार तेज हो गई है। राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के तहत फतेहगंज ओवर ब्रिज के नीचे व्यर्थ पड़ी जगह को उपयोगी बनाने के लिए आधुनिक गार्डन, खेल मैदान और पार्किंग सुविधा विकसित की जाएगी।

इस परियोजना पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे। क्षेत्रीय खेल कार्यालय और उत्तर प्रदेश खेल विकास प्रोत्साहन समिति के संयुक्त समन्वय से डाभासिमर स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल में जिला स्तरीय तैराकी स्पर्धा 14 मई को आयोजित की जाएगी। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अनिमेश सक्सेना ने बताया कि 3 बजे से आयोजित होने वाली जूनियर बालक और बालिका तैराकी स्पर्धा में खिलाड़ी पंजीकरण कराकर प्रतिभाग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। श्रोताओं, ये तो थी समाचार पत्रों की वो सुर्खियां जिनकी हम कर रहे थे आपसे चर्चा, और अब चर्चा उस बात की जो जुड़ी है हमारे जीवन से। आने की जगह एक, जाने की जगह एक, तो क्यों निकालें गाड़ियां अनेक। पेट्रोल के भंडार सीमित हैं, राष्ट्रहित में इनका संरक्षण कीजिए। और हां, प्रणाम अयोध्या में। आपके ज्ञान के साथ साथ, सूचना के साथ साथ लेकर आते हैं हम मनोरंजन का भी खजाना। तो हैं अगर आप तैयार, तो हम कहेंगे कुछ नहीं, सिर्फ एक बात कि कहने के लिए लफ्जों की नहीं, भावनाओं की जरूरत होती है। तो समझने के लिए, शब्दों के लिए नहीं, इशारा भी बहुत काफी हो सकता है।

0: इशारों को तो आप खूब समझते हैं, तो अब इशारा करने की भी जरूरत नहीं है। समझ तो आप गए होंगे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समझ गए हैं आप।
1: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज,
2: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ईएनटी का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त।
1: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा,
2: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
3: सुना थे सखी, सुना थे कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास?
4: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुना थे। अब फरमाइशी लोकगीत, लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
3: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
4: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
5: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
6: चक्कू छुरिया
0: जी, ये है प्रणाम अयोध्या का वो आखिरी नगमा जो मचल रहा है आपके FM पर।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 9 बजे हैं। यह वक्त है हमारे स्टूडियो से फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत का। ये संदेश हमें व्हाट्सएप पर प्राप्त होते हैं और पहला नगमा हम आप तक प्रेषित करें उसके पहले सुन लेते हैं एक संदेश।
2: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
3: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
2: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
3: फोन नंबर 9161877347।
1: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम का पहला नगमा आया है जिसकी फरमाइश की है जिन श्रोताओं ने। पहले मैं उनका नाम बता देता हूं। धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश के अशोक सिंह, सुनीता सिंह और इनकी प्यारी गुड़िया वेदा सिंह, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश के मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप। ये संदेश आया है दुर्गा कॉलोनी हांसी के राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू का। आप सभी की फरमाइश पर हम आपके पास भेज रहे हैं किशोर कुमार के साथ सुलक्षणा पंडित की आवाज में ये दो गाना। गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम वही है जो हमारा आपसे रिश्ता, अपनापन। हफ्ते के सातों दिनों का लेखा जोखा इस अपनेपन से जोड़ता है आपको।

सात दिनों में हो गया इनको सात जन्म का प्यार। हो सकता है हो जाए, मगर अपना तो ये मानना है कि जो चीज जितनी जल्दी होती है उतनी जल्दी उसका नशा भी उतरता है। इसलिए इश्क हो या फिर भोजन, दोनों का बहुत धीमे धीमे पकना चाहिए। धीमे धीमे वक्त लेकर जो चीज पकती है वो बनती है खूबसूरत, चाहे वो जिंदगी हो या फिर खाने का स्वाद। तो ऐसा ही कुछ स्वाद हम आपको दिलाने जा रहे हैं, क्योंकि आपके संदेश आपके गीत सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। अगला स्वाद, स्वाद नहीं अगला गीत, राम बलराम फिल्म से है और पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र के पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर, मलकापुर से नारायण इंगले और राजकुमार खर्चे के साथ आशीष मुरहेकर। आप सभी के साथ इसी नगमे की फरमाइश जो आई हमारे पास फजिलका पंजाब खेड़ा परिवार के भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी वाणी, जीवन सिंह और समस्त खेड़ा परिवार, कोई बचे ना। बक्सर बिहार के शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी और डॉक्टर सोनम अदीबा, सारीमपुर बक्सर के राजा एसडी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, आप सबकी फरमाइश पर हम भेज रहे हैं किशोर कुमार के साथ आशा भोसले की आवाज़ में ये दुकाना।

गलतियां करने से हम खुद को भले ना रोक पाए लेकिन उन्हें दोहराने से तो रोक सकते हैं ना। ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन एक चीज तो आपको भी पता है कि यदि हम लगातार करती जा रही भूल को अपनी आदत बना लें और माफी मांगने को अपना अधिकार समझ लें तो ये भूल नहीं, ये गुनाह होती है। क्योंकि भूल की जा सकती है लेकिन माफी मांगना आपका अधिकार नहीं हो सकता। माफ किया जाना सामने वाले की सज्जनता पर निर्भर करता है, और जब आप भूल को आदत बना लेते हैं और माफी को अपना अधिकार समझ लेते हैं तो आप भूल नहीं करते, आप गुनाह करते हैं, और गुनाह किसी भी रिश्ते को खत्म करने के लिए काफी होती है।

0: वैसे भी जब किसी रिश्ते में भूल की वजह से सड़ांध पैदा होने लगे तो उन रिश्तों का खत्म हो जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि घुट के जीने से बेहतर है कि आप जी कर अपने जीवन को बेहतर बनाएं। एक छोटा सा अंतराल, हाजिर होते हैं आपके कुछ संदेश और गीतों के साथ।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा,
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम का अगला नगमा हमारे इन श्रोताओं के संदेश पर। अयोध्या मऊ शिवाला से श्वेता यादव, लाली यादव और इनके पुत्र यदुवंशी परिवार, अच्छा सॉरी माफ कीजिएगा, हमारा पूरा परिवार यदुवंशी परिवार लिखा इन्होंने, और इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमारे पास और भी श्रोताओं ने की है, उनके भी नाम पढ़ देता हूँ। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश के विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, ईशु बाबा, सपना, शिवी, सलोनी और पेंटर बाबू ने ये संदेश भेजा है रघुवीर नगर दिल्ली से, दिलावर खान, हसीना बानो और एलिजा नायब ने। आप सभी की फरमाइश पर हम भेज रहे हैं सुरेश वाडेकर के साथ साधना सरगम की आवाज़ में ये दो गाना।

0: आपके संदेश आपके गीत सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से ट्यून करके 101.9 मेगाहर्ट्ज पर।
1: हेलो
2: सुनो टेलीफोन नंबर
3: माय नंबर इज
4: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090। जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा, आपका सच्चा हम सफर।
5: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
4: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
5: आकाशवाणी अयोध्या FM, जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
4: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
5: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
4: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
4: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम का आखिरी नगमा हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर ग्राम भोजपुर तगा सहारनपुर के मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राणा प्रधान, राहत अली और वकील अहमद। ये फरमाइश आई है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश के मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह की। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और जवान अब्बासी ने संदेश भेजा ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से।

0: आपके संदेश आपके गीत फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम सुन रहे थे आप आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से ट्यून करके 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 9:30 हुए हैं। ये वक्त हमारे स्टूडियो से सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या का। नमस्ते, दुआ सलाम आदाब सत श्री अकाल वड़कम खुशामदीद, बहुत बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने उस प्रोग्राम में नाम जिसका हेलो अयोध्या। हेलो हेलो कहने के ख्वाहिशमंदों ने लगाना शुरू कर दिया 73-76-80-40-90। हम कर रहे हैं आपके टेलीफोन कॉल का इंतजार। इससे पहले कि पहली टेलीफोन कॉल आए, एक छोटा सा अंतराल और आएंगे हम अगले कॉलर के साथ।
1: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
2: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
1: हरी आई सेंटर जनाना हॉस्पिटल रोड रिकाबगंज फैजाबाद।
2: फोन नंबर 9161-877-347।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: किससे?
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
2: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
3: काट दिया।
2: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
2: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
9: सुनिए सोमवार से।

0: शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से
1: 73-76-80-40-90 डायल करके बहुत सारे लोग हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं। देखते हैं ये कौन नए कॉलर हैं। हेलो
2: हेलो
1: जी नमस्ते सर। नमस्ते जी सर, रेडियो से थोड़ा दूर हो जाइए वरना आपकी आवाज़ हमारी आवाज़ आने में बहुत अंतराल लगेगा।
2: हम पकड़ी से बोले थे, तरफगंज पकड़ी से।
1: तरफगंज पकड़ी से?
2: हाँ।
1: वहाँ काव पकड़ा जात है?
2: अरे पकड़ा नहीं जात, कुछ बाजार है।
1: बाजार है वहाँ? बाजार में काव बिकत है?
2: अरे बाजार में सब कुछ बिकात है सर।
1: सब कुछ बिकात है? अपना काव करत हो?
2: हम तो खेती बाड़ी काम करी थे।
1: खेती बाड़ी काम करते? मौसम जो आजकल बड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा, मई में भी बारिश हो जाती, ठंड होता है, ये काव मामला है? ठिकात है खेती के लिए कि गड़बड़ है?
2: साहब गड़बड़ रहा लेकिन सही ठीक है।
1: गड़बड़ रहा तो ये ठीक होगा ये नहीं समझे कैसे?
2: अरे पहले पानी वाली बरसा रहा साहब, ठीक ठाक है
1: अब? ठीक? हाँ नहीं अब तो ठीक है, अब तो मौसम ठीक है ना?
2: हाँ।
1: नमो अपन फिर से बताए दो हमें।
2: हृदय राम नाम, हृदय राम सिंह।
1: हृदय राम? तो हृदय राम भैया ये बताओ कि गाना सुनबो, काहे फोनवा किए हो? अरे गन्ने कत्ती क्रिया हो तो बतियात का दी, हमरे सब तो खेती बाड़ी बतिया है लगिन भाई। हाँ कौन गनवा सुना है बताओ बताओ।
2: राजा हिंदुस्तानी सुना
1: है। राजा हिंदुस्तानी बहुत तगड़ा गाना चुने हो। अच्छा सुनो ये गनवा तू सुना, कौन गनवा सुनबो ए मन? कुल गनवा है? अच्छा तो चलो हम सुनवाए देव, कसम से हम सुनवाए देव। खाली हम कही बताओ कौनो एक को गाना है के तुम हमें दो लाइन बताओ कौन गाना, कौन आवत है?
2: आवत तो है।
1: बताओ कौन गाना, याद करो कौनो। अरे कोई समझावत है तुम्हें के बतावत है हो?
2: अरे कौनो गाना सुना
1: सर? नहीं हम सुनाए देव लेकिन तुम्हें के बतावत रहा पहले ही बताओ।
2: अरे मलकिन वलकिन
1: है। बस मलकिन के मानो और बाकी कोई माने की जरूरत नहीं है, हमरो न मानो। चलो गाना हम सुनवाए दिहन। हाँ सुनाए दिहन। बहुत ही प्यारे श्रोता, पकड़ी तरफगंज से हृदय राम जी ने फोन किया था और खूबसूरती के साथ अपनी मलकिन हम लोग अपनी इलाके। कितना स्वीट है, एक तुम्हारा होना भी क्या से क्या कर देता है, इन चार दीवारों को घर कर देता है। अपनी मलकिन, अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी, अपनी बेटर हाफ की हमेशा सुनिए क्योंकि एक वही है जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, माता पिता के बाद आपकी बहुत फिक्र करती है। उन्हीं के लिए डेडिकेट कर सकते हैं आप ये गाना।

0: इनकी मांगे तो भरना आप तारे हजार भर के, मगर उनकी मांगों का क्या जो 73, 76, 80, 90 मिलकर हमसे आकर करना चाहते हैं बातें। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: नमस्ते, नाम बताओ अपना।
1: रिवांशी पांडे।
0: अरे रिवांशी, तुम्हारी तुम्हारी बात हो चुकी है भाई। एक चीज बताओ, ये 5-6 लोग हैं, आप लोग लगता है किसी और को मौका ही नहीं देते हो। रिवांशी एक चीज चुपके से बता दो, हमें कोई सुन नहीं रहा है, मैं पूछूं?
1: यस सर।
0: ये बताओ तुम्हारी कॉल बार बार लग कैसे जाती है, चुपके से बताना।
1: सर मैं बहुत लकी हूँ ना, इसलिए मेरी कॉल लग जाती है आपसे बात करने के लिए। और पता है सर, मेरी सिस्टर ना वो बोल रही थी कि जिस दिन सर आएंगे मैं बात करूंगी, और वो तो स्कूल चली गई और मैं नहीं गई, मैं बात आपसे बात कर ली हूँ। वो जब आएगी तो बोलेगी मैं चली गई, मुझे पता ही नहीं चला तुमने बात कर लिया।
0: तुम्हारे पास हमेशा एक बहाना होता है। पिछली बार तुमने कहा था
1: नहीं सर, मैं सच में बता रही हूँ, मैं बहाना नहीं बता रही हूँ
0: कि दीदी सो रही थी, दीदी जाग गई तो दीदी ने डांट दिया, दीदी ने कूट दिया। पिछली बार ये बताया था, इस बार
1: हाँ, तो पिछली बार दीदी सो रही थी, इस बार मेरी छोटी सिस्टर स्कूल चली गई।
0: अच्छा भैया ये बताओ, हमारे यहाँ से, चलो मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चलो कुछ नहीं कहता हूँ, गाना सुनाओ। सॉरी
1: नहीं सर, आप बताइए आप क्या कहना चाहते।
0: नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ।
1: नहीं सर आप कह दीजिए।
0: अरे बहुत सारे श्रोता नाराज हो जाते हैं, लगता है कुछ एक कॉलर
1: नहीं
0: है।
1: नहीं सर कोई नाराज नहीं होगा।
0: अरे महाराज,
1: क्योंकि मुझे इतनी खुशी मिली है तो लोग नाराज काहे होंगे।
0: अरे नाटक हो, बहुत बड़ी नाटक हो।
1: सर आपसे बात करके बता पूरा दिन एकदम अच्छा हो जाता है।
0: अरे मैं क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता, जल्दी से गाना बता दो, मुझे बहुत शर्म आ रही है, गाना बताओ।
1: सर आप इतने बड़े फिर भी शर्मा रहे।
0: अरे शर्माने के लिए उम्र की जरूरत होती है क्या, गाना बताओ।
1: नहीं सर, मुझे ना गाना आपकी पसंद का सुनना है।
0: अरे हमारी पसंद का गाना तुम भी गजब करती हो, मेरी पसंद का कोई, मेरी भी पसंद ही नहीं ना कुछ, मुझे कुछ पसंद नहीं है।
1: नहीं सर आपकी पसंद ना बहुत अच्छी है, आप गाने बहुत अच्छे।
0: तुम तारीफ बेवजह की मत करो, गाना बताओ।
1: दोस्ताना मूवी का सुना दीजिए।
0: दोस्ताना, तो जब तुम्हें पसंद था तो पहली बार में क्यों नहीं बताया जो सुनना था दोस्ताना का।
1: सर आप ना हमारे दोस्त थे इसीलिए आप बोले कि मैं सुनाऊंगा ही नहीं, तो मैंने दोस्ताना मूवी का
0: मिल गया, मिल गया, मिल
1: गया,
0: मिल गया, मिल गया मेरे भाई, दोस्ताना का गाना मिल गया। दोस्ताना का कौन सा गाना सुनाना नहीं पूछूंगा मैं, कोई भी गाना सुनवा देता
1: हूं। बने चाहे दुश्मन जमाना, हमारा सलामत रहे दोस्ताना। तो
0: कोई ऑप्शन ही नहीं देगी। रिवांशी आप बहुत अच्छे हो, इसमें कोई दो राय नहीं ना।
1: सर आप बहुत अच्छे हो, मैं आपसे थोड़ा कम अच्छी हूँ।
0: अच्छा ठीक है भैया, तुमसे बहस कौन करे, हमें बहस तो करनी नहीं, वरना श्रोता कहेंगे इन्हीं से बात करते हैं ज्यादा।
1: नहीं सर आप बातें ना बहुत अच्छी अच्छी करते हो सर, जब आप ना वो जब कार्यक्रम लेके आते हो, जैसे शाम को अगर आते हो तब गीत गुंजन लेके आते हो, और जब सुबह वाला कार्यक्रम आप लेके आए ना परिणाम, उसमें जब आप बातें बताते हो ना मोटिवेशनल बातें, वो बहुत अच्छी लगती है।
0: हम कोई मोटी वोटी बात नहीं बताते, तुम क्या बात करती हो।
1: नहीं मोटिवेशनल बातें बताते हो आप ना, वो बातें बहुत अच्छी।
0: भगवान ये
1: वो कभी खुद से उदास होने ही नहीं देती आपकी बातें।
0: ये होता क्या है मोटिवेशनल, हमें तो पता ही नहीं है।
1: सर पता है ना, हम हर शाम आप ही का इंतजार किया करते
0: हैं। अच्छा चलो गाना सुनो।
1: सर और आप ना पिछले संडे, एक बार जब आप संडे को आए थे ना, तो आपने शायरी बोली थी कि मेरी बातों को इतना ध्यान से ना सुना करो, अगर कोई बात याद रह गई तो मुझे भुला ना पाओगे। पर सर आपकी बातें इतनी प्यारी होती है कि ध्यान से सुनने के लिए ही मजबूर कर देती है।
0: गाना
1: तो आपकी इतनी बातें याद हो चुकी,
0: गाना शुरू हो चुका है रेडियो पर, गाना सुनो।
1: सर गाना ना थोड़ा सा सुना दीजिएगा, क्योंकि आपसे बात हो गई ना, आपसे बातें करने का बहुत मन करता है।
0: अरे तुम
1: बातें ढेर सारी हो जाए।
0: मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तुम ही एक तरफा बात कर रही हो, रेडियो भी एक तरफा है।
1: सर आप
0: चलो।

0: भाई सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ऑल इंडिया रेडियो के अयोध्या केंद्र से करते हैं जो दोस्ताना आप, उसी के चलते हम ये करते हैं पेश प्रोग्राम हेलो अयोध्या। मॉर्निंग में 9:30 से 10:30 तक, मगर देखें एक कॉलर आ रहे हैं, बातें हो जाए। लाइव होता है ये, पहले से कोई बात नहीं होती है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। हेलो
1: हेलो सर जी, प्यार अतिष्ठकार पर सत श्री अकाल जी।
0: जी मुझे सत श्री अकाल समझ में आया, तो आप पहले अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से फोन कर रहे हैं।
1: मैं गाँव मौरखुर्द डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब से जगजीत मस्तू बोल रहा हूँ सर जी।
0: जगजीत सिंह मस्तू,
1: मत्तू जी, MAWTU मत्तू।
0: मत्तू मत्तू मत्तू,
1: हाँ जी सर जी, हाँ जी हाँ जी।
0: अच्छा मत्तू कहें तो पंजाब और मुत्थू कहें तो दक्षिण भारत।
1: जी जी जी जी,
0: वरना मुश्किल हो जाएगी। मत्तू को अगर मैंने मुत्थू कह दिया तो मत्तू नाराज हो जाएंगे, और मुत्थू को मत्तू कह दिया तो मत्तू नाराज हो जाएंगे। जी मस्त रहना तो जिंदगी का उसूल है, जिंदगी में अगर मस्ती नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
1: हाँ जी, थोड़ी बात बहुत अच्छी है जी, हम जी हर बात तो बढ़िया हैप्पी मूड रखते हैं जी।
0: मैं हैप्पी मूड रहता हूँ। ओए जगजीत भाई, तुसी पंजाब से हो तो कुछ मेरा नाम हैप्पी सिंह ना रख दो यार।
1: ठीक है जाजी जाजी, राइट की राइट।
0: ओए इतने बड़ी बड़ी बात मत करो, इधर इधर सारे लोग ना हिंदी समझते, तो अपन हिंदी में बात करते हैं। मैं सीधा पूछता हूँ, गाना कौन सा सुनोगे?
1: फिल्म
0: जी धर्मवीर, ठीक है मैं समझ गया कौन सी, धर्मवीर। और गाना कौन सा
1: जी? गाना है ये जी, गाना जी गुनगुना कर बताता हूँ जी।
0: जी बिल्कुल गुनगुना दीजिए।
1: हम बंजारों की बात मत पूछो जी, जो प्यार किया देंगे जी, जाने आता नहीं जी।
0: जी मैं समझ गया। ओ जगजीत भाई आपने तो दिन बना दिया फोन करके।
1: बात करके जी, क्या बात है जी, दिल गाज गाज हो जाता है जी।
0: चल जी मजा आ गया, तो मजे को थोड़ा और बढ़ाते हैं, ये आपकी पसंद का गाना सुन लेते हैं।
1: ठीक है जी, सलाम जी, सलाम जी।
0: ओ जी सत श्री अकाल। जगजीत मुत्तू ने फोन किया पंजाब से। हे भगवान, माफ कीजिएगा पंजाबी बोलने वालों, मैंने बहुत आज पंजाबी बोलने की कोशिश में बहुत कुछ गलत बोला है, मुझे माफ कीजिएगा, मगर क्या करूँ, मुत्तू साहब का प्यार इतना खूबसूरत था, मैं रोक ही नहीं पाया उनकी भाषा में बात कर, आती नहीं है मुझे, मुझे शर्म आ रही है। मैं गाना सुनाता हूँ आपको।

0: भाई इन्होंने तो कहा ये दुश्मनी है, तुम दोस्ती ना समझो, मगर हुजूर हमसे तो कोई दुश्मनी कर नहीं सकता, हम तो दोस्ती ही समझते हैं, क्योंकि हम बंजारों की बात मत पूछो जी, जो भी आ गया उसे प्यार से ही मिलेंगे और उनसे कहेंगे हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्ते।
1: नमस्ते सर। नमस्ते।
0: नाम बताइए सर।
1: रविकांत दुबे।
0: रविकांत जी कहाँ से फोन कर रहे हैं?
1: रामंतपुर पोस्ट मोती नगर जिला अयोध्या से।
0: अयोध्या से। रवि भैया करते क्या हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं, एक किराने की दुकान है छोटी मोटी खोले बैठे हैं।
0: जिंदगी में कोई भी काम छोटा मोटा नहीं होता है, ये हमारी सोच किसी काम को छोटा या बड़ा बना देती है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप जो भी करते हैं वो बड़ा ही करते हैं जी। तो रवि भैया गाना कौन सा सुनेंगे आप?
1: अनारकली का गाना सुना दीजिए।
0: अनारकली का
1: गाने से बच्चे हैं।
0: अरे अनारकली हमारे यहाँ की क्लासिक कल्ट फिल्मों में से एक मानी जाती है, यानी ऐसी फिल्में जब भी भारतीय सिनेमा का नाम लिया जाएगा तो उन फिल्मों की जिक्र जरूर किया जाएगा। अनारकली का जी, कोई विशेष गाना या कोई गाना?
1: हेलो
0: जी।
1: हाँ अनारकली का गाना कोई सुना दीजिए।
0: जी सुनवा देते हैं। ये फिल्म आपने देखी है नहीं देखी है?
1: देखी थी।
0: अरे फिर तो गाना सुनने में मजा आ जाएगा। लीजिए रवि भाई, मैंने गाना अनारकली का ये प्ले कर दिया आपके लिए।
1: बोल। धन्यवाद
0: धन्यवाद। 73-76-80-90 लगाइए, हम करें आपके टेलीफोन कॉल का इंतजार। क्या कहें, कुछ नहीं, इस गाने को सुनिए, गूंगे का गुड़ है, मजा आएगा।

0: जिंदगी के फलसफे को बताती हुई अनारकली फिल्म की ये खूबसूरत सी आवाज थी लता मंगेशकर की। मगर देखते हैं 73-76-80-40-90 डायल करके कौन सी आवाज आती है इस पर। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्ते।
1: प्रणाम सर।
0: नमस्ते, कैसे हो आप? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। नाम अपना बताइए, आप कौन बोल रहे हो? मखौड़ा धाम। तो मैं समझ गया, आवाज आपकी थोड़ा सा साफ नहीं आ रही, एक बार दोबारा नाम बताएंगे अपना?
1: मेरा नाम अंतिमा सिंह था।
0: अंतिमा सिंह, अंतिमा जी कैसे हो आप? बढ़िया हो, आप बता चुके हो।
1: हम ठीक है सर, आप कैसे हैं?
0: मैं तो आपसे बात करके और अच्छा हो गया। अंतिमा, मुझे एक एक चीज मैं पूछ लूं, मेरा मन कर गया तुरंत।
1: क्या सर?
0: एक चीज पूछ लूं आपसे।
1: हाँ

0: पूछ लीजिए सर।
1: ये जो आपका नाम है अंतिमा, तो
0: क्या था?
1: आपका नाम है अंतिमा ना?
0: मेरा नाम ही अंतिमा सिंह है, क्योंकि मैं अंतिम में पैदा हुई थी, इसलिए मेरा नाम अंतिमा सिंह
1: है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन जिंदगी में आपको कभी लगता है कि ये अंतिमा या फिर जिंदगी पे कोई प्रभाव पड़ेगा, आप हर जगह पीछे रह जाओगे या पीछे जैसा कुछ, अभी कुछ ऐसा लगा आपको?
0: ऐसी बात नहीं है, काम में तो हम हमेशा आगे रहते हैं।
1: यही मैं पूछना चाहता था कि अंतिमा सबसे पहले
0: मेरे बाबा जी भीम सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे सर
1: जी,
0: और हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी।
1: क्या बात है। और इसीलिए मगर मैं अंतिमा को कहूं कि जो अंतिम होता है वो दरअसल एक तरह से प्रथम भी होता है, क्योंकि अगर दूसरी तरफ से आप लाइन शुरू करें तो वो प्रथम पे होता है। जिंदगी में कोई भी आखिरी में जो खड़ा होता है, अगर लाइन को बदल दिया जाए तो वो हमेशा प्रथम नंबर पे दिखता है। ये हमारी सोच होती है, जिसे हम अंतिम देखते हैं दरअसल वो प्रथम होता है, ऐसा मेरा मानना है।
0: जी जी जी,
1: क्योंकि जिंदगी में अंत या आखिर जैसा कुछ नहीं होता, हर एक नया आरंभ प्रथम होता है।
0: प्रथम होता है, सही बात है।
1: हम लोगों ने
0: अंत कहाँ पे होता है?
1: अंत होता ही नहीं है, क्योंकि हम सनातन हैं, हमारे यहाँ अंत नहीं होता, हम तो अनंत हैं।
0: जी अनंत है,
1: हम अनंत हैं, अंत की तो परिकल्पना ही नहीं हमारे पास। ए अंतिमा जी,
0: जी जी,
1: हम लोग ज्यादा फिलोसफी नहीं बात कर रहे हैं?
0: नहीं सर।
1: नहीं नहीं, ज्यादा लग रहा है, आप जल्दी से गाना बता दीजिए, कौन सा गाना सुनेंगी, वरना लोग कहेंगे ये तो प्रवचन होने लगा है।
0: दिल के रिश्ता का गाना, साजन साजन मेरे साजन साजन, वो गाना हमको पसंद
1: है। जसविंदर नरूला की आवाज में है वो वाला या फिर दूसरी? और चलिए मैं साजन साजन वाला गाना आपको सुनवा देता हूँ ना।
0: ओके सर, कोई हम सर।
1: ये थी अंतिमा जी, जिनसे बातें करते करते बातें बड़ी उस मोड़ पे पहुंच गई जहाँ जिंदगी का तो कुछ फलसफों की हमने शायद बात कर ली, मगर ऐसा नहीं, जिंदगी है तो फलसफा भी रहेगा, मगर जिंदगी से खूबसूरती रिश्तों से बनती है, और एक खूबसूरत से रिश्ते के नाम ये गीत उन्होंने की है फरमाइश। इंजॉय कीजिए इस रिश्ते को, इस गीत को।

0: 73 76 80 90 लगातार घंटियां बज रही हैं। छोटे से कार्यक्रम में बड़े से लोगों को हम ले लेते हैं, बड़े से लोग मतलब ज्यादा लोगों को लेने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कौन कॉलर आ गया लाइन पे। हेलो
1: हेलो,
0: अरे जी नमस्ते।
1: नमस्ते सर।
0: अरे नमस्ते, कौन बोल रहा है भाई?
1: भाषा।
0: क्या?
1: भाषा।
0: भाषा, भाषा आपका नाम है?
1: जी सर। जी।
0: अरे बहुत सुंदर नाम है, किसने रखा? घर वालों ने ही रखा होगा, मगर घर में किसने रखा ये नाम आपका?
1: मेरी दीदी ने।
0: दीदी ने? दीदी कुछ साहित्य वाहित्य पढ़ती हैं? ये कैसे उन्होंने ये नाम तो बहुत सुंदर रखा, भाषा मैंने कम सुना है, बल्कि मैंने सुना ही नहीं भाषा किसी का नाम हो सकता है। अच्छा एक है तो,
1: और एक हमारा है, हमने दो लोगों को मतलब जानती हूँ खुद को लेकर।
0: अरे तो दो तो बहुत कम हुए ना। वैसे भाषा
1: जी सर,
0: क्या बताऊँ, तुम्हारे नाम में ही इतनी मिठास आती है, क्योंकि हम लोग जानती हो हम लोग बोलने का काम करते हैं, शब्दों और भाषा से ही खेलते रहते हैं, और ऐसे में अगर हमको भाषा मिल जाए तो हम बहुत खुश हो जाते हैं।
1: जी सर।
0: भाषा, घर में तुमसे बातें करके कौन कौन खुश होता है, सही बताना। घर में तुमसे बातें करके कौन कौन खुश हो जाता है?
1: दीदी सबसे ज्यादा खुश होती हैं, क्योंकि मैं उनकी खबरी हूँ।
0: खबरी? खबरी का क्या मतलब है?
1: जी सर, जैसे दीदी कहीं भी जाती हैं या कहीं भी रहती हैं या कहीं भी मतलब हम घर में है, दीदी गांव में चली गई या बाहर चली गई, तो वो

0: मूवमेंट कैप्चर करके उन्हें बताना, और अगर दीदी कहीं बाहर चली गई तो घर का, और कहीं दीदी घर पे हमें बाहर गए तो वहाँ का सारा मूवमेंट कैप्चर करके लाके बताना, तो इसलिए मैं खबरी हूँ दीदी की।
1: जो स्पीड से तुमने बताया ना सब कुछ, तुम पक्की खबरी हो, एक नंबर की, मुझे पता चल गया। अच्छा तुम्हारी इस खबरी वाली आदत के लिए कभी डांट वांट पड़ी नहीं पड़ी है?
0: सर बहुत डांट पड़ी बचपन में, तो सब लोग कहते थे चुंगड़ी बहुत करती हूँ, लेकिन अब चुंगड़ी नहीं करती हूँ,
1: अब खबरी
0: खबरी बनती हूँ।
1: खबरी बन गई हो। अरे देखो देखो,
0: और
1: सुनो भाषा,
0: और जी सर
1: तुम्हारी बात तो सुनने का बड़ा मन कर रहा है, लेकिन कोई एक जल्दी से गाना बताओ। जी मैं एक गाना प्ले कर देता हूँ, फिर तुम अपनी बात पूरी करो, ठीक है ना?
0: जी सर।
1: चलो तुम अपनी बात करो, क्या कह रही थी?
0: आपसे बातें करने का मुझे बहुत तो मन कर रहा था, बहुत दिन से कोशिश कर रही थी, लेकिन आज बात हो गई तो अच्छा।
1: हाँ चलो बहुत,
0: और पहली बार मेरी कॉल भी लगी।
1: हाँ ये तो बात है, तुम्हारी कॉल पहली बार तो जरूर लगी है। भाषा आप बहुत अच्छे हो, अपनी इस पवित्रता इस निश्चलता को बनाए रखो, ऐसे ही हंसती खेलती मुस्कुराती रहा करो, ठीक है?
0: जी सर।
1: चलो मैंने
0: आपको सुनते हैं, बड़े भैया तो हम अच्छे रहेंगे।
1: अरे भाई ऐसा कुछ नहीं, जो अच्छे होते हैं वो हमेशा अच्छे होते हैं, है ना? उनको कुछ सुनाओ या ना सुनाओ।
0: जी सर ये तो सही, अच्छी मतलब सही बात है, लेकिन जब हम आपको सुनते हैं बड़े भैया ना, तो ऐसे सोचते हैं सर इतना अच्छे से बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं तो ऐसे हम भी बोलेंगे, ऐसे ऐसे तो ऐसे अच्छे हो गए हम भी।
1: तो एक बात मैं चुपके से तुम्हें बता रहा हूँ, कान नजदीक लाओ रेडियो के, देखो
0: मोबाइल फोन के नजदीक है सर, कान रेडियो के नजदीक जाएंगे तो इको होने लगेगा।
1: नहीं तो हम बता ये रहे हैं कि तुम
0: जी सर
1: मुझसे भी बहुत अच्छा बोलती हो, ये बात किसी को बताना नहीं।
0: जी सर
1: ठीक है, चलो गाना सुनो।
0: ओके सर बाय।
1: भाई एक वॉलेट था लेदर का, उसमें वक्त के कुछ लम्हे चुरा के रखे थे, मगर वो लम्हे अब सरक गए हैं हाथ से, क्योंकि दूसरे के लम्हे आने वाले हैं, इसलिए इस गाने के साथ छोड़ के जा रहा हूँ आपको। दीजिए अपने इस दोस्त को अनुमति, ठीक 10 बजे सुनिएगा हमारा अगला कार्यक्रम। फिलहाल हेलो अयोध्या से नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपका दिन शुभ हो।

अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। प्रातः के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा।

0: पुष्कर लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
0: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़, फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
1: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
0: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
1: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
0: जी,
1: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
0: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं, सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
1: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
0: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
1: जी,
0: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
1: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मतिभ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
0: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है, या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
1: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
0: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
1: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
0: जी।
1: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: क्या कहते हैं?
1: थर्मल लैग।
0: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
1: जी।
0: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
1: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
0: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
0: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
1: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें। और हाँ, प्यास लगे या न लगे, थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिएं। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
0: जी।
1: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
0: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने
1: जी।
0: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो
1: जी।
0: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
1: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहने, क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है
0: जी। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी, जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
1: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न है,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, आग बरसाती धूप।
1: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।

0: आग बरसाती धूप।
1: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
2: क्यों?
1: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
2: अच्छा, तुमने खुद देखे?
1: हाँ।
2: अच्छा,
1: तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो। धीरे से, माँ उठ जाएगी।
2: हाँ हाँ, धीरे से चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ,
0: आ चलो खाते हैं। अरे, यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ, पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे, इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन, और तेज दौड़ो। देखो, मुझे छू सकते हो।
3: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे, तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन, मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा। भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलो देखो। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया। यही पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? तू कुछ बोलता क्यों नहीं?
3: विद्या, विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन, मोहन, मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ, हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं। मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ, चलिए चलिए।
2: आ गया डॉक्टर साहब का घर। इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
1: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
4: कौन है भाई, अभी आया?
2: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए, डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
4: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
2: डॉक्टर साहब, लगता है इसे लू लग गई है।
4: ओहो, अच्छा इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई।
2: हाँ।
4: और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए।
2: हाँ।
4: ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
2: अच्छा डॉक्टर साहब।
4: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।
4: लाओ, अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
2: जी जी,
4: ऐसे। लाओ, अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ, बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
2: जी।

0: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है। भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
0: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
1: जी,
0: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है?
0: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
2: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
0: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबाल कर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
0: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए
2: जी।
1: और अगर लू लग जाए तो
2: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
0: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए
1: जी।
0: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
1: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
0: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
2: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं
1: जी?
2: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
1: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
0: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी ना खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
2: गर्म हवा से रहे हम दूर,
3: ठंडक में खेले भरपूर।
2: ठंडक में खेले भरपूर।
0: आग बरसाती धूप।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक का।
5: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
4: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
6: इन्हें हमारा सलाम।
4: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का। नमस्कार साथियों।
5: साथियों नमस्कार।
4: साथियों भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहाँ के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना

0: सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
1: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक एल्बर्ट एक्का के पास।
0: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
1: और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
0: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगीं।
1: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
0: लांस नायक एल्बर्ट इक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
1: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
0: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
1: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
0: फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट एक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
1: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट एक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट एक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
0: लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट एक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
1: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
0: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: سلام.
1: परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
2: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
1: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज़ FM बैंड पर। और अब आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा

0: नजर में। इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने का एक ही विकल्प है आज के तारीख में, वो तो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। स्टेम सेल देखा जाए तो ये अपने हर रक्त में होने वाली पेशी की जननी है, जैसे लाल रक्त पेशी, सफेद रक्त पेशी और प्लेटलेट। लेकिन स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए एक डोनर की होना जरूरी होता है। यह डोनर भाई बहन हो सकता है जिनमें शायद सिर्फ आधी बीमारी हो या जो पूर्णतः नॉर्मल हो, या माँ और पिताजी से स्टेम सेल्स लिए जा सकते हैं। इंटरनेशनल डोनर रजिस्ट्री से भी हो सकती है तो वहां से भी स्टेम सेल लिया जा सकता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये जो उपचार पद्धति है ये बहुत ही खर्चिक उपचार पद्धति है, उसमें जान का खतरा भी होता है। जिसमें सिबलिंग डोनर ट्रांसप्लांट यानी जब भाई बहन से हम लोग सेल्स लेते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए, तो भी वो पूरी तरह से मैच होना जरूरी होता है। जिससे अपने रक्त के ब्लड ग्रुप जैसे होते हैं ए बी, ए बी या ओ, वैसे ही हमारे सफेद रक्त कोशिकाओं का ग्रुप होता है जिसे हम लोग ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन या HLA कहते हैं। इसके अलग अलग 10 रीजन होते हैं। ये 10 से 10 रीजन जब पूरी तरह से मैच करते हैं, जिसे हम लोग फुल मैच कहते हैं, तभी हम लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के आगे बढ़ते हैं। यह जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होता है उसमें करीबन एक वक्त पे 8 से 10 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है और उसमें जान का खतरा 5-10% रहता है। दूसरा जो मैंने कहा, जिसमें माँ और पिताजी से स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग उम्मीद रखते हैं, उसमें मैच होने का चांस एक हाथ ही होता है, 1 लाख में। तो उसमें भी जो खर्चा होता है सेम ही होता है, और हम लोगों ने हाफ मैच कभी कभी ट्रांसप्लांट कर दिया तो ये खर्चा 15-20 लाख तक हो जाता है, पर जान का खतरा 10-20% बना ही रहता है। और जो हम लोग अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट जो मैंने आपको बात बताई थी, जहां पे आप बाहर के किसी डोनर रजिस्ट्री से सेल्स वगैरह अगर मंगवाते हैं, तो यही खर्चा 35-50 लाख के बीच में हो सकता है और इसमें जान का खतरा 20-30% होता है। तो ये सारे ही बहुत ही खर्चिक उपाय है। तो इसीलिए पर ये छोड़ के आज की तारीख में इस बीमारी के रुग्णों को पूरी तरह से ठीक करने के लिए कोई भी उपचार पद्धति अवेलेबल नहीं है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं तो आप नई पेशी बनाने वाली एक सिस्टम लेके आते हो। तो जब हम लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं और ये सक्सेसफुल हो जाता है, तो ऐसे बच्चे रक्त संक्रमण से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं, उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है।
1: अच्छा, यदि सक्सेसफुल हो गया तो?
0: यदि सक्सेसफुल हो गया तो।
1: लेकिन इसी पूरी प्रक्रिया में इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को और उसके परिवार को तमाम तकलीफों का सामना भी करना पड़ता होगा।
0: बहुत सारी तकलीफें होती है। समझ लीजिए कि आपके पास ऐसा बच्चा है जिसे आपको कम से कम महीने में एक बार तो अस्पताल लेके जाना है। अब जब अस्पताल लेके जाना

0: जो लेके जाने वाला है उसे भी अपने भी काम से छुट्टी लेनी होती है। घर पे बाकी के अगर बच्चे बाकी की चीजों के ऊपर है तो उस पे भी ध्यान नहीं दे सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हर महीने महीने तो शुरुआत में लगता है, बाद में तो हर 2-3 हफ्ते में लगता है, तो आपके हॉस्पिटल जाने की फ्रीक्वेंसी भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। दूसरी चीज होती है कि देखिए ब्लड संक्रमण तो हो गया किस्सा, जो 1990 के दशक से पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गए जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के गाइडलाइन ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे या ब्लड बैंकिंग के गाइडलाइन ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, तभी तो उन बच्चों को HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जैसे भी इन्फेक्शन का संक्रमण हो गया है, उसका इलाज और उसकी तकलीफें तो अलग से रही है। 90s के बाद ब्लड बैंकिंग के गाइडलाइंस काफी स्ट्रिक्ट होने की वजह से इन बीमारियों का संक्रमण तो काफी मात्रा में कम हुआ है, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि जैसे HIV जैसी बीमारियां है इनमें एक विंडो पीरियड होता है जिसमें ये बीमारी ब्लड में नहीं पाई जाती है पर होती है वहां पे, तो इस तरह से उनका संक्रमण हो जाता है। तो बच्चों को पहले जो बीमारी उसमें और एक नई बीमारी लगी जिसका भी आपको इलाज करवाना पड़ता है, ब्लड अरेंज करना, ब्लड के लिए जो फिल्टर लगता है उसको अरेंज करना, प्लस जो दवाइयां लगती है जो लोहों को कम करने के लिए जरूरी होती है। जो शुरुआती में दवाई थी वो सिर्फ इंजेक्शन के रूप में अवेलेबल थी, तो बच्चों को एक इंजेक्शन का पंप कंटिन्यूसली लगा के रखना पड़ता था। अब बच्चा तो इंजेक्शन पूरे दिन भर लगाते रहे तो पूरा आप तो नहीं कर सकते हैं, और ये इंजेक्शन महंगे भी होते थे काफी। अब टैबलेट्स का विकल्प आ चुका है, जो पहले वाले टैबलेट से काफी सारे साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, नई टैबलेट्स आए उनके साइड इफेक्ट्स कम है पर कीमत ज्यादा है।
1: डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट के पास इतनी योजनाएं होती हैं बच्चों के वैक्सीनेशन के मामले में और भी जो बच्चों के हितकारी जो योजनाएं होती हैं उनके लिए, तो क्या इस बीमारी के इलाज के लिए किसी NGO से किसी अन्य संस्था से मदद प्राप्त हो सकती है या नहीं?
0: जरूर मदद प्राप्त हो सकती है, लेकिन देखिए एक जानना जरूरी है कि ये जो NGOs है और जितना पेशेंट्स का बर्डन है और इनको हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये मिलने वाली मदद बहुत कम होती है। फिर भी हर जगह पे अलग अलग सोसाइटीज बनी हुई है, जैसे कि एक है थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी जो ऑल इंडिया लेवल पे काम करती है अगेंस्ट थैलेसीमिया करके है, एक इंडियन थैलेसीमिक सोसाइटी है, और हर जगह पे रेड क्रॉस से और अलग अलग सोसाइटीज फॉर्म की जाती है। तो हर शहर में जो है थैलेसीमिया सोसाइटी फॉर्म करी गई है। सबसे जो पहले फॉर्म हुई थी वो बम्बई के KEM अस्पताल में और JJ अस्पताल में फॉर्म हुई थी, तो वहां पे थैलेसीमिया के लिए स्पेशल फंडिंग होता है। दूसरी है जो एम्स दिल्ली में है, फिर कलकत्ता में है, और हर जगह में जैसे रायपुर है, चेन्नई है, हर जगह ने अपने अपने एक थैलेसीमिया की सोसाइटी बनाई हुई है।
1: माँ बाप अपने मरीज बच्चे के लिए लोकल किसी छोटे टाउन नगर कस्बे में ये मदद चाहे तो क्या करना चाहिए?
0: जब हम लोग एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर करके बात करते हैं तो हम लोग यही कहते हैं कि इस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। यह जो सिस्टम्स है जो हम लोग बनाए जो मुख्य शहरों में यानी फर्स्ट टायर या सेकंड टायर सिटीज में सिर्फ देखी जाती है, वो हर छोटे मोटे शहर में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उपलब्ध कराई दे सकती है, यानी गवर्नमेंट में उपलब्ध कराई दे सकती है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है कि सेफ ब्लड मिलना, और दूसरा होता है कि जो ब्लड के लिए फिल्टर्स लगते हैं ये कम कीमत पे अवेलेबल करवा देना, और तीसरा होता है जो लोहा कम करने की दवाइयां होती है ये भी कम कीमत पे उपलब्ध करवा देना। अगर पेशेंट अपने निगड़ित थैलेसीमिया सोसाइटी के अंडर अगर रजिस्टर हो जाता है तो इन सब चीजों में उनको मदद मिल सकती है।
1: अच्छा, जहाँ तक आपने प्रिस्क्रिप्शन लिखने की जो बात को तवज्जो देते होंगे, मरीज आपके पास भी आते होंगे, तो जो आजकल एक प्रचलन सा चल पड़ा है जेनेरिक दवाइयाँ जो कि ब्रांडेड दवाइयों के मुताबिक ही लेकिन कम कीमत में होती है, वो भी उपलब्ध है?
0: दुर्दय की ये बात है कि इस बीमारी में जो दवाइयाँ चल रही है इसमें ज्यादा जेनेरिक्स आए नहीं है। प्रॉब्लम एक अपनी तरीके से फार्मा कंपनीज भी जो होते हैं ना जेनेरिक्स बनाते हैं जहाँ पे उन्हें ज्यादा फायदा दिखता है। ये जो बीमारियां है इसमें बहुत सारे मरीज जो होते हैं इन दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और बीमारी का जैसे स्वरूप देखा है जो लाइफ लॉन्ग होता है, तो बहुत बार ये बच्चे अपने इस बीमारी की वजह से दूसरे या तीसरे शतक के आगे जाते ही नहीं है, दशक के आगे।
1: हो सकता है कि हमारे इस प्रोग्राम को सुनकर कोई कंपनी कोई पहल कर दे।
0: जरूर, मैं भी यही चाहूंगा।
1: फिलहाल हम चाहेंगे आप अपनी पसंद का एक कोई गाना यहाँ पर जरूर सुनवाएं।
0: कि वे तो मैं बताना चाहता हूँ कि थैलेसीमिया में जो है हरेक की लड़ाई है, हरेक ने अपनी अपनी लड़नी है, आगे आगे धीरे धीरे तो चलेंगे। एकला चलो रे करके अमिताभ बच्चन की आवाज में जो गाना है कहानी फिल्म से मैं सुनना चाहूंगा।

0: गाना बहुत इंस्पायर करने वाला और बहुत ही प्रेरक आपने सुनवाया। डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया की बात चल रही है, इस बीमारी को रोकने के लिए क्या उपाय योजनाएं आपने मन में सोची हैं या आप बताएंगे हमारे सुनने वालों को, जिसमें शामिल होगी बातें बचाव, सावधानियां और रोकथाम।
1: देखिए कैसे होता है कि उपचार से प्रतिबंध भला, ये तो एक सबसे महत्व का ज्ञान होता है और ये सबसे ज्यादा ध्यान में रखना जरूरी होता है
0: जी।
1: मेन ये चीज सीखना जरूरी है कि एजुकेशन के माध्यम के द्वारा लोगों को प्रभावित करना, अगर आप लोगों को बता सकते हैं इस बीमारी के बारे में और कैसे रोक सकते हैं, वही सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम हो सकता है। तो मीडिया के जरिए या स्कूल में एजुकेशन के जरिए अगर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं कि इसको कैसे रोका जाए, तो शालेय जीवन में एजुकेशन देना इस बीमारी में एक मुख्य साधन हो सकता है। एक परीक्षण भी किया गया था जहां पे शालेय एजुकेशन देखे इन्होंने देखा कि इस बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं क्या, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम पाया गया कि बच्चे स्कूल में तो सीख गए लेकिन बड़े होके उसके बारे में कुछ भी आकलन नहीं किया, उसके बारे में कुछ भी अभ्यास आगे नहीं किया गया। तो दूसरी एक स्ट्रेटेजी इसमें होती है कि कॉलेज के बच्चों में जो आगे चल के अभी शादी करेंगे और बच्चे बड़ा होंगे तो उनको एजुकेशन देना, ये भी मतलब इसमें जो होता है उनमें सबका टेस्टिंग किया जाता है, ब्लड का परीक्षण किया जाता है, हम लोग जैसे कहते हैं HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके ये बीमारी पता चल सकती है
0: जी जी।
1: अगर ये बीमारी पता चल गई तो उसके बाद में उनको एजुकेशन देना कि अगर आप आगे चल के शादी करते हो या जब बच्चे होने वाले हैं तो इसे कैसे रोका जाए। तो ये जो एजुकेशन है जो हम लोग कर सकते हैं 18 से 22 साल की जो उम्र में है, प्री मैरिटल जिसको एजुकेशन कहते हैं, वो कर सकते हैं। पर अभी इसमें भी प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आप ने बहुत सारे लड़कियों का ऐसा परीक्षण कर लिया और उसमें आधी बीमारी पाई गई, तो भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पे लड़की को कुछ भी हो शादी होना मुश्किल हो जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आते रहता है। तो एक

0: दूसरी स्ट्रेटेजी है कि आप ये अवस्था में करवा लीजिए। तीसरा एक जो इसमें चरण आता है, जब शादी हो जाए, शादी के बाद जब बच्चे प्लान करते हैं तो जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो आज सब लोग जाते ही है, उस वक्त पे माँ और पिताजी दोनों का ही टेस्टिंग करना। जब माँ और पिताजी का दोनों का ही टेस्टिंग कर लेते हैं, समझो माँ में आधी बीमारी है और पिता में नहीं है, या पिता में आधी बीमारी है और माँ में नहीं है, तो बच्चे में पूरी तरह से बीमारी आने का कोई भी चांस नहीं होता है। तो इसे आप छोड़ सकते हैं। पिता में भी आधी बीमारी है और माँ में भी आधी बीमारी है
1: जी।
0: अब इसमें जो है 25% चांस होता है कि बच्चे में भी वो बीमारी आएगी। तो उसमें हम लोग ये करते हैं कि जब गर्भावस्था में 8 से 12 हफ्ते के बीच में अंदर के बच्चे का परीक्षण करते हैं, अगर उसे थैलेसीमिया मेजर है यानी 25% जो चांस है, तो उसमें हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी अबॉर्शन की सलाह देते हैं। 75% चांस होता है कि वो बच्चे को आधी बीमारी रहे या पूरी तरह से नॉर्मल रहे, और वैसे रहा तो हम लोग प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने की सलाह देते हैं। तो इस तरह से आप थैलेसीमिया मेजर के बच्चे का जन्म होना यानी वो बॉर्न होना से रोक सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, विश्व स्तर पर कहें या दुनिया के मामले में अगर आप सोचें और भारत की तुलना में इसको मद्देनजर रखें, तो इस बीमारी को रोकने के लिए कोई खास कदम उठाए जाने चाहिए आपकी नजर में?
0: देखिए कैसे है कि जागतिक स्तर और भारतीय स्तर ये दोनों ही एक अलग अलग विषय बन जाते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है कि हर जगह की जो एक जीवन प्रणाली या जीवन शैली वो पूरी तरह से अलग हो जाती है, जो कुटुंब व्यवस्था है वो भी अलग होती है। तो इसी की वजह से जो सारे कदम उठाए गए जागतिक स्तर पर वही भारतीय स्तर पर काम करेंगे कि नहीं, ये कहना आज के तारीख में तो बहुत मुश्किल है। जागतिक स्तर पे जो आप लोग देखेंगे तो अलग अलग सोसाइटी जो फॉर्म की है, जैसे थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी या रेड क्रॉस है, इनके माध्यम द्वारा जो उनमें जन जागृति की गई या उनमें जो परीक्षण किए गए, वैसे वर्ल्ड थैलेसीमिया डे होता है, हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इसमें थैलेसीमिया विषय के बारे में जो भी जानकारी होती है, थैलेसीमिया पेशेंट्स के जो राइट्स होते हैं, उनके लिए क्या बेटर सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती है, उसके लिए कोशिश की जाती है। तो हर साल ये 8 मई को मनाया जाता है, जिसमें थैलेसीमिया के बारे में एजुकेशन पूरे समाज को दिया जाता है, थैलेसीमिया पेशेंट्स को समझाया जाता है, जिससे उनकी बेटर केयर बनी रहे। तीसरी चीजें कुछ कुछ जगह पे जो उन्होंने किया, जैसे साइप्रस जैसी छोटी सी कंट्री थी जहां पे उन्होंने प्री मैरिटल टेस्टिंग कंपलसरी किया था, उसके बदले आप शादी नहीं कर सकते हो, तो वो टेस्टिंग कंपलसरी कही गई। तो उसके वजह से उन्होंने थैलेसीमिया मेजर होने में, बच्चे पैदा होने में तो ड्रॉप पाया लिया, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स को उनके निजी जीवन पे हमला जैसे लगा कि शादी के पहले ये टेस्ट करना कंपलसरी है गवर्नमेंट से। तो कुछ कुछ जो होते हैं बहुत ही रेडिकल विचार हो जाते हैं,
1: उसकी
0: तो
1: इंडिविजुअलिटी
0: जो होती है अब जरूरी होता है। तो फिर बाद में ये देखा गया कि जब गर्भावस्था से पहले जब लेडीज आती है गायनेकोलॉजिस्ट के पास फर्स्ट टाइम, ये एक बेटर वक्त है कि उस वक्त उसका और उसके हस्बैंड का परीक्षण किया जाए, जिसकी वजह से पता चले कि उनमें ये बीमारी है कि नहीं। दूसरी एक चीज है कि ये परीक्षण जिंदगी में एक ही बार लगता है, जैसे कि जो मेरा ब्लड ग्रुप है ए ग्रुप है तो वही रहेगा जिंदगी भर, वैसे अगर मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ और मेरा ब्लड टेस्ट किया जाता है तो मैं जिंदगी भर थैलेसीमिया माइनर ही रहूंगा। तो जीवन में एक बार ये परीक्षण होना सही समय पे ये ज्यादा जरूरी है।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। कामयाब इलाज होता है, एक सावधानी होती है, चाहे वो वैश्विक स्तर पर हो या हमारे भारतीय स्तर पर हो, समझना होगा इसके लिए और उसके मूल में जाना होगा। बहरहाल यहाँ जरूरी होता है कि गीत संगीत का माहौल बने और कुछ गाने की बात हो जाए। कौन सा गीत है?
0: देखिए अभी तक तो मैं पुराने गीत थोड़े सुनाए जा रहा था, एक मेरा बहुत ही प्यारा गीत है, थोड़ा सा मायूसी भरा है पर फिर भी थोड़ा सा दिल के करीब है, रोक पिक्चर का मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई आपने मानसिक स्तर को हिलाने वाला सुनवा दिया। भारत का जो प्रादेशिक और सांस्कृतिक रचनात्मक माहौल है उसको यदि ध्यान में रखें तो बहुत सारी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग जलवायु होती है, वहाँ का कल्चर अलग होता है। तो आपकी राय क्या है?
1: पूरी दुनिया में उपाय योजना की गई, वही भारत में लागू होगी कि नहीं, ये ज्यादा समझना जरूरी है। हमें इस देश की रचना को, इसे कुटुंब व्यवस्था को समझना ज्यादा जरूरी है। कोई भी नियम बनाने से पहले या कोई उपाय योजना करने से पहले तो ही वो सफल हो सकती है। कंपल्शन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हर नागरिक को ये समझना जरूरी होता है कि एक थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा होना एक परिवार के ऊपर और वैसे ही देश के ऊपर एक आर्थिक बड़ा बोझा होता है, और इससे आपके जो सांसारिक जीवन पे है उस पे भी धीरे धीरे असर पड़ने लगता है। तो जो उपाय योजना की जाती है ये आपके हित में ही होती है, ये समझना जरूरी है। एक संस्कृति को देखें, जो पैट्रियार्कल हम लोग कहते हैं, जो मुख्य सिस्टम है, तो इसमें अगर लड़की में कुछ दोष है, कुछ कुछ फैमिलीज में ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो आगे चल के ये मुश्किलें बढ़ा सकता है। और अगर देखेंगे तो जिसको टेस्ट किया है उसके भी जीवन में ये मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो इसके लिए उनका काउंसलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा मेरे ख्याल से वो है पोस्ट मैरिटल, बच्चे होने से पहले उनका जो टेस्टिंग किया जाएगा, वो जिसमें आप जीवन साथी तो चुन चुके हैं, तो अभी बच्चा होने से पहले जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, किसी वक्त पे जाते हो, तभी ये थैलेसीमिया के लिए टेस्टिंग करना ज्यादा जरूरी है। उससे क्या होगा कि आपको एक अंदाजा आ जाएगा, समझो आधी बीमारी है एक में नहीं है तो कुछ आगे जाके चिंता करने का विषय ही नहीं है, दोनों को नहीं तो भी चिंता करने का विषय नहीं है। जब दोनों में आधी आधी थैलेसीमिया की बीमारी या और कोई हीमोग्लोबिन से निगड़ित बीमारी है, तो उसका फिर गर्भधारणा के वक्त परीक्षण किया जा सकता है 8 से 12 हफ्ते में, और फिर वो परीक्षण अगर सही है और बच्चे को ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर बड़ी बीमारी यानी थैलेसीमिया मेजर बीमारी है, उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगने वाला है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे का पैदा हम लोग रोक सकते हैं। और तीसरी चीज महत्व की ये है कि जब ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके जो माँ बाप है वो एक इफेक्टिव जरिया होते हैं उस फैमिली में इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। ये हमें जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए जब आप खुद उससे पीड़ित होते हो तब आप शायद उसकी ग्रेविटी, हम लोग बोलते हैं सिचुएशन ग्रेविटी, ज्यादा तरीके से समझ सकते हो और ज्यादा अपने लोगों में उसे कन्विंस कर पाते हो, तो वो एक जरिया है। और तीसरा और इम्पोर्टेंट है कि कम्युनिटी बेस्ड जो हम लोग कहते हैं सर्चेस से होते हैं, तो वहां पे अगर आप कम्युनिटी बेस्डिंग टेस्टिंग करवाते हो तो आप जानते हो कि ये सारी बीमारियां वहां पे है, तो जिंदगी में एक ही बार ये टेस्टिंग करवानी है तो आप जान सकते हो और आगे के लिए आप प्लान कर सकते हो।
0: और डॉक्टर साहब, एक बात यहां पर हम जानना चाहेंगे कि कई मरीज जो आपके पास आते हैं, लाए जाते हैं परिवार के साथ, मेल चाइल्ड होते हैं या फीमेल चाइल्ड होते हैं?
1: देखिए कैसे है कि भगवान की दया से इसमें मेल और फीमेल ये बीमारी ज्यादा फर्क नहीं करती है। ये जो बीमारी होती है अपने, अगर आप इंसान की क्रोमोसोम या जेनेटिक रचना जाने तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें जो 44 क्रोमोसोम होते हैं हम लोग इसको ऑटोसोम कहते हैं, 2 क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई जो सेक्स को डिसाइड करते हैं। ये जो बीमारी होती है ये सेक्स क्रोमोसोम से निगड़ित नहीं होती है, जो बचे हुए 44 जो ऑटोसोम्स हम लोग कहते हैं उससे निगड़ित होती है। तो इसी की वजह से मेल या फीमेल ये बीमारी कोई अंतर नहीं करती, दोनों को इफेक्टिवली उतनी ही अफेक्ट करती है।
0: बहुत ही प्रभावशाली बात आपने बताई है। और हम एक और गाना यहाँ पर आपसे सुनना चाहेंगे।
1: अगला गाना तो मेरे दिल के थोड़ा करीब है, क्योंकि मेरी जो बेटी है इस गाने

0: तो बाजीराव मस्तानी फिल्म के इस गाने के बाद वक्त की पाबंदी को मद्देनजर रखते हुए घड़ी की ओर नजर डालते हुए हम चाहेंगे कि चलते चलते इस बीमारी के बारे में कोई फाइनली एक संदेश आप देना चाहें तो क्या कहेंगे?
1: जब मैंने हिमाटोलॉजी ये ब्रांच चुनी अपने लिए, उसके बाद जब मैंने काम किया तो इन छोटे छोटे बच्चों को देखने के बाद थैलेसीमिया मेरे दिल के करीब एक विषय बन गया है। तो मैं आज की युवा पीढ़ी को और सारी जनता को यही एक संदेश देना चाहूंगा, देखिए थैलेसीमिया वाले बच्चे ना ही कोई एक शाप है, ये हमारी जो अज्ञानिकता है उसके वजह का एक कारण है, जो है उसी की वजह से वो बच्चे का जन्म हुआ है। तो इस बच्चे को निग्लेक्ट मत कीजिएगा, इस बच्चे को जो भी उपचार जरूरी है उस बच्चे का जरूर ये उपचार करवाइएगा, उसके तरफ ध्यान दीजिएगा और अपने आप को और अपने जो परिवार है और जो अपने दोस्त है उनको आप एजुकेट कीजिएगा कि ये बीमारी को कैसे रोक सकते हैं। तो इस बीमारी को रोकथाम करना यही इसका मुख्य इलाज है। हम लोग इस बीमारी को जड़ से तो मिटा नहीं सकते हैं लेकिन इसे जरूर रोक सकते हैं। तो आप जरूर अपनी टेस्टिंग करवाइएगा, जानिएगा कि आपके रक्त में ये गुण है या नहीं है और फिर आगे बढ़िएगा, क्योंकि अगर हमने आज ये रोकथाम नहीं की तो ये बच्चे दिन ब दिन बढ़ते ही जाने वाले हैं और आपके फैमिली के ऊपर और अपने देश के ऊपर एक नया आर्थिक दबाव डालने वाले हैं।
0: बहुत ही अच्छी गहरी सूक्ष्म जानकारी आसान शब्दों में आपके लफ्जों से निकली है और हम चाहेंगे कि इस तरह की जागरूकता बनी रहे और सुनने वाले इसका पालन करें। जो जो इससे ग्रस्त हैं वे जरूर जागरूक होकर अन्य लोगों को भी जागरूक बनाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आज के इस थैलेसीमिया विषय पर आपने उपचार और बचाव और सावधानियां तमाम सारी जानकारी दी, तो विविध भारती की ओर से, सुनने वालों की ओर से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
1: शुक्रिया राजेंद्र जी।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात।

0: मुंबई के सुप्रसिद्ध हेमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर आशय प्रमोद करपे से। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनीता वेस्ली पटेल। अब दीजिए आज के इस कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है, हर रोज सुनिए पिटारा।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपने आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग में।

हरिओम शरण की गई इस भक्ति रचना के साथ हमने शुरुआत की आज के रंग तरंग कार्यक्रम की। चलिए अब बढ़ते हैं अगली रचना की ओर।

0: मीराबाई का ये भजन आप सुन रहे थे चित्रा सिंह की आवाज में। धुन बनाई थी जगजीत सिंह ने। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर।

0: करता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुधा मल्होत्रा की आवाज में आप सुन रहे थे ये गजल, तर्ज बनाई थी जगजीत सिंह ने। चलिए अब जगजीत सिंह की आवाज की ओर बढ़ते हैं। कलाम है जावेद अख्तर का।

तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। दिल भी तू जा भी तू एल्बम से जगजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे जावेद अख्तर का कलाम।

0: मधुरानी की तर्ज पर जमीर काजमी का ये कलाम आप सुन रहे थे छाया गांगुली की आवाज में इश्क एल्बम से।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
2: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
1: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
2: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सब के नाम उनके जवान पे क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर

फैज अनवर ने इस गाने को इस गाने को लिखा था। सोनू निगम की आवाज जान एल्बम से ये गाना आप सुन रहे थे। और अब हम बढ़ते हैं जावेद अली और आकांक्षा शर्मा की आवाजों की ओर।

0: संस्कृत भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: चलिए बढ़ते हैं अब रंग तरंग कार्यक्रम में अगली रचना की ओर। शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र के बोल, मन्ना डे और साथियों का स्वर। जी हाँ, फिल्म का नाम तीसरी कसम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
0: श्री शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें से दो भाजपा के और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद तथा बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के हैं। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी बार सरकार है। श्री शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों द्वारा पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति में उलटफेर हुआ है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने

तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती के कार्यक्रम यादों की महफिल में। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार और उषा मंगेशकर के गाए इस गाने के साथ।

0: टैक्सी चोर फिल्म का ये गाना था। इसी गाने के साथ शुरुआत हुई आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की। किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाजें थी। अनजान ने इस गाने को लिखा था। बप्पी लहरी का संगीत। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई गांवों में खिली गली।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। साथियों, बॉलीवुड गानों में हवाओं

पवन और फिजाओं का जिक्र बड़ी ही खूबसूरती से किया गया है, जो अक्सर रोमांस, उदासी या मौसम के मिजाज को दर्शाता है। तो आज हवाओं का जिक्र करने वाले कुछ प्यारे से गीतों को हमने शामिल किया है यादों की महफिल कार्यक्रम में। चलिए बढ़ते हैं लता मंगेशकर की आवाज की ओर।

0: विश्वनाथ फिल्म का बहुत ही मीठा ये गीत आप सुन रहे थे। एमजी हशमत ने इसे लिखा था और संगीत तैयार किया था राजेश रोशन ने। चलिए अब हम भी हवा के साथ साथ आगे बढ़ते हैं।
1: अरे

सीता और गीता फिल्म से ये दो गाना आपने सुना। किशोर कुमार और आशा भोसले के जुगल स्वर थे, आनंद बख्शी की रचना थी, राहुल देव बर्मन का संगीत। साथियों, हवाओं का जिक्र करते गीत हर दौर में लिखे गए हैं। हर दौर के गीत की जो हवाओं का जिक्र करते गीत हैं उनकी अपनी ही कहानी है। अब ये गीत कौन सी कहानी कह रहा है, आइए सुने।

शंकर जय किशन के संगीत से सजा ये गाना रमेश शास्त्री ने लिखा था, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम था बरसात। साथियों, ठंडी हवाएं और इंतजार, इनका रिश्ता भी बड़ा पुराना है। ठंडी हवाएं और इंतजार गीतों में जब ढलते हैं तो बड़े ही खूबसूरत लगते हैं।

0: चलता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नौजवान फिल्म से ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर का गाया हुआ। साहिर लुधियानवी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार सचिन देव बर्मन ने। हवा का जिक्र करते कुछ और सुरीले गानों के साथ हाजिर होते हैं अभी, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर।

0: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है अवधि लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
3: आपकी बात कार्यक्रम में,
4: अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें भेज सकते हैं।
3: और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले, तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से।
4: व्हाट्सएप मैसेज में सबसे पहले कैपिटल लेटर में AKB टाइप करें।
5: इसके बाद अपना नाम और पता लिखते हुए
4: कार्यक्रम संबंधी प्रतिक्रिया लिखकर
5: 830-321-9911 पर भेज दें।
3: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा, आपका सच्चा हम सफर।
6: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
3: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
6: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
3: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
6: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
3: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
6: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
3: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
7: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

अवधि लोकगीत का कार्यक्रम लोकरंग में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं विमला कठौरिया और सखियों की आवाज में ये देवी गीत।

0: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
1: अवधि लोकगीत का आनंद आप ले रहे हैं कार्यक्रम लोक रंग में। कार्यक्रम में अगला लोकगीत आइए सुनते हैं ऋतुपर्णा बर्मन और सखियों की आवाज में, ये विवाह लोकगीत।

अवधि लोकगीत का आनंद आप ले रहे हैं कार्यक्रम लोक रंग में। कार्यक्रम में अगला लोकगीत आइए सुनते हैं मालनी अवस्थी और सखियों की आवाज में।

मालनी अवस्थी और सखियों के गाए इस लोकगीत के साथ अवधि लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं।

0: दोपहर के एक बजे हैं। प्रस्तुत है फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
3: और भाई साहब क्या हाल है?
4: यार हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे? बगल में डस्टबिन है।
3: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
4: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और

0: को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
1: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
0: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
1: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
0: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, यह आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
1: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
2: कार्यक्रम कुछ तुमने कहा कि आज के सफर में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और दोस्तों आज के सफर में मैं हूं ऋचा आपके साथ। कार्यक्रम में ये पहला संदेश जो हम शामिल करने जा रहे हैं ये आया है मुकेश

गोस्वामी का उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। ये अगला संदेश आया है ज्ञान भूषण शर्मा रावर करनाल से, दिनेश वर्मा रिंगनी छत्तीसगढ़ से, मोहम्मद फरमान जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, बलकरण वर्मा ग्राम पंचायत बठीना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से, नसीब मोहम्मद छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से, अंकुश अरोड़ा खुर्जा उत्तर प्रदेश से, राजकुमार डोडी गांव फरासी जिला हिसार से, मोहम्मद यासीन नई बस्ती गंज डुंडवारा से। और ये अगला संदेश आया है मोहम्मद कलीम जख्मी का गंज डुंडवारा से। राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से राम साहू का ये संदेश आया है। और अगला संदेश राष्ट्रपाल गजबिये का आया है छत्तीसगढ़ डोगर गांव से। देवेंद्र कुमार गुप्ता कस्बा उघैती से, सोमदत्त नाभा जिला पटियाला पंजाब से, शमसुल कमर राही का ये संदेश आया है गंज डुंडवारा से, जगदीश ठाकर आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से, राजू माठे जलगांव से, बिल्लू सिंह लोहारू हरियाणा से। और ये अगला संदेश गोविंद वैष्णो का आया है लसुडिया पाता नरसिंहगढ़ राजगढ़ मध्य प्रदेश से। विनोद लखन पाल का ये संदेश आया है गांव रावर जिला करनाल से। कुंवर कृपाल सिंह परिहार का ये संदेश है आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म कुछ कुछ होता है से ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में।

और कार्यक्रम में अगला गीत अब आइए सुनते हैं फिल्म हमराज से, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है इरशाद अहमद अहमद मदरसा भावपुर मड़ियाओं जौनपुर से। अगला संदेश आया है धर्मेंद्र छीपा भोपालगढ़ राजस्थान से। चंद्रभान राजवाड़ी का संदेश आया है अनुजनगर सूरजपुर छत्तीसगढ़ से। बनवारी जयपाल गंगानगर राजस्थान से। नंद किशोर घटे बीट शहर महाराष्ट्र से। लक्ष्मण सिंह राजपूत छुरी छत्तीसगढ़ कोरबा से। नाजमुल जावेद का ये संदेश आया है गुमला झारखंड से। हुकुम करमरकर का संदेश है बेरड़ी मध्य प्रदेश से। ईश्वरलाल मेहर भटुनी मंदसौर मध्य प्रदेश से। रविंद्र मोहन दास किशनगंज बिहार से। राजेंद्र नारक बटिडा रोड मंडी डब्वाली से। सोहन जोशी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। और ये अगला संदेश प्रकाश निषाद का है जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। और वडिंगखेड़ा पंजाब से आर कुमार। और ये अगला संदेश रमेश चौहान का जोधपुर राजस्थान से। विनोद मूरत उज्जैन से। के आर साहू देवरी भाटापारा से। पटवा जी का संदेश है धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से। आरसी कांवड़े जवाहरनगर दुर्ग से। और अब्दुल सत्तार अब्बासी का ये संदेश है मुगलपुरा से। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म हमराज से ये गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

कार्यक्रम में अगला संदेश जो हम शामिल करने जा रहे हैं ये आया है नीलू मेघ का राजधानी रायपुर से। वली उल्लाह अंसारी का ये संदेश आया है पुराना तालाब डुमराव से। राजेश वर्मा लाल कुर्ते रुड़की कैंट से। अरविंद कुमार बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से। गजानन येले का संदेश है सिद्धार्थ नगर दरियापुर बावली से। सतीश अनेजा चंडीगढ़ खैल बाजार पानीपत से। नरेश मल्होत्रा नीटू महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी का संदेश है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान। विक्रम मालवीय गुलबालोद आलोड जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। और ये अगला संदेश है मोहम्मद जाकिर मंसूरी का मुंगीसापुर से। सहारनपुर से राधा नामदेव लालगिरी गोस्वामी रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से। राधेश्याम शर्मा गांव हाणी खेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से। अरुण कुमार मालवीय बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से। और ये अगला संदेश है रियासत हुसैन सिद्दीकी का जसपुर उत्तराखंड से। शेख जियाउर रहमान का ये संदेश आया है मानपुर जिला मुरादाबाद से। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम का ये संदेश है।

बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ये संदेश आया है ब्रजेंद्र विश्वकर्मा का, और ये अगला संदेश उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से आया है उमा सिंह का। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म दीवाना से ये गीत कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में।

0: IT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ है धरती की जान। वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा, सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी, बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें। पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।

0: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
1: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
0: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
1: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
2: मन का रेडियो बजने दे जरा।
3: गर्मी का कहर बढ़ रहा है और इसके साथ ही खतरा बढ़ रहा है लू का, लेकिन घबराएं नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी बरतें।
4: जब भी बाहर निकलें, कुछ खा पी कर निकलें, साथ में पानी की बोतल जरूर रखें।
3: और हाँ, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, सिर को गमछे, टोपी या दुपट्टे से ढककर ही बाहर कदम रखें।
4: चक्कर आए, सिर में तेज दर्द हो या बहुत कमजोरी लगे, तो इसे मामूली थकान न समझें, ये लू के लक्षण हो सकते हैं।
3: तुरंत छायादार जगह पर जाएं, ORS या नींबू पानी का घोल पिएं और नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें।
4: याद रखिए, आपकी सतर्कता ही आपको इस तपती गर्मी से सुरक्षित रख सकती है।
3: खुद भी बचें और दूसरों को भी जागरूक करें।

फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। कार्यक्रम में अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म में खिलाड़ी से, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है सनावद से शेख मूसा मोहसिन ने। मुकेश कश्यप का ये अगला संदेश आया है जिला मुरादाबाद दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से। शेख अल्लाह बख्श का संदेश है तेलंगाना निजामाबाद से। सुरेश जायसवाल मान जमानिया जिला गाजीपुर से। शरफुद्दीन अंसारी बक्सर बिहार से। ओम बगड़िया गाँव बांडीवाला फाजिलका से। दीपेश वर्मा का ये संदेश है ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। गुरमीत सिंह साउथ दिल्ली से। मंगल जनागल राही का ये संदेश है, और ये कहाँ से आया आपने पता नहीं लिखा है। प्रताप पांडे का ये अगला संदेश है कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से। सतीश शर्मा रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से। हरजिंदर छिंदा का संदेश है नथाना पंजाब से, और ये अगला संदेश है मास्टर खिल्लू परवेज का हरदोई रोड लखनऊ।

उत्तर प्रदेश से। ये अगला संदेश माखन वर्मा नांदघाट छत्तीसगढ़ से। एम फारूक शेख का ये संदेश है गणेशपुर गंज डंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से। और ये अगला संदेश महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आया है जयपाल यादव का। माधव नामदेव जबलपुर मध्य प्रदेश से। और ये अगला संदेश संतोष भाकरे का शाहजी नगर देगलूर नांदेड़ महाराष्ट्र से। श्री कृष्ण बाठे धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से। अनिल मोहन का संदेश आया है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। और ये अगला संदेश दाता सिंह शेखावत का आया है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म खिलाड़ी से ये गीत अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में।

कार्यक्रम में अगला लोकगीत आइए सुनते हैं फिल्म तेरे नाम से और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है प्रमोद कुमार साहू बोरसारा छत्तीसगढ़ से। महेश कुमार टेलर का ये संदेश आया है डिडवाना राजस्थान से, नाना लाम से मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा से। शुभ चंद्र बजाज का संदेश है कालका से, टीडी मल्होत्रा मोहाली चंडीगढ़ से, राजेंद्र गंगवार कोयलडिया नवाबगंज बरेली से ये संदेश आया है। शंकर लाल जायसवाल का संदेश आया है नांदेड इताला महाराष्ट्र से, प्रेम जी भाई भारतीय का संदेश है उत्कल प्रदेश ओडिशा से, सुभाष गोदारा का संदेश है गांव हीरावली फाजिलका पंजाब से, नरेंद्र शुथार का संदेश है नोहार राजस्थान से, गंज टुंडवारा मोहम्मद कली मंसारी का ये संदेश आया है और अगला संदेश आया है दुर्गा राम साहू का चरडोगरी पिपरिया कबीरधाम छत्तीसगढ़ से, बेचेलाल गंगवार का संदेश है बरेली से ये आया है और अगला संदेश छत्तीसगढ़ से आया है डॉक्टर नौशाद अहमद का, बालकृष्ण का संदेश है नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, गांव खोरावली श्रीगंगानगर से आया है ये संदेश विनोद बारासा का, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना नबी हसन अब्बासी का ये संदेश है मारहरा दरवाजा एटा से और ये अगला संदेश है रामगंज खंडवा विजय महोबिया का। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म तेरे नाम से ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में।

आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। कार्यक्रम में अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म में लावारिस से, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है आफताब अंसारी गंज डिडवारा उत्तर प्रदेश से, जगमोहन सिंह प्रजापत गांव लोहोडडा बागपत से, सुरेश गगनेजा जलालाबाद वेस्ट से, सोलापुर

से विष्णु मस्कीन, सुनील पाठक अनारकली बाजार जगराओं से, ओम प्रकाश राय का संदेश है कुटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, रियासत हुसैन सिद्दीकी जसपुर उत्तराखंड से, विजय सुरलकर का संदेश आया है मोताला महाराष्ट्र से, फागुराम यादव संबलपुर कांकेर से, गांव नवागांव मुढ़ही पार राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से, सोहनलाल साहू बाबा कुटीर रायगढ़ से, शिव कुमार चौहान कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से, रवि कुमार राहुल संजय ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश से, राजनाथ गांव नारायण लाल साहू, और ये अगला संदेश आया है दिलशाद हुसैन का मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से, रघुवीर नगर दिलावर खान का ये संदेश आया है, विनोद वंडलकर का संदेश आया है रायपुर छत्तीसगढ़ से, गांव कुमार हिड़ा सुल्तानपुर से सैयद मसरूर का संदेश है, और ये अगला संदेश प्रज्ञानंद देवांगन का आया है बाघा मुड़ा कोमा खान से, और ये अगला संदेश आया है कस्बा सिंधौली मीरगंज बरेली से इमरान शेख, और दिग्दर्शन का संदेश आया है मेरठ कैंट से। तो आइए सुनते हैं फिल्म लावारिस से ये गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में।

कार्यक्रम में अगला संदेश आया है रणधीर गुप्ता का ओखाला संगम बिहार दिल्ली से और ये अगला संदेश है अशोक सिंह का धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से ये अगला संदेश है मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार का और ये उत्तम सिंह का संदेश आया है आर्यनगर कोहका भिलाई से और ये संदेश आया है बी कमल का मजनू का टीला से चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से ये संदेश आया है मुकेश गौतम का और ये अगला संदेश गुजरात गांधी ग्राम से आया है परवीन सोनी का ये संदेश आया है ग्राम पचौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया का और ये अगला संदेश आया है राहुल मनवार का संदेश है और ये आया है शाहूनगर यवतमाल से विनय मोहन का संदेश आया है जिला यमुनानगर हरियाणा से और ये राजू मिगलानी का संदेश आया है दुर्गा कॉलोनी हांसी से मोहम्मद रफीक परवार का ये संदेश आया है ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से उत्तम नगर दिल्ली से ये अगला संदेश है बोध राज खोरवाल का और ये अगला संदेश आया है महाराष्ट्र से रूपेश संघई का अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से अगला संदेश आया है रिजवान खान का और ये सुरेश राठौर का संदेश आया है गांधीनगर गुजरात से ज्योति नगर नोखा राजस्थान से अगला संदेश आया है पुखराज बड़गुजर का अनिल वर्मा का ये संदेश आया हुआ है सदर बाजार कुरावली से सुदर्शन साह का ये अगला संदेश आया है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से विनायक बेंडे का अगला संदेश आया है आकोट से दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से ये संदेश है हीरामणि वर्मा का और ये कार्यक्रम में अगला संदेश जो आया है ये आया है भोला कॉलोनी घरौंडा जिला करनाल हरियाणा से विजेंद्र का ये संदेश है और अगला संदेश आया है अजीत कसाना का लदावली जिला मुरादाबाद से तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म बॉर्डर का ये गीत

बॉर्डर के इसी गीत के साथ कार्यक्रम कुछ तुमने कहा अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतांजलि।

0: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532211909।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़िया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 बजे के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com। ayodhyaakashvani@gmail.com।
3: कार्यक्रम गीतांजलि में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं गुलाम अली की आवाज में ये गजल।

0: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज।
1: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त।
0: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा।
1: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
2: कार्यक्रम गीतांजलि में अब आइए सुनते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में ये गजल।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई इस गजल के साथ कार्यक्रम की गीतांजलि अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। दोपहर के 2:15 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप

0: से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के.ए. सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से

एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने

0: ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़ककर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, CBI जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए और IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। बहने सुने अपना

0: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 9161877347।
2: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा, आपका सच्चा हम सफर।
3: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
3: आकाशवाणी अयोध्या FM, जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप, न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
2: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।

0: सुनिए।
1: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचा दी और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में

0: सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।
1: सभी बहनों को प्रज्ञा का प्यार भरा नमस्कार। बहनों देखिए, जैसे हम लोग हैं अपने बच्चों को खूब प्यार करते हैं, उन्हें स्नेह देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं ना, वैसे ही हमें वृक्षों की, पेड़ पौधों की भी देखभाल करनी चाहिए। बहनों पौधे जो हैं वो हमें फल फूल देते हैं, औषधियाँ देते हैं, साग भाजी भी हमें इन्हीं से मिलता है, जो अनाज है वो भी एक तरह से पेड़ पौधे के ही अंतर्गत आता है, फर्नीचर के लिए सूखी लकड़ियाँ हमें इनसे प्राप्त होती हैं, ईंधन मिलता है, एक तरह से हमें इनका हर हिस्सा लाभ में हमारे आता है। और अगर हम देखें तो इनसे जो हमारा खान पान है उसका लगभग 80% हिस्सा हमें इन्हें जो वनस्पति हैं उनसे मिलता है। और इसके अलावा देखिएगा, अगर हमारे पास पेड़ पौधे ना हो तो जो जीवन का हमारे सबसे आवश्यक चीज़ है ऑक्सीजन, वो हमें कैसे मिलेगा? और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो धरती पर जीवन संभव ही नहीं है बहनों। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर कि हम इनकी देखभाल करें, इन्हें सुरक्षित रखें, इसी बात को ध्यान में रखकर 12 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस या पौधों की सेहत का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ये दिवस भूख मिटाने, गरीबी कम करने, जैव विविधता की रक्षा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, पौधों के स्वास्थ्य के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग इसे मनाते हैं। और इसकी शुरुआत बहनों 2020 के राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष की विरासत के रूप में हुई और पहली बार 12 मई 2022 को हम लोगों ने इसे मना

0: मैनू अगर देखा जाए तो हमारे भोजन का जो 80% हिस्सा है वो हमें पौधों से ही प्राप्त होता है और इसीलिए इसकी सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है। अगर हम लोग देखें तो जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने हम लोगों के लिए तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए और उनका हम लोग खूब उपभोग किए, तरह तरह के फल खाए, ईंधन लिया, बहुत सारी चीज़ें हमें उनसे औषधि के रूप में भी बहुत सारी चीज़ें मिली। लेकिन क्या हम जो है अपनी संतानों के लिए वैसे ही पेड़ पौधे धरा पर छोड़ कर जाएंगे, ये सोचने की ज़रूरत है। हम अपने बच्चों को प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन क्या हम उन्हें प्रकृति पोषण और शुद्ध वातावरण दे रहे हैं? ये सब हम लोगों के समक्ष एक यक्ष प्रश्न है बहनों। तो हम सब मिलकर के ये संकल्प लें कि हम वृक्षारोपण करेंगे और प्रकृति को पोषित करेंगे, संरक्षित करेंगे, अपनी धरा को खूबसूरत बनाएंगे, हरियाली युक्त बनाएंगे बहनों, जिससे हमारे जो बच्चे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो स्वस्थ रहें और बहनों जो हमारे नवजात शिशु होते हैं ना वे बहुत ही सुकोमल होते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं और जन्म से लेकर 6 माह का जो समय होता है वो बच्चों के विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय उनके व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा होता है तो शिशु के व्यक्तित्व निर्माण में प्रारंभिक 6 महीनों का महत्व, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज कुसुम लता मौर्य जी हैं, वो हमें इस विषय पर विस्तार से जानकारी देंगी। तो सुनते हैं ये वार्ता।
1: हमारे श्रोताओं, किसी भी देश का भविष्य यानी कि आने वाला कल हमारे नवजात शिशुओं पर निर्भर होता है। बच्चों का भविष्य, आने वाला कल, बच्चों की शुरुआती देखभाल, पालन पोषण पर निर्भर करता है। एक नवजात बच्चा जन्म के समय कोमल मिट्टी के समान होता है। जिस तरह कुम्हार मिट्टी का बर्तन सुंदर ढंग से तैयार करता है, उसी प्रकार माता पिता, परिवार और वातावरण इन नौनिहाल बच्चे को अपने प्रेम दुलार की औषधि से सींच पात कर होनहार ढंग से तैयार करते हैं। इसलिए शिशु के व्यक्तित्व का निर्माण बच्चे के जन्म से ही होने लगता है। जब बच्चा जन्म लेता है उस दिन से 6 माह का जो उम्र होता है वह मानव की पूरी जिंदगी का बुनियाद होता है। तो इस बुनियाद को बहुत ही सूझबूझ से तैयार करना पड़ता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह 6 माह का देखभाल इस तरीके से हो कि कोई कमी के कारण वह गड़बड़ ना होने पाए, नहीं तो वह शायद पूरी जिंदगी भर कुछ ना कुछ गड़बड़ रह जाएगा। तो जो यह मानव रूपी जड़ है वह माँ के गर्भ से ही सही ढंग से देखभाल करने की जरूरत होती है ताकि होनहार बच्चा इस धरती पर माँ की कोख से जन्म ले। इस उम्र के बच्चे की देखभाल बहुत सावधानी और प्रेम से करना चाहिए क्योंकि यह समय उसके शारीरिक विकास और मानसिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस 6 माह में हम सबको उसके अच्छी विकास को पूरा ध्यान देते हुए किस किस तरीके से उनको सुदृढ़ बनाना है यह कार्य सही ढंग से इस्तेमाल करना अनिवार्य है। जैसे स्तनपान, अब स्तनपान में जब बच्चा जन्म ले तो उसको 2 घंटे के अंदर में जो माँ का पेउस का दूध, इसको खीस का दूध भी कहते हैं, जरूर पिलाएं। ये आम भाषा में इसे पेउस भी कहते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। ये जो खीस का दूध है उसमें कई बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है। जन्म से 6 माह तक केवल माँ का ही दूध देना चाहिए, यहाँ तक कि उसको पानी भी नहीं देना है। उस माँ के दूध में सारे वो तत्व विद्यमान रहते हैं जो उनको जरूरत है। माँ के दूध बच्चों के लिए विभिन्न रोगों से बचाने की शक्ति रखते हैं। दूध पिलाने वाली माँ को पुनः जल्दी से गर्भधारण की संभावना नहीं रहती है जितना कि दूध न पिलाने वाली माताओं में होती है। माँ का दूध पीने वाले बच्चे के जबड़े व मुंह का विकास भी बहुत ठीक ढंग से होता है। माँ का दूध शिशुओं को मोटापे से बचाता है। बच्चे को दूध 2 से 3 घंटे पर बार बार पिलाते रहना चाहिए। इसके बाद जब बच्चा बढ़ता है तो वह खुद से तय कर लेता है कि मुझे दूध कब कब चाहिए, वो रोके अपना संकेत करके बताता है। माँ के बीमार पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से उसको दूध देना चाहिए। अगर मान लिया डॉक्टर मना भी करते हैं तो उसको फिर ठीक होने के बाद दूध जारी रखना चाहिए और उस माँ को यह ध्यान देना चाहिए कि वो नशीले चीज का सेवन ना करे और वो गर्भ निरोधक गोली भी ना खाए। ये सब नवजात बच्चों पर बड़ा ही खराब प्रभाव डालता है। अब इसके साथ साथ हम कहते हैं स्वच्छता का भी हमारे बच्चों के लिए ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। जैसे बच्चे के कपड़े, बिस्तर और उपयोग की वस्तुएं साफ, बच्चे को रोज शुरू से नहलाएं, पानी गुनगुना करके, उसके नाखून की सफाई रखें, बीमार व्यक्तियों से दूर

रखें, क्योंकि बड़ा ही वो नाजुक होता है, आसानी से कीटाणु उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। उसका डायपर जो पहनते हैं बच्चे, उसको साफ सुथरा हो, अच्छे क्वालिटी का हो, और बातों का ध्यान में रखें। जब बच्चे को हर तरीके से सफाई पर हम ध्यान देंगे तो बच्चा बहुत सारी बीमारियों से बचा रहेगा। अब इसके अंतर्गत देखिए, बच्चे को जो छोटा बच्चा है उसको मालिश भी बहुत जरूरी है। मालिश मान के चलिए उसका एक आहार है, जैसे उसका दूध एक आहार है, क्योंकि जब बच्चे को आप मालिश अच्छी तरह से पूरे शरीर पे हल्के हल्के दबाव से कर देंगे, वह बच्चा बहुत ही सुख का आनंद प्राप्त करता है और आसानी से सो भी जाता है। मालिश करने से बच्चे की हड्डी और मांसपेशी मजबूत होती है। इस उम्र में बच्चे को कई बार मालिश करें ताकि उसकी हड्डियां मजबूत हो जाए और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मालिश में सरसों का तेल या नारियल का या डॉक्टर के बताए हुए तेल से भी हम कर सकते हैं। मालिश इतना जरूरी है कि ये उम्र बड़ा नाजुक होता है, और इसके साथ देखिए छोटा बच्चा जो होता है उसको नींद की भी बहुत जरूरत होती है। छोटे बच्चों को अधिक नींद की आवश्यकता होती है, उसकी एक दवा है। अगर वह अच्छी नींद नहीं सो पाते हैं तो बहुत चिड़चिड़े होने लगते हैं, इसलिए शिशु को शांत व सुरक्षित जगह पर सुलाना जरूरी होता है, ताकि गलती से बच्चा चोट चपेट में ना आए या अनजाने में कोई परेशानी उसके पास ना होने पाए। सोते समय उसे आरामदायक स्थिति में सोने देना चाहिए। अब इन बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण विषय टीकाकरण है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टीकाकरण बहुत समय से और बिना किसी खीज के समय समय पर हम लोग को लगवाना बहुत ही आवश्यक है। नवजात शिशु में कई खतरनाक बीमारियां कभी कभी होती हैं जो बच्चों का जान भी ले सकती हैं, जैसे काली खांसी, गला घोटू, टिटनेस, तपेदिक, तपेदिक का मतलब है टीबी, और पोलियो, निमोनिया, तमाम सारी ऐसी बीमारियां उनको अपने लगती हैं, क्योंकि वो नाजुक स्थिति होती है और वो बच्चे उसको कवर नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम पहले से सावधानी बरतने के लिए उनको जन्म से ही टीका लगवाना शुरू कर देते हैं। टीका जन्म के समय तुरंत जब बच्चा पैदा होता है तो उसको दो तीन टीके जो इम्पोर्टेंट है उसको तुरंत जन्म के समय लगवाना बहुत ही जरूरी है। सारी बहनें माताएं मेरी बहुत ही ध्यान से बात को अपने मन में लेंगी। और इसके बाद जब बच्चा 40 दिन का हो जाए, 1.5 महीने का हो जाए, तो उसको सारे टीके लगवाएं, फिर उसके 1 महीने के अंतर पर यानी 2.5 माह पर दूसरा सारी डोज दिलवाएं, फिर 3.5 महीने पर तीसरी बार टीका दिलवाएं। अगर कोई कारणवश कोई टीका छूट गया तो वह डोज बाद में भी, वह खुराक बाद में भी हम पूरा करवाएं, लेकिन कोई टीका छूटने ना दें। यह लक्ष्य बनाना हमारा सबसे बड़ा अनिवार्य फर्ज है। वैसे तो हमारी सरकार हर गांव, हर मोहल्ले में स्वास्थ्य केंद्र खोल रखी है, ताकि कोई भी इस टीके से वंचित ना रह जाए। इसीलिए आंगनबाड़ी केंद्र भी तैयार किया गया है कि ताकि कोई भी सुरक्षा से मेरे देश के नौनिहाल वंचित ना रह पाए। इसके बाद आता है मेरे बच्चों का प्यार और भावनात्मक देखभाल। ये जो बहुत ही नवजात बच्चा है, जो जन्म लेकर धरती पर आता है, वह बोल नहीं पाता है शुरुआत में, लेकिन दिन प्रतिदिन वह अपने संकेतों का प्रदर्शन करता रहता है। तो बच्चे का प्यार दुलार करते हुए उनको गोद में लें, 24 घंटे में कम से कम 6 से 10 बार दूध पिलाएं। परिवार के सदस्य जितनी बार संभव हो सके बच्चे को स्पर्श करें, मतलब छुएं, गोद में लेकर लहराएं, साथ में उसके खेलें, आंखों में आंख मिलाकर बातें करें, मुस्कान और प्यार का एहसास कराएं, सिर बच्चे का इधर से उधर घुमाते रहें, देखने, सुनने व महसूस करने का उसे अवसर दें। 4 से 6 माह तक के बच्चों के लिए रंगीन वस्तुएं ऐसी जगह पर रखें जिससे बच्चा देख सके और छूने का प्रयास कर सके। और बच्चे से संकेत से बात भी हम करें, उसके साथ ध्वनि करें, मतलब आवाज करें, ताकि वो हमारी तरफ देखे कि हम क्या कहना चाहते हैं, मेरी भाषा को समझे। हाव भाव से साथ में वार्तालाप भी उसके साथ हम करने का प्रयास करें। खिलौना ऐसा तैयार करें जिससे बच्चा खेल सके। अब इसके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे बच्चों के लिए स्वास्थ्य की निगरानी। वजन हम बच्चे का जन्म से ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि इससे बच्चे की सही निगरानी मिल जाती है कि हमारा बच्चा सुपोषित है कि कुपोषित है। अगर इसमें 3 श्रेणियां होती हैं, एक सामान्य श्रेणी, दूसरा है मध्यम ग्रेड, फिर थर्ड ग्रेड। अगर बच्चा हमारा सामान्य ग्रेड में है तो हमारा बच्चा मानिए कि सही स्वस्थ है और सही है अपनी उम्र के अनुसार। अगर उस उम्र के अनुसार वजन और लंबाई के अनुसार अगर बच्चा उससे ऊपर की श्रेणी में है या उससे नीचे की श्रेणी में है,
तो मान के चलिए मेरा बच्चा कुपोषित।

0: की श्रेणी में आ गया है। हम उसको तुरंत अपनी सूझबूझ से, अच्छे डॉक्टर को उसकी सलाह से या निजी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर उस बात को बताएं और उसको जो भी उपचार है सही तरीके से करें ताकि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे। वो क्योंकि बुनियाद है, बुनियाद में जंग लग जाएगा तो बहुत ही मुश्किल होता है उसको सही करना। अगर वो एक बार बिगड़ जाता है तो सही करने में बहुत समय लग जाता है। और इस निगरानी में हमें ये ध्यान देना है कि बच्चा सही ढंग से दूध पी रहा है कि नहीं पी रहा है। अगर नहीं पी रहा है तो समझ लीजिए उसको कोई तकलीफ है, और पूरी नींद ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसका कोई टीका छूट तो नहीं गया है। अगर कोई टीका छूटा है तो हम अपनी एनम बहन से या डॉक्टर की सलाह से उस डोज को पूरा करवाएं ताकि वो बीमारी पनपने ना पाए। बीमारी के लक्षण पहचानना, जैसे तेज बुखार हो, लगातार सांस लेने में परेशानी हो, उल्टी दस्त हो, अधिक कमजोरी महसूस हो, तो हम इसको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर की सलाह से उसको सही रखें। बच्चे को सुरक्षित वातावरण की बहुत ही ज़रूरत होती है, जैसे उसका कपड़ा, उसका बिस्तर, उसका माहौल, सर्दी गर्मी से बचाव, और अगल बगल में कोई ऐसे सामान ना रखे हो जिससे मेरा बच्चा चोट खा जाए, मतलब बहुत विशेष ध्यान देना है। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि नवजात रूपी पौधे का देखभाल बड़े ही सूझबूझ से हमें करना चाहिए ताकि वो बच्चा एक होनहार देश का नागरिक बन सके।
1: अभी हमारी बहनें सुन रही थी वार्ता शिशु के व्यक्तित्व निर्माण में प्रारंभिक 6 महीनों का महत्व विषय पर, और जानकारी दे रही थी कुसुम लता मौर्य जी। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारी बहनों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 बन जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: बहनों, अपनी जो आकाशवाणी है ना, उसको स्थापित हुए 90 साल हो गए हैं, और एक लंबा समय हो गया। इतने लंबे समय से ये लगातार जन जन को सूचनाएं प्रदान कर रहा है, शिक्षा, ज्ञानवर्धक चीज़ें बता रहा है और मनोरंजन भी कर रहा है। और कृषि है, मौसम है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, सरकारी योजनाएं हैं, और भी बहुत सारी जानकारी हमें आकाशवाणी के माध्यम से मिलती हैं। तरह तरह के गाने सुनते हैं हम लोग, झलकी सुनते हैं, नाटक सुनते हैं, तो जिससे हमारा मनोरंजन भी होता है और हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। तो बहनों, हमारे आकाशवाणी अयोध्या की एक नियमित श्रोता हैं जया रावत जी, और उनसे बातचीत करने चल रही हैं आज सरस्वती पाठक जी। विषय है आकाशवाणी @90 वर्ष। तो सुनते हैं ये इनकी आपस की बातचीत।
7: श्रोताओं, आकाशवाणी ने अपने 90 वर्ष पूरे किए हैं। 90 वर्ष गौरवशाली वर्ष, और एक ऐसा माध्यम जो एक साधारण व्यक्ति से लेकर के एक इंसान तक, जो पढ़ा लिखा है, नहीं भी पढ़ा हुआ है, जो सड़क के किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहता है या महल में रहता है, सब तक बराबर अपनी बात पहुंचाता है आकाशवाणी। एक ऐसा सशक्त माध्यम जो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का वादा करता है अपने श्रोताओं से। और जब हमारे श्रोता हमारी प्रशंसा करते हैं, हमारे कार्यक्रमों की विशेषता बताते हैं, हमें हमारी कमियां बताते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और अगर कोई श्रोता अगर हमारे आकाशवाणी के द्वार तक चल करके आ जाएं और हमसे मिल करके उनके चेहरे खिल जाएं, तो क्या कहना है। एक ऐसी ही श्रोता हमारे बीच में है, हमारे आकाशवाणी अयोध्या केंद्र पर आई हुई हैं, और उनका नाम क्या है, उनकी चहकती हुई आवाज में अगर हम खुद सुने तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आप कहाँ से आई हैं, अपने मुख से ही आप बताइए कि आपका नाम क्या है और अपना पूरा पता बताइए।
8: मैं जया रावत बस्ती जिले के ग्राम गुंदूपुर जगदीशपुर से आई हूँ।

0: आप सबसे आकाश और अयोध्या पे मिलने के लिए। मुझे यहाँ के सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। अमरजीत सर की आवाज अच्छी लगती है, देश दीपक सर की, सरस्वती पाठक मैम की, वंदना मैम की, नेहा मैम की, संजय धर द्विवेदी जी की आवाज और प्रस्तुति बहुत ही अच्छी लगती है। लाजवाब यहाँ से प्रोग्राम जाते हैं, हम सब सुनते हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और हम मिलने आए सर से यहाँ आकाशवाणी अयोध्या, बहुत खुश हैं हम आज। मैं
1: जय, आप किसके किसके साथ आई हैं?
0: सर मैं अपनी मम्मी के साथ और पापा के साथ में आए हैं। मैम
1: हमारी बातचीत कराइए अपने मम्मी पापा से।
0: ओके मैम।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते। आकाशवाणी अयोध्या की ओर से बहुत बहुत स्वागत है आपका
2: जी।
1: और किस तरह के कार्यक्रम आप सुनती रही हैं और किस उम्र से सुनती है?
2: हम तो बचपन से सुनते थे मैम
1: जी। बचपन से मतलब किस सन से लगभग?
2: रेडियो बहुत अच्छे लगते थे, हमारी शादी नहीं हुई थी तब से हम सुनते थे।
1: अच्छा,
2: आज भी सुनते हैं?
1: आज भी सुनती हैं?
2: आज भी सुनते हैं। आप तो बच्चे सुनते हैं, लगा देते हैं मोबाइल से सुनते हैं, नहीं तो रेडियो हमारे घर हमेशा रहता था, हम सुनते थे।
1: तो तब के कार्यक्रम और अब के कार्यक्रम आप देखती हैं कि आप रेडियो पर सुनती रही होंगी, अब मोबाइल पे भी आता है, ऐप पे भी आता है, कार्यक्रम का भी थोड़ा सा बदलाव हुआ होगा उसके तरीके में या फिर, तो कैसा अच्छा लगता है आपको? पहले अच्छा लगता था क्या, अब अच्छा लगता है?
2: अच्छा लगता है मैम, पहले वाला भी अच्छा लगता था, अभी और अच्छा लगता है।
1: अच्छा, किस तरह की जानकारियां आपको अच्छी लगती हैं, घर गृहस्थी के बारे में या फिर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चलती हैं उसके बारे में बताया जाता है, सामान्य बातें जो घर आंगन कार्यक्रम है या नारी जगत का कार्यक्रम है उसके माध्यम से बताई जाती हैं, तो किस तरह की जानकारियां आपको अच्छी लगती हैं और उससे क्या लाभ मिलता है आपको?
2: बहुत जानकारी अच्छी लगती है मैम और बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बेटियां भी सीखती हैं, उससे जानकारी लेती हैं।
1: हाँ। जया, आपके साथ आपके पापा भी हैं?
0: यस मैम, आए हैं पापा
1: जी। बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए।
3: हाँ जी, नमस्ते जी, मैं प्रहलाद रावत, मैं बस्ती जिला से हूँ और यहाँ पे आए हैं। बहुत खुशी आई यहाँ आप लोग से मिलने से, बहुत अच्छा लगा। आप लोग का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप लोग भी बहुत अच्छे हैं और आप लोग की बातों में बहुत मिठास है, बहुत अच्छी समझाते हैं आप लोग हर प्रोग्राम को, आदमी को समझाते हैं। आपके प्रोग्राम सुनने से लोगों के विचार आता है, विचार बदलता है, उनके दिमाग में अच्छी अच्छी बातें आती है, जो बुरी चीजें उनके दिमाग में वो अलग हो जाती हैं आपकी विचार से, उनको बहुत बहुत अच्छा लगता है, उनका भावना बदल जाता है आप लोग के विचार से, आप लोग के प्रोग्राम सुनने से उनके मन में जो गलत भावना है, गलत विचार है, वो दूर हो जाता है। अच्छा विचार और अच्छा भावना उन लोग के दिमाग में आता है।
1: क्या करते हैं आप?
3: हम स्वीट का काम करते हैं, मिठाई के कुक हैं
1: जी।
3: और मैं इंडिया नहीं रहता, मैं विदेश रहता हूँ, बाहर देश में रहता हूँ
1: जी। कहाँ रहते हैं?
3: एक मॉरिशस देश है, यहाँ से काफी दूर है, 16,000 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हम वहाँ पे रहते हैं, बेटी की शादी थी इसलिए मैं आए थे छुट्टी पे, अभी अगले महीना हम जाएंगे फिर वापस
1: जी।
3: मॉरिशस एक देश है, हिंदू राष्ट्र है वहाँ।
1: हाँ।
3: वहाँ भी प्रोग्राम चलता है, यहाँ का प्रोग्राम जैसे रक्षाबंधन हुआ, दिवाली हुआ, महाशिवरात्रि हुआ, ये सब बहुत अच्छे से मनाया जाता है।
1: तो वहाँ पर आपको सुनना होता है तो आप कैसे सुनते हैं?
3: वहाँ हम मोबाइल द्वारा सुनते हैं, कभी कभी समय मिलता है तो सुनते हैं
1: जी।
3: बाकी काम रहता है तो बहुत काम रहता है, जैसे मिठाई का काम बहुत रहता है। और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जाते हैं, अभी बीच में गए थे, फिर मोदी जी जाते हैं, योगी जी जाते हैं, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर जो बुलाते हैं इनको, इन लोग जाते हैं। वहाँ भी एक हिंदू राष्ट्र है, समझ लो छोटा हिंदू राष्ट्र वहाँ भी है मॉरिशस।
1: तो कितना अपनापन महसूस होता है जब आप मॉरिशस में बैठकर वहाँ आकाशवाणी अयोध्या सुनते हैं?
3: हाँ, तो अयोध्या सुनते हैं तो पूरा अपनापन महसूस हो, जैसे हम अपने देश में आ गए हैं
1: जी।
3: यहाँ वहाँ में बहुत फर्क नहीं पड़ता जब ये सुनते हैं, और नहीं सुनते हैं तो काम में बिजी रहते हैं तो इतना ध्यान नहीं आता, क्योंकि काम में व्यस्त रहते हैं, और जब काम में समय मिलता है तब आपका ये चैनल सुनते हैं।
1: चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपका पूरा परिवार सुनता है, आपकी हाँ। बेटी जया रावत, अजिता रावत आपकी हाँ। पत्नी, सब लोग हाँ। सुनते हैं।
3: सब पत्नी और बेटी तो रात को 10 बजे 11 बजे प्रोग्राम आपका खलास करके तभी सोती है
1: जी।
3: हर काम छोड़ के, सब काम जो करना है अपना काम फटाफट करके, और रेडियो लेके बैठ जाती है, मोबाइल लेके बैठ जाती है प्रोग्राम। छोटी बेटी जो अजिता रावत है वो प्रोग्राम बहुत ध्यान से आपकी सुनती है
1: जी। अजिता क्या कर रही है
3: इस समय? अच्छा, इस समय पढ़ाई कर रही थी, अभी घर पे हैं, बड़ी बेटी शादी हो गई है,
1: जया की शादी हुई है और जया हमसे मिलने आई हैं।
3: हाँ, जय शादी मिलने आए हैं।
1: जया को बहुत बहुत बधाई हमारे आकाशवाणी परिवार की ओर से और हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से भी। क्यों जया को आज बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है, और हमें भी बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जया के चेहरे पे जो मुस्कान है, जो चमक है यहाँ पे आकर के, उसे देख करके हमें बहुत खुशी हो रही है, और हमारा जो हौसला है ना वो और बढ़ गया है कि हम और अच्छे कार्यक्रम बनाएं। और जया, आप अपनी पसंद थोड़ा सा बताइए, उसके हिसाब से हम लोग चेंजेस करेंगे, क्योंकि अब तो आप मेरे सामने बैठ रही हैं। तो किस तरह के कार्यक्रम आप चाहती हैं कि आप सुने, क्योंकि अब तो आप घर गृहस्थी में भी आ गई हैं, तो नारी जगत कार्यक्रम सुनती है?
0: जी मैम।
1: अंगना सुनती है?
0: जी मैम।
1: किस तरह की बातें अच्छी लगती हैं उसमें?
0: ये जो ग्रामीण महिलाएं बातें करती हैं,
1: हाँ?
0: कुक पे खाना पकाना या फिर सिलाई कढ़ाई बुनाई पे जो मैडम लोग बात करती हैं, ये सब हम सुनते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। कई ढेर सारी महिलाओं को प्रेरणा मिलती है कि हम भी सिलाई सीखे, गुने धुने बुने, उसे फिर अपने घर गृहस्थी में लगे रहे। मैम अच्छा लगता है, घर में रहकर भी गृहिणी काम कर सकती है।
1: तो आप कितने साल से सुन रही हैं?
0: मैम हम तो

0: 2000 से ही सुन रहे हैं, 2001
1: 2000 से, यानी कि जब आप छोटी सी बच्ची
0: छोटी सी
1: थी।
0: किताबी से रेडियो मेरे घर में हमेशा रेडियो चलता रहता था तो हम भी सुनते थे।
1: अच्छा, रेडियो पर सबकी आवाज आप सुनती थी। आज आप यहाँ बात कर रही हैं हमसे और आपकी यही बात हम लोग अब प्रसारित करेंगे रेडियो पर, तो आपको अपनी आवाज सुन के कैसा लगेगा?
0: बहुत अच्छा लगेगा मैम।
1: यहाँ पर लोगों से आपने मुलाकात की, हमारे सारे अधिकारियों से, उद्घोषकों से, कंपेयर से, कैसा लगा आपको?
0: बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं हम,
1: बहुत खुश है ना।
0: जहाँ रेडियो पे सुनते थे आवाज, आज सबको देख रहे हैं, सर को, मैम को, यहाँ बातें कर रहे हैं, ये खुशी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत खुश है मैम।
1: तो आगे से आप आती रहेंगी?
0: बिल्कुल आएंगे, हमें समय मिलेगा तो, अगर अयोध्या आएंगे तो जरूर आएंगे यहाँ का।
1: और सुनती भी रहेंगी आकाशवाणी?
0: सुनती रहेंगी। ओके मैम,
1: कितना प्यार है आकाशवाणी अयोध्या के लिए?
0: बहुत ढेर सारा, क्या बताएं कितना प्यार है, बहुत प्यार।
1: जया ने अपने हाथों को खोल कर बताया है कि बहुत सारा प्यार है इनको, और मुझे लगता है कि शब्द नहीं मिल रहे, बस इसीलिए बहुत सारा कह रही है जया।
0: बहुत सारा प्यार है मैम।
1: जया, आकाशवाणी अयोध्या सुन रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी?
0: जो सुन रहे हैं हम कहेंगे वो सदा सुनिए और अच्छे विचारों को आप ग्रहण कीजिए और सुनते ही रहिए। जो फीडबैक लिखते हैं वो सर जो प्रस्तुत करते हैं, संजय धर द्विवेदी जी, अमरजीत सर, उसमें आप लोग लिखिए, बताइए क्या प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं, क्या नहीं अच्छे लग रहे हैं, सब बताइए आप लोग, और प्रोग्राम सुनते ही रहिए, अच्छे लग
1: जी। आकाशवाणी ने अपने 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं
0: जी,
1: तो क्या बधाई देना चाहेंगे किस तरह से आकाशवाणी को?
0: आकाशवाणी को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। गॉड आकाशवाणी अयोध्या को सदा खुश रखे, सभी एंकर्स को खुश रखे, मैडम सर को खुश रखे, और सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और फिर हम श्रोताओं के लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते रहे, जानकारियाँ अच्छी अच्छी लाएं ढेरों सारी, और हम सब भी खुश रहें मैम। बहुत बहुत बधाई मैम आकाशवाणी अयोध्या को।
1: जया, आपको क्या करना अच्छा लगता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें।
0: मैम मुझे घर के सारे काम अच्छे लगते हैं, और
1: गीत अच्छा लगता होगा ना? गाने अच्छे लगते हैं?
0: गाने बहुत अच्छे।
1: आकाशवाणी अयोध्या के लिए कोई गाना गाएंगी? हम सबके लिए इतना सारा प्यार है आपका
0: जी,
1: तो कोई गाना हम लोगों के लिए गाएंगी क्या? डेडिकेट करेंगी आज? आज तक आपने डेडिकेट किया है रेडियो पर
0: जी मैम,
1: और अपने फ्रेंड्स को और अपने घर वालों को
0: जी।
1: आज आप यहाँ बैठी हुई हैं स्टूडियो के अंदर, तो आज आप गीत सुनाएंगी तो हम लोगों को डेडिकेट करेंगी, जाहिर सी बात है।
0: ओके मैम,
1: तो कौन सा गीत सुनाएंगी हम लोगों को?
0: तेरे नाम मूवी का गाना, तुमसे मिलना बातें करना।
1: अरे
0: सबसे मिले बातें की, हमें बहुत अच्छा लगा, देख भी लिए, खुश हैं हम,
1: तो सुनाइए।

0: आपसे मिलना और बातें करना बहुत अच्छा लगा, और आपको भी बहुत अच्छा लगा ना?
1: यस मैम, बहुत खुश है हम।
0: श्रोताओं, ये थी हमारी एक बहुत ही खास, बहुत ही प्रिय श्रोता जो बचपन से हमें सुनती आ रही हैं और लगातार ये जो हमारे फोन इन कार्यक्रम होते हैं उसमें फोन भी करती हैं, जो आपकी बात कार्यक्रम है उसमें पत्र भी लिखती हैं, मैसेज भी करती हैं, और जो फरमाइशी कार्यक्रम है उसमें भी अपनी फरमाइश भेजती हैं। आज ही हम लोगों से मिलने आई आकाशवाणी अयोध्या के पूरे परिवार से अपने मम्मी पापा के साथ में, और यहाँ पर इन्होंने मंदिर के दर्शन किए, आकाशवाणी अयोध्या में हम लोगों से मुलाकात की। ये हम लोग की खुशनसीबी है कि हमारे श्रोता हमें इतना प्यार देते हैं कि हमसे मिलने के लिए आकाशवाणी अयोध्या के गेट तक यानी द्वार तक चले आते हैं। तो हमारे जो साथ में जया रावत है, उनके मम्मी पापा को यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा प्यार, और ऐसे ही प्यार आप लोग हमें देते रहिए।
2: बहनों, इसी तरह बातचीत करने के लिए अगला नंबर आपका भी हो सकता है, तो तैयार रहिए इसके लिए। और बहनों, गर्मी का मौसम है तो सत्तू का बेल है, बेल का शरबत है, सत्तू का शरबत है, नींबू का रस है, ये सब आप पीजिए तो ये बेहद फायदा करेगा। और त्वचा पर एलोवेरा लगाएं तो वो त्वचा को निखार कर रखेगा, ग्लो बढ़ाएगा। इसी के साथ प्रज्ञा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: प्रियतम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा महेश्वरी और
1: चंचल वर्मा का
0: नमस्कार और साथ में हेल्दी नमस्कार भी।
1: ये हेल्दी नमस्कार क्यों?
0: भाई देखो कितनी गर्मी है।
1: हाँ?
0: और बाहर गर्मी से तो जैसे कि ये हो रहा है कि आंख मिचोली का खेल हो रहा है, है ना इन दिनों। तो अपना सब ध्यान रखें, खूब अच्छे से ध्यान रखें, और खास तौर पे हमारी सखियां सबका तो स्वास्थ्य, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रख लेती हैं, लेकिन खुद को हम कहीं छोड़ देते हैं पीछे, तो ऐसा ना करें।
1: सबसे पहला ध्यान दीपा ने खींचा है स्वास्थ्य की तरफ।
0: जी
1: बहुत अच्छी बात है। और स्वास्थ्य से मुझे याद आया, जैसे तुमने कहा ना कि भाई महिलाएं जो है वो सबका ध्यान रखती हैं, और जब छुट्टियों में बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं, और फिर जब मेहमान आते हैं तो बच्चे भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो जो महिलाओं की जिम्मेदारी है वो बहुत बढ़ जाती है, खास तौर पर एक तो गर्मी के दिन, ऊपर से रसोई का जो काम है वो बहुत बढ़ जाता है।
0: हाय हाय, ये तो पूछो ना, सच में देखो पसीना तो बहुत आता है, ऐसा लगता है कि कब बस ये बन जाए, जो भी व्यंजन बन रहा है ये बन जाए और हम बाहर जाएं। लेकिन ये बात भी है, कहीं बच्चे नानी के घर आए होंगे, कहीं बच्चे दादी के घर आए होंगे, या कहीं बुआ किसी के घर पे आई होगी, या हम कहीं गए होंगे। ये बात तो गर्मियों में, ये मई और ये जून का महीना है, इसमें ये सब चीजें चलती हैं, और देखो फिर यादें भी तो वहीं बनती हैं।
1: बिल्कुल,
0: कितनी बातें हम संजोते हैं, कितनी हमारे जब यादों के गलियारे में जाते हैं, हम अपने दिनों में ही जाते हैं अगर चंचल।
1: हालांकि तो, समय बदल रहा है, पहले एक एक पूरे दो दो महीने डेढ़ महीने के लिए हम नानी के घर चले जाया करते थे, आजकल क्योंकि समय बदल रहा है, हम लोग भी बहुत सारी बच्चों को एक्टिविटीज के लिए डाल देते हैं, तो समय कम होता है, लेकिन फिर भी लगता है कि छुट्टियां आई हैं बच्चों की, थोड़े बदलाव के लिए क्यों ना कहीं बाहर चला जाए, तो एक हफ्ता 10 दिन का समय निकल कर तो हम छुट्टी मनाने चले ही जाते हैं किसी न किसी रिश्तेदार के घर, या तो फिर किसी जगह पर घूमने चले जाते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं किसी रिश्तेदार के घर, तो वहां जब उनका काम बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि हम लोग जो जाते हैं वहां, हमें भी थोड़ा हाथ बटाना चाहिए। इस पर हमारी सखियों के क्या अनुभव हैं, क्या उनके ऊपर भी कभी उन्हें लगता है कि काम का बोझ बहुत बढ़ गया है, तो झुंझलाहट आती है, या आए मेहमानों के साथ में वो एक यादें बनाने के लिए बहुत खुश होती हैं, उनके अपने अच्छे बुरे खट्टे मीठे सभी तरह के जो भी अनुभव हैं वो हमारे साथ साझा कर सकती हैं।
0: और साथ में ये भी बताइएगा कि आपके घर में बच्चे आए हैं या आपके घर के बच्चे कहीं गए हैं।
1: हाँ।
0: क्या चल रहा है इन दिनों घर में, खूब सारी जो चहलकदमी चल रही है, या अभी कहीं बच्चे गए हुए तो घर में शांति है, सब तरह की जो भी बातें आप चाहती हैं साझा जरूर करिएगा।
1: और हम जब अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं ना, तो उनकी बातें जब हम सुनते हैं तो उसमें बहुत सारे कहावतें, मुहावरे ये सुनने को मिलते हैं, और ये ऐसे

0: मुहावरे या कहावतें जो होती थी ना, चार शब्दों में 40 लाइनों की कोई बड़ी बात कह जाते थे, ऐसे शब्द होते हैं।
1: यानी कि 100 सुनार की और एक लोहार की वाली बात कर रही हैं आप।
0: बिल्कुल, और यही आज का मुहावरा है जिस पर हम बातचीत करने वाले
1: जी
0: हैं।
1: और महिलाओं ने उद्यम के क्षेत्र में
0: जी,
1: बिजनेस के क्षेत्र में बहुत सारा अपना नाम कमाया है पिछले कुछ वक्त में
0: जी।
1: कोरोना के बाद तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि कितनी सारी महिलाएं अब काम कर रही हैं। हम बाहर निकलते हैं ना तो दुकानों पे भी बैठी मिलती हैं, ऑफिस में भी मिल रही हैं, घर का काम तो संभाल ही रही हैं,
0: और
1: व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रही हैं।
0: घर से ही बैठकर वो अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर रही हैं, घर पर बैठकर कोई बैग बना रही है, कुछ खाना बना रही है, कुछ कहते ना घर को सजाने वाली चीजें बना रही है। तो इसी तरह से घर सजाने के साथ खुद को सजाने संवारने की बात अगर की जाए तो इस तरह के व्यवसाय से जुड़ी आज एक महिला की हम बात करेंगे। और फेसबुक पर हमारी सखियों ने देख ही लिया है, फिर भी हम नाम बता देते हैं। आज बात होगी विनीता सिंह के बारे में
1: जी,
0: जो कि एक महिला उद्यमी है, और इनके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। लेकिन पहले और विषय बता देते हैं कि किन पर चर्चा होने वाली
1: जी
0: है।
1: आज बात करने वाले हैं हम डॉक्टर निशा सिक्वेरा से, लू लगने के जो लक्षण होते हैं और बचाव उसे कैसे किया जाए और किस तरह से ध्यान रखा जाए, तो वो हमें बहुत सारी जानकारियां देंगी।
0: इसके अलावा दो खास दिन आज हैं, एक है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जिसे हम परिचारिका दिवस भी कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस भी आज है, इनकी बात भी होगी। और पेड़ पौधों को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर ये चीजें क्यों जरूरी हैं, इस पर बात होने वाली है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि बातचीत को यहीं रोकें और पहले एक गीत सुन लें।
1: चलो चलते हैं।

0: चंचल, जो गुलमोहर, ये लाल पीले फूल जब सब तरफ फैले होते हैं, कितने सुंदर लगते हैं देखने।
1: और गर्मियों में खासतौर पर गुलमोहर का पेड़ जो है वो हरा भरा होता है, और जो उसका लाल रंग के जो उसकी पत्तियां होती है ना, जब हम गुजरते हैं रास्तों से और जो रास्ते पर चादर सी बिछी हुई होती है, सच में
0: ऐसा लगता है इसके ऊपर चले नहीं, है ना,
1: और लेट जाए बस, गर्मी से राहत दे जाती है। तो भाई ये सुकून तभी नसीब होगा ना जब हम इन पेड़ों की, पौधों की सुरक्षा करेंगे, संरक्षण करेंगे।
0: सही बात है।
1: इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई का जो दिन है इसे अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में घोषित किया है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ। तो ये वैश्विक स्तर पर इस बात के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके ताकि जो भी छोटे पौधे हैं उनकी रक्षा हम करें, क्योंकि छोटे पौधे जो है ना यही आगे चलकर हमारी भूख समाप्त करने का जरिया बनते हैं, और पर्यावरण की रक्षा अगर हम करेंगे तो आर्थिक विकास को भी इससे बढ़ावा मिलता है।
0: बिल्कुल। और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम सब जानते हैं कि जब पौधे, पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो हम लेते हैं, तो लगभग सभी पेड़ों से ये काम होता है। हम जो भोजन खाते हैं उसका भी करीब 80% पेड़ पौधों से ही हमें मिलता है, लेकिन हर साल कीट और बीमारियों के कारण लगभग 40% फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिससे सभी के लिए भोजन और फिर पोषण उपलब्ध करने के प्रयासों में भी रुकावटें आने लग जाती हैं।
1: और हम देख रहे हैं कि जब एक पौधा हम रोपते हैं, जब वो बहुत छोटा होता है, तब उसे सबसे ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय उसने अपनी जड़ें नहीं पकड़ी है, वो बहुत नाजुक होता है
0: जी।
1: तो उस वक्त उसे देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है, चाहे वो हमने खेत में कोई फसल लगाई है या घर पर कोई पौधा छोटा सा रोपा है, लेकिन उस वक्त उसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है, एक छोटे बच्चे की तरह उसकी देखभाल की जरूरत होती है।
0: जब हम घर में भी लगाते हैं तो हर दिन कैसे जा करके देखते हैं, और सिर्फ एक जो लगाता है घर में गमले में पौधा छोटा सा, पूरा घर फिर आके पूछता है ये ठीक से तो है ना, बढ़िया है ना, पानी डाला, सब पूछते हैं एक दूसरे से, और कितना बिल्कुल एकदम परिवार का एक हिस्सा बन चुका होता है वो गमला या वो पौधा। तो सब सोचिए, जब सब तरफ से लगे हो, या आपके बागीचे में लगे हो, या आप कहीं बाहर भी कहीं पे किसी ऐसी जगह पर जो कोई सार्वजनिक जगह है जहां पे आप लगा सकते हो, तो जरूर लगाना चाहिए पौधों को, पेड़ के।
1: पता है जब हम गर्मी में कहीं जाते हैं, कहीं बस स्टॉप पर खड़े हैं, किसी बस का या रेल का इंतज़ार कर रहे हैं, और जब वहाँ हमें कोई छांव नहीं मिलती, तो कई बार यहाँ वहाँ जाकर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कहीं कोई पेड़ हो तो जिसके नीचे खड़े होकर थोड़ा सुस्ता लिया जाए, कहीं छांव मिल जाए हमें। और कई बार हम अपने वाहन से भी अगर जा रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा छांव में सुस्ता लें।
0: सही बात है। और कभी कभी तो पता है कैसा होता है कि वो रस्ते की निशानी बन जाता है।
1: हाँ।
0: भाई तुम आगे वो रस्ते तक जाओगे ना, बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, बस वहां से उल्टा दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना। हाँ। है ना, कई बार ऐसा होता है।
1: ये निशानियां बनाने के लिए या उस वो छांव लेने के लिए उन पेड़ों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है दीपा, और इसीलिए ये दिन हम मना रहे हैं ताकि जो छोटे पौधे हैं उनकी सुरक्षा हो सके, और पौधों की सुरक्षा उनके लिए सीमा नियंत्रण और स्वच्छता की तरह होती है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो खतरनाक कीट हैं और उनमें लगने वाली जो भी बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए उनकी जांच करना समय समय पर और उनकी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। ये सुरक्षा कवच का काम करता है, जिनसे हमें भोजन मिलता है और किसानों का रोजगार भी सुरक्षित रहता है। कई बार हम देखते हैं खेतों में बहुत सारी टिड्डियां घुस जाती हैं जो पूरी पूरी फसल को खा जाती
0: हैं। बिल्कुल, मवेशी घुस जाते हैं तो वो बर्बाद कर देते हैं, बिल्कुल, है ना। और उस वक्त आप सोचो वो जो किसान है जिसने वो लगाया है पौधा, उसके दिल पर क्या बीतती है, और उनको आर्थिक भी बहुत नुकसान हो जाता है।
1: अरे लेकिन इसके अलावा हमारे पर्यावरण को, प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है। ये जो हम देख रहे हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है
0: जी,
1: जब हम गाड़ियां, वाहन बहुत सारे बढ़ रहे हैं, लेकिन वाहनों से जो निकलने वाला कार्बन है उसे पौधे क्योंकि अपनी तरफ खींच लेते हैं और हमें एकदम फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं,
0: सही के
1: ताजा सांस लेने के लिए वो जो सुविधाएं हैं वो कम हो रही हैं। हम मशीनों पर धीरे धीरे निर्भर होते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम पेड़ लगाएंगे और उनको संरक्षण भी देंगे तो ये जो समस्या है इनसे काफी हद तक हम निजात पा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखो एक वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, अंतराल के बाद आते हैं और फिर इसी बारे में और बात करेंगे।

बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे हम एक बार फिल्म से, ये गीत हमने लिया था और पौधों और पत्तों की इस गीत में बात हो रही थी। ये पेड़ जो है ये हमें लू से बचाव में बहुत सहायक होते हैं और इसी विषय पर डॉक्टर निशा सिक्वेरा से जो बातचीत हमने की है अब वो सुनते हैं।

नमस्कार, सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर निशा सिक्वेरा। आज आप सभी के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं एक चिकित्सा विशेषज्ञ हूं और मेरा उद्देश्य यह है कि लोगों को स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने में सहायता करना। आज मैं हीट स्ट्रोक या लू के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी। गर्मियों के दिनों में अपने देश के कई शहरों में तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। इन दिनों दोपहर के समय बाहर बहुत तेज गर्म हवाएं चलती है। इन गर्म हवाओं को ही लू यानी हीट स्ट्रोक कहते हैं। मजबूत इम्यूनिटी वाले लोग इन गर्म हवाओं को सहन कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इन हवाओं को सहन नहीं कर पाते हैं और इनके संपर्क में आते ही बीमार पड़ जाते हैं। अपने देश में हर साल काफ़ी बड़ी तादाद में लोग लू की चपेट में आ जाते हैं। लू लगने के कारण ये गर्म हवाएं जब अपने शरीर के संपर्क में आती हैं तो शरीर का तापमान बढ़ा देती हैं और इस वजह से कई समस्याएं होने लगती है। ज़्यादा देर तक धूप में काम करना और शरीर में पानी की कमी होना लू लगने के प्रमुख कारण।

0: हैं, बच्चे और बूढ़े लोग लू की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। अधिकांश मामलों में लोगों को ये जल्दी पता ही नहीं चल पाता है कि उन्हें लू लग गई है। हालांकि इसका स्टीक अंदाज लू के लक्षणों को देखकर लगाया जा सकता है, इसीलिए हर किसी को लू के लक्षणों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। लू लगने के लक्षण: लू लगने पर सिर में तेज दर्द होना, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होने लगती हैं। शुरुआत में इन लक्षणों की तीव्रता काफी कम होती है, लेकिन समय के साथ साथ ये बढ़ते जाते हैं। लू लगने पर अचानक से तेज बुखार होने लगता है और शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। शरीर में गर्मी बढ़ने के बावजूद लू लगने के दौरान शरीर से पसीना नहीं निकलता है। लू लगने पर उल्टी आना और शरीर में तेज दर्द होना आम बात है। उल्टी होने के कारण शरीर में सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले या शारीरिक रूप से कमजोर लोग लू लगने से बेहोश भी हो जाते हैं। लू लगने पर क्या करें? लू लगने पर मरीज को तुरंत छायादार जगह पर या ठंडी जगह पर लिटाएं। शरीर को ठंडा रखने के लिए शरीर पर ठंडे पानी का पट्टिया लगाएं। घर के खिड़की दरवाजे खोल दें और कूलर या एसी चालू कर दें। अगर मरीज लू लगने से बेहोश हो गए हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। लू से बचने के उपाय: ये सच है कि हर साल लू से कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि अगर गर्मी के मौसम में आप ठीक ढंग से अपना ख्याल रखें और कुछ ज़रूरी सावधानियां बरतें तो लू के प्रकोप से बच सकते हैं। आइए लू से बचने के कुछ प्रमुख उपाय मैं बता देती हूँ। गर्मियों के दिनों में हल्का भोजन करें। गर्मियों के दिनों में कभी भी खाली पेट पर घर से बाहर ना निकले। ज़्यादा देर तक धूप में रहना हो तो छाते का इस्तेमाल करें। अधिक मात्रा में पानी पिए। बाहर जाते समय पानी की बोतल साथ में लेकर चलें। हाइड्रेटेड रहें। प्यास ना लगने पर भी पानी, नारियल पानी और जूस पीते रहें। बाहर निकलने के समय पर टोपी, स्कार्फ या छाते का इस्तेमाल, जो मैंने बता दिया अभी, उस इस्तेमाल करें। हल्के और जल्दी पचने वाले भोजन करें। प्याज और दही का सेवन बढ़ाएं। आज हीट स्ट्रोक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आप इस गर्मी में खुद को और अपने परिवार को बचाएं, अच्छे से ध्यान रखें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।
1: अभी हमने सुना डॉक्टर निशा सिक्वेरा से लू से बचने के कई तरीके। तो चलिए अब सुनते हैं गीत।

0: इस गीत के बाद फिर से हम अपनी बातचीत लेकर हाजिर हैं और हमने शुरुआत में कहा था कि दो खास दिवस आज हैं, तो 12 मई का दिन है, आज है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस, और ये स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है एक जो कि हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, और ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के उपलक्ष में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर इस पेशे के प्रभाव को मान्यता देना है, और ये जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें पहुंची है।
1: चंचल, 1953 में अमेरिकी स्वास्थ्य शिक्षा और कल्याण विभाग की जो प्रतिनिधि थी डोरोथी सदरलैंड, उन्होंने नर्स को सम्मानित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का प्रस्ताव रखा। 1965 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद यानी कि ICN इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। हालांकि उस समय ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था। फिर 1974 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के साथ 12 मई को इस दिन यानी आज के दिन इस दिवस को मनाने के रूप में चुना गया, जिससे उनकी विरासत और वैश्विक स्तर पर नर्सिंग पेशे का महत्व और भी पुख्ता हो जाता है।
0: भाई, नर्सों का महत्व ये खास तौर पर वो जरूर समझते होंगे जब किसी के घर में कुछ ऐसी अवस्था आई हो, जब उनके परिवारजन अस्पताल में भर्ती रहे होंगे, और जब हमें समय नहीं होता कि हम सारा दिन या रात भर अस्पताल में रुक सकें, तो यही परिचारिकाएं होती हैं जो हमारे परिवारजन का और उस रोगी का बड़ी शिद्दत से ध्यान रखती हैं। और इसी बात को लेते हुए हमारे जो श्रोता साथी हैं वो लिख रहे हैं कि 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के अवसर पर नर्सों के निस्वार्थ समर्पण, उनकी कड़ी मेहनत, स्वास्थ्य सेवा में उनके अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए एक समर्पित दिन है।
1: जी, और एक और संदेश है, कहता है कि ये नर्स चिकित्सा संबंधी एक विषय है जो मरीज के सेवा भाव के दायित्व का निर्वहन करते हैं, और आज के दिन ही हर साल की तरह इस साल भी वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। ये दिन नर्सों के हित, परख, शिक्षा और समर्पण को ही समर्पित है।
0: एक अन्य संदेश में यही बात कही गई है कि इस दिन नर्सों को सम्मान देने के लिए दिन मनाया जाता है, और उनका जो अग्रणी योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और अन्य संदेश है जिसमें लिखा गया है कि नर्स के प्रति जो उनका महत्व है, उनकी सेवा का जो भाव है, इस विषय को लेकर जागरूकता के लिए ये दिन मनाया जा रहा है। अगर नर्स ना हो तो जो लोग हॉस्पिटल में अकेले रहते हैं बीमारी में, उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए नर्सों का जो योगदान है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है।
1: जी बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वक्त हो चला है एक संदेश का, एक अंतराल का।

0: अंतराल के बाद आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर आ चुके हैं।
1: बिल्कुल, मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा
0: और मैं दीपा महेश्वरी
1: और अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: चलिए।

0: वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली

0: अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए, स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं. जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो. सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए. तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए. और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए. उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े. डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है. तो इट्स बेसिकली हीट वेव है, एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में. हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है.
1: भाई देखो चंचल, मौसम कोई भी हो, सुंदरता पे तो किसी भी चीज का कोई जोर नहीं चलता है कि
2: बिल्कुल. और भी हर महिला को सजने संवरने का थोड़ा सा शौक तो होता ही है. वैसे आम दिनों में वो ना भी सजे, लेकिन कुछ खास मौका आता है तो थोड़ा सा श्रृंगार तो बनता भी है.
1: बिल्कुल.
2: और आज जिस सफल महिला की हम बात कर रहे हैं, जो एक महिला उद्यमी हैं, वो हैं विनीता सिंह. और इन्होंने शुगर कॉस्मेटिक की संस्थापक हैं, उनकी CEO हैं, और देश विदेश की महत्वाकांक्षी उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत है. हालांकि उनकी असाधारण कहानी, मेकअप की जो जीवंत दुनिया है और ये जो फलता फूलता व्यवसाय है, इसमें तो इनकी प्रसिद्धि बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी. लेकिन अपने स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही जो अपनी असाधारण प्रतिभा है उसका प्रदर्शन इन्होंने शुरू कर दिया था.
1: जी, और उनकी इसी असाधारण शैक्षणिक उपलब्धि ने उन्हें प्रतिष्ठित IIT मद्रास में प्रवेश दिलवाया, जहां उन्होंने बैडमिंटन के प्रति अपना जुनून दिखाया और पहचान एक बनाई. फिर कई टूर्नामेंट में वो जाती थी और वहां पे जीत भी उन्होंने हासिल की. बाद में IIM अहमदाबाद में उन्होंने शिक्षा तो की ही, दौड़ में भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया.
2: क्या बात.
1: और अपने प्रयासों के रूप में कई सारे उन्होंने कठिन मैराथनों को भी पूरा किया था. तो ये जो उनके अंदर प्रतिस्पर्धा वाली जो भावना थी और सीमाओं को पार करने की जो उनकी इच्छा थी, उनके आने वाले दिनों के उद्यमिता गुणों को स्पष्ट दिखाई दे रहा था सभी को कि ये ऐसे तो सीधे सीधे नहीं चलेगी, कुछ तो जरूर करेगी.
2: बिल्कुल, वो सीधे दौड़ लगाएगी और जीत भी हासिल करेगी. और निवेश बैंकिंग में एक बड़े पैकेज के साथ उन्हें एक प्रस्ताव मिला. लेकिन बिजनेस का चुनौती भरा माहौल लगातार उन्हें पुकार रहा था. और उनका जो पहला बिजनेस था, ये एक पृष्ठभूमि जांच पर आधारित उद्यम था. लेकिन ये जब उन्होंने किया तो उनको लगा कि कुछ खास सफलता नहीं मिली उन्हें.
1: जी, लेकिन यहाँ उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने फिर एक ब्यूटी सब्सक्रिप्शन सेवा की स्थापना की, जिसे कुछ हद तक तो सफलता मिली, लेकिन ये भी जो उनका असली जो जुनून था वहां से कहीं कुछ मेल नहीं खा रहा था. उनको ऐसा लग रहा था कहीं तो कुछ अभी बाकी है.
2: तो ये जो शुरुआत में असफलताएं उनको मिल रही थी, लेकिन ये सब चीजें थी ना उनके लिए एक सबक की जैसे रही, जिससे जो भी बाजार किस तरह का होता है, अपनी क्षमताएं किस तरह से उनको बाहर निकालनी चाहिए, ये चीजें जानने में उन्हें बड़ी मदद मिली.
1: जी, और बहुत सारे शोध के बाद विनीता ने ये कि जो भारतीय सौंदर्य बाजार है, क्योंकि हम इंडियंस में अलग अलग त्वचा रंग होते हैं. हाँ. और अलग अलग टाइप्स होते हैं स्किन के, त्वचा के, तो उसके पसंद के अनुरूप उत्पादों की यहाँ कमी है, जो कि किफायती भी हो. और फिर बस क्या था, 2015 में उन्होंने अपने अनुभव और एक दृढ़ दृष्टिकोण के साथ, विनीता ने अपने पति कौशिक मुखर्जी के साथ मिलकर एक कॉस्मेटिक ब्रांड की शुरुआत की.
2: और ये जो उन्होंने अपना ब्रांड बनाया, काफी किफायती दामों पर और बहुत आकर्षक और उच्च गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधन वो लेकर आई, बाजार में उन्होंने पेश किए. और ये जो ब्रांड था, ये भारतीय युवा महिलाओं के लिए उनमें बिल्कुल लोकप्रिय हो गया और डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण ने तेजी से इसको अपना ग्राहक बना लिया.
1: जी, कंपनी का एक उत्पाद है चंचल, चटक और अलग अलग रंगों का काजल.
2: हाँ.
1: ये बहुत प्रसिद्ध हुआ लड़कियों में खास तौर पे, और देखते देखते शुगर कंपनी की कई उत्पाद ई प्लेटफॉर्म पर प्रसिद्ध होने लगी।
2: और वो ऐसा मानती है कि हर महिला को सुंदर दिखने का पूरा अधिकार है, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार तक सारे सौंदर्य प्रसाधन पहुंच सकने के लिए उनका जो बजट है ना, कई बार वो उनको अलाउ नहीं करता। तो कम बजट में किस तरह से उनको ये सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध करवाए जाए, उनका ब्रांड इसी चीज पर काम कर रहा है।
1: और विनीता ने सफल होने के साथ साथ अपनी महिला सशक्तिकरण वाली प्रतिबद्धता का भी ध्यान

0: रखा है। कंपनी में लगभग 75% कर्मचारी महिलाएं ही हैं और उनके नेतृत्व में शुगर कंपनी बदलते रुझान और उपभोक्ताओं की पसंद के अनुरूप लगातार अलग अलग नवाचार करती चली आ रही है।
1: और वनिता ने अपने करियर को एक नया मोड़ तब दिया जब उन्होंने एक भारतीय रियलिटी शो में एक निवेशक और जज के रूप में अपनी भूमिका निभाई और इस तरह से कहते ना कि वो आगे बढ़ती रही और अपनी मंजिलों को हासिल करती रही और हमारी शुभकामना है कि वो और आगे बढ़ती रहे
0: जी। और वक्त हो चला एक गीत का
1: जी।

0: बहुत सुंदर गीत सुनवाया दीपा तुमने, और मुझे लगता है हमारे जो सुनने वाले हैं ना उन्हें भी ये गाना पसंद आया होगा। और अब हम बात करें कुछ मुहावरों की, कुछ कहावतों की, और हमारे जो सुनने वाले हैं भाई वो भी इस पर बहुत सारे कमेंट्स हमें लिखकर भेज रहे हैं। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुहावरे हमारे दैनिक जीवन में विनोद भी कराते हैं और मोटिवेशन भी हमें देते हैं। आम बोलचाल की कुछ बातों के बीच मुहावरे जोड़ देने से उस बातचीत में ताजगी आ जाती है, दम आ जाता है। तमाम मुहावरों में 100 सुनार की 1 लोहार की ये हम अक्सर सुनते हैं। जो किसी ना किसी काम में बहुत सारा प्रयास करते असफल सा लगने लगता है, लेकिन धमाके से उस काम के पूरा होने पर इस बात को अक्सर कहा जाता है।
1: बिल्कुल। एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि ये मुहावरा सुनार के गहने बनाने की शैली और हल्की हथौड़ी के सामने लोहार के खेत या अन्य बड़े औजार बनाने भारी वाले भारी भरकम हथौड़े के उपयोग की तुलना की गई है। मतलब कमजोर या छोटे प्रयासों के मुकाबले सटीक और करारा प्रहार अधिक प्रभावशाली होता है और कारगर साबित होता है। अगर कोई काम नहीं करने से

0: करने के 100 बहाने बना ले, लेकिन जब बॉस सामने आते हैं तब सच सामने आ ही जाता है।
1: क्या बात है, बिल्कुल मिलता जुलता एक और संदेश है। 100 सुनार की एक लोहार की का मतलब होता है कमजोर या छोटे प्रयासों की लंबी श्रृंखला की तुलना में एक शक्तिशाली सटीक प्रयास अधिक प्रभावशाली होता है। ये कहावत गुणवत्ता और मजबूती की मात्रा को बेहतरी से बताती है।
0: जी, और 100 सुनार की एक लोहार की ये लोकोक्ति मुहावरे हमारे जीवन से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम अक्सर ही बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया करते हैं। उन्हीं में से एक ये मुहावरा अपने प्रयासों के तौर तरीकों के बारे में बताता है कि सुनार आभूषण बनाने के 100 प्रयासों से अच्छा लोहार का एक लेकिन अति उत्तम महत्वपूर्ण प्रयास सफल हो जाता है। उसके एक सटीक प्रयास से सामग्री के टुकड़े हो जाया करते हैं। इस दृष्टिकोण से यह लोकोक्ति इस अर्थ में हमें सटीक प्रहार के तौर तरीकों पर एक सीख देती है।
1: क्या बात है, इसी तरह से एक अन्य संदेश है कि ये मुहावरा हमें बताता है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति या कार्य 100 साधारण लोगों या कार्यों से अधिक श्रेष्ठ होता है। जीवन में हमें अपनी ऊर्जा को बखेरने की बजाय उसे केंद्रित करके बड़ा परिणाम लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बारे में कुछ कहानियां भी प्रचलित हैं और एक प्रसंग इस तरह से भी कुछ आता है कि महाभारत के समय जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध चल रहा था तो सारे कौरव मिलकर पांडवों को पछाड़ रहे थे और तब भीम ने अपनी गदा उठाई और एक ही साथ बहुत सारे कौरव यानी कि जो 100 कौरव थे उनको धाराशायी कर दिया और 100 कौरवों के बराबर शक्ति भीम के पास अकेले ही थी। इसलिए उस समय से इस मुहावरे को प्रयोग में लाया जाने लगा, कहा जाने लगा कि 100 सुनार की एक लोहार की। इसी तरह से कुछ कथाएं भी इसको लेकर प्रचलित हैं।
0: तो गीत सुने अभी
1: जी।

0: दीपा, याद है गर्मियों की छुट्टियों के दिन?
1: बिल्कुल याद है। और देखो ना, नानी के घर जाते थे, खूब सारे आम खाते थे, और शाम को फिर हमारे नाना जी लेके जाते थे हमें गार्डन।
0: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। मुझे याद है जब हम गर्मियों की छुट्टियों में ददिहाल जाया करते थे। हमारे पिताजी के चार भाई थे, जो कि सब उस वक्त वहाँ जमा हो जाया करते थे, और कुल मिलाकर हम 15 बच्चे थे, जो कि अलग ही मज़ा आता था। हमारी चाचियाँ और मम्मी सब मिलकर रसोई संभालते थे। हम सब बच्चे दादी के ही साथ हमारा आना जाना होता था। हमारा बगीचा भी बहुत बड़ा है, जिसमें दादाजी ने बहुत बड़े बड़े फलदार पेड़ लगा रखे हैं। और अब तो ये सिर्फ यादें ही रह गई हैं, क्योंकि सब भाई बहन बड़े हो गए और सब अपने अपने काम में लग गए हैं। तो सच बात है, ये जो बचपन के दिन होते हैं ना, ये यादें बनकर रह जाते हैं। और जो नानी दादी के घर जाने के, बुआ मौसी के घर जाने के, और वहाँ इकट्ठे होकर खूब हंगामा करने के, मस्ती करने के, यादें बनाने के जो दिन थे ना, वो अब हमारी खूबसूरत यादों में है, सिर्फ एल्बम्स में वो दिन हमारे पास रह गए हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही चंचल। देखो, एक संदेश ये कहता है कि गर्मियों में आना जाना तो लगा ही रहता है बच्चों और परिवार का, कोई नानी के घर, कोई दादी के घर। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही कही आप लोगों ने कि जो मेहमान होते हैं उनको भी हाथ बटाना चाहिए। इतनी गर्मी होती है, अगर वो लोग हाथ नहीं बटाएंगे तो एक बड़े काम का बोझ आ जाएगा। तो बिल्कुल सही कहा आप, अगर जा रहे हैं किसी के घर तो हाथ जरूर बटाइए।
0: इसके अलावा बच्चों को भी थोड़ा सा हम व्यस्त रख सकते हैं, उन्हें बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, क्योंकि दोपहर में वो यहाँ वहाँ ना भटके, क्योंकि धूप बहुत तेज होती है, गर्मी बहुत तेज होती है। और जब हम बच्चों को कहते हैं ना कि दोपहर में थोड़ा सो जाओ, तो वो सोना भी पसंद नहीं करते। तो उन्हें कोई एक्टिविटी करने के लिए आप दे सकते हैं, कुछ भी उन्हें मतलब कशीदाकारी करने को दे दीजिए, उनको सिलाई कढ़ाई सिखा सकते हैं उस समय
1: वो भी। और अगर वो बैठना नहीं चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं चंचल कि आप, वो कहते हैं ना इंडोर ट्रेजर हंट, हाँ। जब उनको ऐसे बड़े बड़े से नाम बता दो ना, तो बच्चे एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ भी एक चीज को आप छुपा दीजिए कहीं, हाँ। और फिर उनको बोलना है कि अगले आधे घंटे में हमें ये चीज ढूंढ कर देनी है, तो सच में उन्हें इतना मजा आता है, सारे के सारे लग जाते हैं। हाँ, छुपाना ऐसी जगह है जहाँ उन्हें तुरंत उनके हाथ में ना वो आए।
0: और घर में अगर कोई ऐसा हो जिसे किससे कहानियां सुनाना बड़े मजे से आता हो, तो बच्चे उसे घेरे बैठे रहते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे एक मामा थे, जो कोई मतलब पौराणिक कहानियां नहीं होती थी, बस वो मनगढ़ंत वो कहानी बनाए सुनाए जाते थे हमें। और वो कहानियां उनकी चार चार दिन, पांच पांच दिन खत्म ही नहीं होती थी। हम इंतजार करते थे कि ये इसके आगे क्या हुआ होगा, और वो मन से कुछ भी जोड़कर वो कहानी बनाकर सुनाते थे। तो इस तरह से बच्चों को आप व्यस्त रख सकते हैं। और या फिर जब महिलाएं किचन में काम कर रही होती हैं, तो कोई छोटे मोटे काम बच्चों को दीजिए, तो उन्हें घर में काम में हाथ कैसे बटाया जाता है इसकी आदत भी होगी।
1: वो जो पुरानी छुरी जो होती है ना घर में, पुरानी छुरी जिसमें ज्यादा तेज धार नहीं होती, वो हम उनको दे सकते हैं। उनको भिंडी काटने के लिए दीजिए, आलू काटने के लिए दीजिए, बहुत मजा आता है उनको। वो आड़े टेढ़े तिरछे तरीके से काटते हैं, लेकिन जब हम उनको बना के उनको बताते हैं ना, देखो ये आपकी कटी हुई सब्जी है, तो बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, हमने काटी, वो सब बताते हैं, ये वाले देखो, ये वाला शेप का मेरा है, ये उसका है, इस तरह से बड़े खेल खेलते हैं वो लोग।
0: आप छत का छिड़काव करने को उन्हें कहिए, आंगन में छिड़काव करने कहिए, कूलर में पानी भरने को कहिए, तो छोटे मोटे काम बता सकते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ हरियाणा में 1 जून से बच्चों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, और इन छुट्टियों का हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि हमें जाना होता है अपने नाना और मामा के घर पर।
1: हाँ बिल्कुल। और एक और संदेश कह रहा है कि भाई बच्चों की छुट्टियों में तो सच में हम सब माताओं पर तो बड़े भारी पड़ जाते हैं ये दिन। और अभी हमारे बच्चों की छुट्टियां शुरू नहीं हुई है, मई के अंत में होने वाली है। रसोई और गर्मी का, दोनों का जो है ये जुड़ाव बिल्कुल ऐसा है, उससे तो हम अलग कर ही नहीं सकते। और हम सभी महिलाओं को इसकी कुछ ज्यादा ही हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये लगता है कि गर्मी से हमें फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप बेशक बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बच्चों को बना के खिलाती होंगी। और ऐसे ही अगर सब महिलाएं सोचने लगें तो फिर क्या ही बात है। तो देखो, उनके बच्चों को जो आप बात कर रही थी ना कि बच्चों से आप कुछ उनसे खाने की तैयारी करा सकते, किचन गार्डन भी लगवा सकते हैं।
0: हाँ,
1: उनके हाथ की उगी हुई जब चीजें होंगी ना, तो वो भी बड़े चाव से देखते हैं कि कैसे बड़ा हो रहा है।
0: इसी तरह से वो पौधों का संरक्षण करना भी सीख जाएंगे। जब वो खुद पौधा लगाएंगे तो उसे किस तरह से बचाना है, वो बढ़ते हुए हर दिन देखेंगे उसको, तो उन्हें भी एक अलग आनंद का अनुभव होगा। और गानों में भी कहीं ना कहीं आनंद होता है, तो सुन ले गाना।
1: चलिए।

0: कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा और बस इतना ही समय है कि सखियों से ले लें हम इजाजत।
1: आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
0: चंचल वर्मा का
1: नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।

0: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं, मैं उनका परिचय कराती हूं, लेकिन उनके बारे में मैं ये कहूंगी कि वो फिल्म लाइन में स्क्रीन पर एक बहुत ही बुरे इंसान है, बहुत बहुत बुरे इंसान है। लेकिन देखिए कितनी खुशनुमा हंसी है इनकी। मेरे सामने बैठे हैं, बहुत ही उम्दा इंसान है और उनका नाम है सदाशिव अमरापुरकर। सदाशिव जी, मैं खुद अपनी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से और विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की तरफ से आपका यहाँ स्टूडियो में स्वागत करती हूँ और उन सब की तरफ से आपको कहती हूँ कि नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार।
0: और अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
1: अच्छा।
0: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
1: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
0: तो आप अपने बचपन की ही याद ताजा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
1: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर
0: जी।
1: ना वो शहर है ना वो देहात था, तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेलकूद में गया, स्कूल में जाते थे, लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारी पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे, लेकिन शिक्षा जरूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था, तो 40-50% हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में,
0: शरारतों में,
1: हर चीज में गुजारते थे और हर मौसम का मजा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियां खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे,
0: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था।
1: सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, तो छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहां लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई थी। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ, और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा ये इंसान, ये आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे, तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे, तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी, उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ, तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं। और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गाँव ने मेरे ऊपर किया है।
0: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इधर जाते रहे हैं?
1: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है, लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे

0: गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांदबीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है, और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांदबीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है
1: जी।
0: और क्रिएटिव है
1: जी।
0: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
1: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
0: जी,
1: है ना सदाशिव जी। इसी बात पे आपकी पसंद का कोई एक गीत हम क्यों ना सुन लें।
0: जी जी जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
1: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये। हाँ
0: और उसके बोल है मेरे दिल में है एक बात।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई, और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो हमारा वर्ग है उनको लेकर, कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।

0: कॉम्पिटिशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
1: जी।
0: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
1: उस समय।
0: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
1: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
0: नहीं। नाटक करता रहा
1: जी,
0: धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आईं, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
1: जी।
0: हम मतलब हवा में दौड़ते थे
1: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे।
0: जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-20 25-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
1: जी।
0: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी
1: जी।
0: प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग
1: थे। तो वो पलट के नहीं देखती थी?
0: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया
1: जी।
0: हमारे अंदर हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो
1: आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
0: जी।

0: लेकिन आप आगे ये बताइए ना कि थिएटर की जो बात है वो वहां से आपकी शुरुआत हो गई
1: जी।
0: और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एम ए वगैरह नहीं करना है? कौन सा विषय था आपका?
1: नहीं, मैं बी ए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
0: जी।
1: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो, मैं मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूँ तुम्हें? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो, ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो, ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए और थिएटर करने लगा। तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली।
0: वाह।
1: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
0: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
1: जी। और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने, क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
0: आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ,

0: तो कैसा लगा था आपको?
1: नहीं नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे
0: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
1: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनाया सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी नया होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड, और वो हम सुनाते थे,
0: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे जी, होता है हेलो फरमाइश।
1: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाएं किसी होटल में चाय पीने जाएं, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो ले
0: लेकिन
1: लो।
0: बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है इज्जत मिलती है तो। लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
1: जी, लेकिन छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
0: पुरानी
1: बहुत पुरानी, गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
0: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत बहुत अच्छा लगा?
1: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
0: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा
1: जी।
0: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
1: जी।

0: मिला।
1: आप पूना पहुंच गए, पूना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, लेकिन पूना से बंबई की तरफ कब आए और कैसे आना हुआ था?
0: नहीं, पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कंपटीशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्ने भी काई चेत, वो नाटक उसमें से, उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को। और नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक जो परीक्षक थे उनका नाम था भिकुपई आंगले, उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, आज भी है
1: जी,
0: उन्होंने कहा कि आप आइए। और मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं, सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूंगा लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपके एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिकुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी उनका नाम शांताबाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है।
1: उन्होंने मेरे अनंत जो कर रहे
0: जी,
1: हैं
0: जी, जी, उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं, मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, बड़ा नर्वस हुआ। फिर दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया, बोले
1: उसी रोल के लिए
0: नहीं,
1: हाँ।
0: हमारे पास एक नाटक है, जयवंत दलवी ने लिखा है, नाम है बैरिस्टर,
1: वाह,
0: विजय मेहता जी डायरेक्ट करने वाली है, आप अच्छे एक्टर हो तो चलो हम विजय जी के पास जाते हैं। मुझे उनके घर ले गए लेकिन वो मिली नहीं, फिर दूसरे दिन हमको गोवा हिंदू एसोसिएशन के ऑफिस में मिली और उन्होंने मुझे कह दिया कि देखो सदाशिव, मैंने इस रोल के लिए पहले ही चुन लिया है एक्टर को, और विक्रम गोखले वो काम करने वाला है, तो इस बार हम कुछ नहीं कर सकते। हम फिर मैं वापस आया और दो अच्छे नाटक मेरे हाथ से चले गए, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी, दिल में एक आवाज बज रही थी, आंखों में एक सपना था कि कुछ कोई बात नहीं और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फोन मुझे आया, दूरवांची जुड़ी ये एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आइए
1: जी।
0: मैं तीसरी बार बम्बई आया, तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया था।
1: अरे वाह।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में मेहमान सितारे हैं जाने माने फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने,
0: और नीचे छोटी छोटी दुकानें थी और वहां गाने बज रहे थे।

0: उसके बाद मैं ऊपर गया, दारवकर जी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बिठाया, वो बातें करने लगे। अब वो उनसे कहने लगे कि मैंने जो आपको कहा था वो नगर में रहता है वो आदमी सदाशिव, उनको लेकर आओ ना, आप किसी इन जवान लड़के को लाएंगे तो कैसा होगा, वो तो प्रोफेसर का रोल है। तो उन्होंने कहा कि सर ये वही है सदाशिव अमरा प्रकर जी। तो वो दो मिनट तक मुझे घूरते रहे, बोले आपने वो मास्टर का रोल किया था उस नाटक में और आप तो बूढ़े लग रहे थे उसमें और आप तो इतने जवान हैं, ये कैसे हुआ। तो मैंने मन में कहा ये दाद है या क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं वही हूँ। अरे बाप रे, फिर उन्होंने जो मेरी तारीफ की है बहुत तारीफ की। फिर मुझे कहा कि आप ही इस रोल के लिए फिट हैं, बराबर हैं, आप ये स्क्रिप्ट, उस वक्त वो परदेशी थे उनका ही वो स्क्रिप्ट था, अभी मुझे उस नाटक का नाम याद नहीं आ रहा है, हाँ मैंने मुझे याद आया सत्यम शिवम सुंदरम
1: जी।
0: और मैं स्क्रिप्ट लेकर घर आया, गावाया, याद करने लगा, प्रोफेसर के डायलॉग याद करने लगा। एक महीने के बाद मुहूर्त पे मैं वापस गया तो दावेकर जी मुझे देखकर कहने लगे आइए आइए बैठिए, लेकिन इस वक्त वो मेरे से बात करने से झिझक रहे थे। लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि देखो भाई हमने आपको वो रोल तो दिया था, लेकिन अभी भी एक सीनियर प्रोफेसर कमलाकर सोनटक के जो औरंगाबाद से वो जो है उनकी एक्टिंग की स्कूल है वहाँ से इस्तीफा देकर आए हैं और

0: वो अब ये रोल करेंगे।
1: अब ये तीसरी बात जब मेरे साथ हादसा हुआ तो मैंने कहा देखो भाई, उसके पहले घर में मेरी हमेशा पिताजी से झगड़े चलते थे, बोलते थे ये नाटक नाटक छोड़ दे, ये अपना लाइफ नहीं है। और मैं कहता था नहीं, मुझे नाटक ही करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ।
2: तो आप करते भी नहीं थे उस समय कुछ?
1: कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि नाटक के अलावा मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इस बार जब फाइनली मुझे पिताजी ने बुलाया तो पिताजी को मैं मिलने गया तो पिताजी ने कहा अगर तेरे जीवन में यही ट्रेजेडी लिखी है तो जाओ करो। और मैं आया था, बैग भरकर आया था, रिहर्सल करने आया था, दोबारा मैं नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? बोले क्या करे, उनका नाम बड़ा है, ये है वो है, उनको लेते हैं। मैंने कहा नहीं, इसमें कोई और रोल हो तो मुझे दे दो। और मैं उसमें एक डबल रोल करता था, एक गुंडे का रोल करता था एक, और एक लड़के का रोल करता था। वो दो रोल मैंने, और इस तरह मेरी व्यावसायिक नाटक में पहली बार एंट्री हुई
2: जी।
1: उसके बाद मैंने केंकरे जी के साथ काम किया और मेरे हाथ में एक नाटक था, मेरे दोस्त ने लिखा हुआ यात्रिक, वो यात्रिक नाटक मैं छबिलदास में करना चाहता था और इसी वजह से मेरी INT इंडियन नेशनल थिएटर में पहचान हुई और उनकी तरफ से मैंने पहली बार डायरेक्शन की यात्रिक की
2: जी।
1: उसके बाद मैंने छिन्न नाटक किया जिसमें स्मिता पाटिल ने काम किया था, आशा लता ने काम किया था, और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया। तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए हैं, हैंड्सअप नाटक किया, और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्ध सत्य
2: जी।
1: और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई, वो मेरा हैंड्सअप नाटक देखने आए और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, 3 दिन का काम है, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी,
2: अर्ध सत्य का रामा शेट्टी।
1: और मैं नर्वस हो गया, मैंने कहा क्या यार, इतनी बढ़िया एक्टिंग मैंने की इंस्पेक्टर की और ये कौन से शेट्टी भिट्टी का रोल दे रहे, 2.5-3 सीन का है, हमें पसंद नहीं यार। तेंदुलकर जी को पूछा, मैंने कहा ये क्या रोल है? बोले छोटा है, अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, 2-2.5 सीन थे लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था
2: जी।
1: और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था। मैंने कहा चलो एक एक्सपीरियंस होगा। 2-2.5 दिन काम किया, उसको भूल गया, मेरा नाटक चलता था,
2: भूल भी गया
1: क्योंकि बाद में 6 महीने में मैं भूल गया कि मैंने किसी फिल्म में काम भी किया।
2: क्योंकि आपके अर्धसत्य के रामा शेट्टी को लोग आज भी याद करते हैं
1: जी, जी।
2: और मैं तो कहूं कि एक विलन के लिए एक नया चेहरा आपने उस समय दिया और कुछ विलन की तरफ देखने का लोगों का नजरिया भी उसी भूमिका से बदल गया और आप भूल गए।
1: जी मैं सचमुच मैं भूल गया क्योंकि मैं इतना नाटक में व्यस्त था कि मुझे मालूम भी नहीं था। और उसके बाद मैं नाटक खत्म हुआ, मैं कुछ काम के लिए गांव गया और उस वक्त मुझे वहां पे फोन आया कि आपका पिक्चर का प्रीमियर है, आप आइए, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने पिताजी को कहा कि मेरे प्रीमियर शो है, मैंने एक फिल्म में काम किया है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, अच्छा अभी फिल्म भी करने लगे, वहां भी नाचने लगे, कमर हिलाने लगे। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है, अच्छा रोल है। नहीं नहीं बोले अभी इधर ही रहो, उधर जाने की जरूरत नहीं, अभी कोई आपका मतलब नाटक बिटक नहीं है। मैं वही रह गया,
2: प्रीमियर में नहीं गया,
1: प्रीमियर में नहीं जा सका। बात यह हुई कि बड़ा अफसोस लगता था और उदासी छाई हुई थी। और उस वक्त मैंने फिर गुरुदत्त का

0: वाकई रामा शेट्टी को लोग नहीं भूल पाए हैं आज भी। और उसके बाद जो है आपकी कई फिल्में आई, जैसे आखिरी रास्ता में जो आपने पॉलिटिशियन चतुर्वेदी का रोल किया, वो भी मुझे वो पूरा सीन ऐसा देख के लगता था कि अभी जाके इस आदमी का गला घोंट दूं, ये जयाप्रदा कुछ नहीं कर पा रही है, हम जाके कुछ इसका कर डालें। और मैं समझती हूँ कि यही आपका सक्सेस है, यही एक बहुत बड़ा।
1: उस फिल्म में एक बहुत मजा हुई थी कि अमिताभ बच्चन जी उसमें थे, जयप्रदा थी, श्रीदेवी थी, और उसके डायरेक्टर थे के भाग्य राजा, जो वहाँ के बहुत बड़े डायरेक्टर और एक्टर भी थे, हीरो भी है
0: जी।
1: और उनको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी तो कैसे, मतलब उनसे बातचीत कैसे करें। अमित जी को तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी उस वक्त, और वो जब भी जो भी करना समझाना चाहते थे वो थ्रू एक्टिंग ही समझा सकते थे
0: जी।
1: तो उनके बाजू में एक हिंदी और तेलुगु जानने वाला आदमी था, मतलब तमिल जानने वाला, और वो उनको बताते थे, फिर ये हिंदी में हमें बताता था, और बीच में वो फिर एक्टिंग करते थे। तो वो जो सीन है जो उनके ऊपर मैं रेप के बारे में बात करता हूँ, वो सीन जब मैंने किया तो उन्होंने मुझे एक्टिंग करके बताया कि मुझे इस तरह चाहिए, और वो एक एक्टिंग की लैंग्वेज भी होती है ना, तो वो मैं समझ गया
0: जी।
1: और फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल रहे
0: जी।
1: तो एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस था, और फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई, अच्छा हुआ
0: जी।
1: काफी वैरायटी फिल्में कर रहा हूँ।

0: ये जो विलन बनना और एक साथ कॉमेडियन भी बन जाना, ये आप कैसा कर पाते हैं? कहीं पे मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि जैसे आपके प्रोड्यूसर्स या निर्माता जो आपके पास अपना रोल वो भेजते थे, तो वो विलन का रोल रहता था, वो उसमें बदलाव नहीं आया, तो लगातार वही काम करते करते करते करते जब कॉमेडियन का रोल करने को मिल गया, तो उस चीज से निकल के, उस शय से निकल के इस शय में अपने आप को ढालना, वो आपने कैसे कर लिया?
1: नहीं, मैं एक्टर हूँ और जो भी रोल मेरे सामने आता है उसे लगन और निष्ठा से निभाना मेरा काम है। इसीलिए तो मेरे हर कैरेक्टर को गालियां मिलती है लेकिन हमें तालियां मिलती है।
0: तो उम्र एक अलग चीज है जो व्यक्ति की होती है, और फिल्म की जो अदा है, जो भूमिका है, जो रोल है, उसकी एक अलग उम्र होती है। मतलब हर उम्र में कलाकार को अपने आप को ढाल लेना पड़ता है। तो कुछ उसके बारे में बताइए ना कि बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा था कि आप तो बहुत बूढ़े थे और आप तो हो जवान बिल्कुल, ऐसी कोई किसी भूमिका के बारे में जिसमें आपको लगता है कि बिल्कुल अलग मैं कुछ ये कर रहा हूँ?
1: हाँ, वैसी एक भूमिका मैंने सड़क में की थी
0: जी,
1: महारानी की, युनक की। वो भूमिका जब मेरे पास आई, उसके निर्देशक थे महेश भट्ट और बड़े मुझे रोल तो दिया उन्होंने, लेकिन घबराए हुए थे कि इस तरह का यूनिक का विलन का रोल लोगों को अच्छा लगना,
0: महारानी
1: का रोल बहुत जरूरी है, और अच्छे लगने के साथ साथ उसकी एक दहशत पैदा करना, क्योंकि आज तक फिल्मों में जितने भी यूनिक के रोल हुए हैं वो कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये रोल लोगों के दिल में दहशत पैदा करे ऐसा होना चाहिए
0: जी।
1: और उसके लिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था और रोल सुनकर मैंने कहा मैं ये करता हूँ। बोले आपको जरा भी हिचक नहीं हुई हाँ कहने में? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आप ये कर पाएंगे? मैंने कहा जरूर करूंगा। कैसे करेंगे? मैंने कहा वो आप मुझ पर छोड़िए, इसके लिए क्या करेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, वो भी मुझ पर छोड़ी है। और मुझे सोचने में जरा थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने एक प्ले किया था, उसमें किंचित गंधर्व का रोल था, वो मैंने किया था कॉलेज में, इसलिए उसके एक्टिंग की मुझे चिंता नहीं थी। मुझे चिंता थी कि इस कैरेक्टर की दहशत कैसे मैं पैदा करूं
0: जी।
1: और जब हमने पहला सीन जिस दिन किया, उस दिन भट्ट साहब बहुत खुश हुए और उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये लड़का अच्छा काम करेगा, और उसी का फल मिला मुझे। उस रोल की काफ़ी तारीफ हुई, पिक्चर भी बहुत चली और उसमें काफ़ी अवार्ड्स भी मुझे मिले
0: जी जी।
1: तो ये करते वक्त मुझे बड़ा मज़ा आया। एक उसमें सीन हम करते थे तो मैंने कहा एक सीन इसका साड़ी में होना बहुत ज़रूरी है कि वो साड़ी पहनकर बात करता है, तो बोले जरूर करेंगे, आप बोलो कैसे करना है। वो छोड़ देते थे और ये उनका छोड़ना बड़ा अच्छा था,
0: मुझे ऐसा लगता है कि
1: उत्साहित करना था।
0: हाँ, कलाकार के साथ साथ जो आपने निर्देशन का इतना सारा काम किया
1: जी,
0: वो ही आपका इसमें
1: जी
0: हुनर।
1: हाँ, तो उस वक्त मैंने किया, और बाद में लोगों ने पूछा मुझे कि आपने ये रोल करते हो क्या स्टडी किया, कहाँ किसको देखा, क्या देखा क्या नहीं देखा। तब मुझे याद आया कि मैंने वो प्ले किया था, वो एक्टिंग मेरे पास थी, और एक ज़माने में मैं जब गया था मेरे दोस्त के साथ किसी काम के लिए, तो वहाँ एक फ़ोटो लगी हुई थी साड़ी में किसी औरत की, और उन्होंने कहा नहीं ये औरत नहीं ये मर्द है, लेकिन कभी कभी वो साड़ी पहनकर ऐसे बैठते हैं और उनको शौक है साड़ी पहनकर फ़ोटो निकालने की। तो वो मैंने फ़ोटो देखी थी, वो मेरे दिमाग में थी, वो जो यादगार हैं वो यादगारें हमें काम आती है
0: जी,
1: वो बहुत बढ़िया होती है
0: जी।
1: जब आदमी एक्टिंग करता है तो यादें सामने आ जाती है कि भाई देखो ये है ये है ये है
0: जी।
1: वही तो हमारी मतलब जिसको हम कहेंगे कि जीवन का अनुभव जिसको लोग कहते हैं, मैं तो यादगारें कहता हूँ, वही बहुत संपन्न करती है हमें और वही हमसे एक्टिंग करवाती है
0: जी।
1: ऐसे कुछ डायलॉग थे उसमें, डर मत मेरी जान डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, जानती हो क्यों? क्योंकि मैं आधा मर

0: मर्द हूं और आधी औरत, देखना ये किस्मत का खेल तो देख, कुछ नहीं मेरे पास है ना, तो वो सिर्फ दिमाग। हाँ, कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए औरतों का धंधा करती हूं और मर्दों की सेवा। इस जिस्म के बाजार का महाराजा और नाम महारानी।
1: वाह वाह वाह। लेकिन इसके अलावा आप और क्या क्या, मतलब आपकी हॉबीज क्या हैं? आप क्या करना और पसंद करते हैं, या खाली समय में और क्या करते हैं?
0: खाली समय में मैं किताबें पढ़ता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, दोस्तों से बातचीत करता हूँ, पुराने शिल्प मुझे बहुत पसंद है। मैं मंदिर में जाता हूँ किसी पुराने, तो जरूर वो मंदिर देखना चाहता हूँ और उसी लिए मंदिर जाता हूँ। टीवी देखना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी देखता हूँ, कभी कभी बीबीसी भी सुनता हूँ। और आप यकीन नहीं करोगी, मैं ऑल इंडिया रेडियो सुनना बहुत पसंद करता हूँ।
1: वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही उम्दा बात कही है आपने
2: जी।
1: आपने कभी लिखा है जो आप ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ, उनको अपनी भूमिकाओं में ढाल लेता हूँ, तो क्या आपके मन का कभी ये रुझान नहीं हुआ कि कुछ लिखें भी?
0: नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन एक हादसा जरूर हुआ था कि अपने मराठी थिएटर के बहुत बड़े राइटर वीवा शिरवाड़कर, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, आज वो नहीं है, मैं और डॉक्टर लागू एक दो बार डॉक्टर लागू के संग में उनके पास गया था और बातें हो रही थी और सोशल वर्क कमिटमेंट की बातें हो रही थी, तो मैंने कहा ये बातें करने से क्या होगा, अगर करना है तो चलो जीवन के कुछ साल निकालो, दे दो उनको, काम करते हैं। तो शिरवाड़कर जी ने मेरी तरफ कहा, देखा और कहा कि देखो कि समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि बाहर निकलो और समाज का काम करो, हर आदमी अपना काम सिंसियरली करे तो भी वो एक समाज सेवा है
1: जी।
0: तुम तुम्हारे माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते हो। उस वक्त समझ में नहीं आई बात, कुछ साल बाद एक स्क्रिप्ट मिला फिल्म का, वो हेलन केलर के ऊपर था। मैंने वो फिल्म पढ़ी और मैं बड़ा खुश हुआ कि एक आंधी गूंगी बहरी लड़की को कैसे सिखाया 100 साल पहले। तो मैं वो स्क्रिप्ट लेकर गया शिरवाड़कर जी के पास और कहा कि इसके ऊपर मुझे नाटक लिख के दो, मैं ये नाटक करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं इंग्लिश ना फिल्म के ऊपर इस तरह नाटक मैं नहीं लिख सकता, आप किसी और से लिखो। तो मैं गया, फिर वापस बैठा, फिर कुछ सीन तैयार किए, कुछ ढांचा तैयार किया, फिर उनके पास आया। तो उन्होंने कहा ये आपने कुछ किया है, लेकिन ये मैं विजुअल नहीं कर सकता हूँ उसको, तो आप ऐसा करो इसके कुछ डायलॉग्स भी लिखो, संवाद लिखो और फिर मेरे पास आओ। फिर मैं गया, फिर कुछ संवाद लिखे, फिर लेकर आया और उनके सामने रखा। हाँ बोले अभी ठीक है, तुम ये रख के जाओ। और उसके बाद उन्होंने 10 दिन में उसमें कुछ संवाद लिखे, जहाँ मैंने संवाद लिखे थे उनको अच्छे लगे थे वो वैसे के वैसे रखे, और इस तरह हम दोनों ने मिलकर एक की मायागार नाम का नाटक लिखा।
1: एक की मायाई हो गई जैसे
0: जी जी।
1: और वो बहुत उसका नाम भी हुआ
0: जी।
1: उसको काफी सराहा भी लोगों ने।
0: एक फिल्म है सूरत और सीरत,
1: बहुत पुरानी फिल्म है
0: जी
1: ये।
0: जी, बहुत दिया देने वाले ने तुझको।

0: आप विद्यार्थी की तरफ दोबारा जरूर आइएगा, आपसे बात करने का एक मौका हमें जरूर दीजिएगा। और सारे श्रोताओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ, आगे चाहती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सदाशिव अमलापुरकर से कांचन प्रकाश संगीत की बातचीत सुन रहे थे।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे।

अभी आप सुन रहे थे मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युवा वाणी।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94

0: 800-32-21-909।
1: दोस्तों स्वागत करते हैं आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में आपकी अपनी रेडियो दोस्त आकांक्षा सिंह के साथ। साथियों आज है मंगलवार और आज के दिन हम आपके लिए लाते हैं बहुत कुछ खास। जी हां दोस्तों आज चर्चा का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। भारतीय इतिहास से जानेंगे मौर्यकालीन स्थापत्य के बारे में। उसके बाद होगा आप सबका प्रिय चक्रव्यूह और साथ ही मनोरंजन के लिए होंगे गीत भी। तो साथियों आइए शुरू करते हैं चर्चा। साथियों क्या आपने कभी सोचा है कि हम जब सुबह उठकर चाय की चुस्की लेते हैं या दोपहर में रोटी सब्जी खाते हैं तो उसका असली हीरो कौन है? वो हीरो है एक स्वस्थ पौधा। लेकिन क्या हम कभी उनकी सेहत के बारे में सोचते हैं? शायद नहीं। इसलिए आज यानी 12 मई को पूरी दुनिया मना रही है अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि क्यों पौधों का फिट रहना हमारे फिट रहने के लिए जरूरी है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र यूएन ने 12 मई 2022 को ये खास दिन घोषित किया है। बात यह है कि हम जो खाना खाते हैं उसका 80% हिस्सा पौधों से आता है और जिस ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं उसका 98% हिस्सा ये पौधे ही हमें देते हैं। लेकिन दुख की बात पता है क्या है, हर साल दुनिया भर में बीमारियों और कीड़ों की वजह से 40% तक फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इससे न केवल किसानों का नुकसान होता है बल्कि दुनिया में भुखमरी भी बढ़ती है। जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज की बात करें और इंसानी गतिविधियों की वजह से ये पौधे खतरे में हैं। इसलिए ये दिन हमें याद दिलाता है कि पौधों को बचाना कोई चॉइस नहीं बल्कि जरूरत है। देखने से लगता है कि हमारे आसपास बहुत से पेड़ पौधे हैं, अगर कुछ खराब भी होते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है दोस्तों, आपको आज नहीं लेकिन कुछ सालों बाद जरूर महसूस होगा और फर्क भी पड़ेगा। दोस्तों जब हम एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो अक्सर अपने साथ फल या बीज ले जाते हैं। सुनने में ये छोटा सा काम लगता है लेकिन क्या आप जानते हैं अनजाने में हम ऐसे कीड़े या बीमारियां एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं जो वहां की पूरी खेती को तबाह कर सकती है। दोस्तों पौधों का स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है और स्वास्थ्य सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था और पर्यावरण से जुड़ा है। अगर पौधे बीमार होंगे तो हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, खाना महंगा हो जाएगा और जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें प्लांट हेल्थ को गंभीरता से लेना होगा। तो सवाल यह है कि हम और आप क्या कर सकते हैं? बहुत आसान है। सबसे पहले अपने घर में या बालकनी में पौधे लगाएं और उनकी सही देखभाल करें। बिना जांच परख के विदेश से या दूर दराज से बीज या पौधे ना लाएं। खेती में रसायनों का इस्तेमाल कम करें और जैविक खाद को बढ़ावा दें। साथ ही पौधों में पानी की कमी ना होने दें क्योंकि उनके सूखने का भी डर होता है। कुछ पौधे कड़ी धूप में खराब हो जाते हैं, उन्हें छांव में रखिए, खास करके जो गर्मी पड़ रही है ऐसी गर्मी में तो जरूर। साथियों 12 मई 2026 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ की थीम है प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा के लिए पादप जैव सुरक्षा। साथियों इसका उद्देश्य है पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा करके भूख को खत्म करना, गरीबी कम करना, जैव विविधता की रक्षा करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। और महत्व ये है कि इससे ध्यान केंद्रित रहता है कि कैसे सुरक्षित पौधे आजीविका और पोषण की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों आज से ही निर्णय लीजिए कि हम सिर्फ पेड़ लगाएंगे ही नहीं बल्कि उनकी सेहत का भी ख्याल रखेंगे। इसी के साथ दोस्तों ये चर्चा अब यहीं पर समाप्त होती है। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जो है फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, गाया है शेखर राजीवानी, सलीम मर्चेंट और नीति मोहन ने, संगीत दिया है विशाल शेखर ने, लिखा है अन्विता दत्त ने।

साथियों, अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट भारतीय इतिहास से, जिसमें आज हम बात करेंगे मौर्य कालीन स्थापत्य के बारे में। साथियों, आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसे दौर की बात करेंगे जिसने भारत की पहचान को पूरी दुनिया में चमका दिया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मौर्य कालीन स्थापत्य कला यानी मौर्य साम्राज्य की वो शानदार इमारतें और कलाकृतियां जो आज भी हमें हैरान कर देती हैं। साथियों, आज से करीब 2500 साल पहले, लगभग 322 से 185 ईसा पूर्व, जब ना बिजली थी और ना ही आधुनिक मशीनें, तब हमारे पूर्वजों ने पत्थरों को काट कर ऐसी कलाकारी की कि दुनिया देखती रह गई। मौर्य काल से पहले ज्यादातर चीजें लकड़ी या मिट्टी की बनती थी, लेकिन सम्राट अशोक के समय में पत्थरों का ऐसा जादू चला कि वो सदियों के लिए अमर हो गए। दोस्तों, मौर्य कला की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी चमक, इसे मौर्य पॉलिश भी कहते हैं। पत्थरों को इतना रगड़कर चमकाया जाता था कि आज भी वो आईने की तरह चमकते हैं। विदेशी यात्री जब भारत आए तो वो यहाँ के महलों को देखकर दंग रह गए। चंद्रगुप्त मौर्य का वो पाटलिपुत्र वाला महल इतना विशाल था कि लोगों को लगता था इसे इंसानों ने नहीं बल्कि देवताओं ने बनाया है। साथ ही मौर्य स्थापत्य कला की मुख्य विशेषताएं रही जिसे आज हम जानेंगे। आपको पता है मौर्य कला दो प्रकार की थी। पहली राजकीय, जैसे महल, स्तंभ, स्तूप, जिसे राजाओं ने संरक्षण दिया, और दूसरा लोक कला,

जैसे यक्ष यक्षी की मूर्तियां। दोस्तों लकड़ी की जगह पत्थर का उपयोग शुरू हुआ। चुनार के बलुआ पत्थर से बने स्तंभों पर अनोखी मौर्य पॉलिश है जो आज भी शीशे की तरह चमकती है। फिर बात आती है स्तंभ कला, मोनोलिथिक पिलर्स। अशोक के एकाश्मक स्तंभ यानी एक ही पत्थर से बने वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं, जिनके शीर्ष पर पशु आकृतियां जैसे शेर बैल हैं। ये खंभे एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए हैं। सम्राट अशोक ने अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए ऊंचे ऊंचे पत्थरों के खंभे बनवाए थे। और दोस्तों हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी इसी मौर्य कला की देन है। सारनाथ के स्तंभ पर बने वो चार शेर हमें साहस और शक्ति का एहसास कराते हैं। ये सिर्फ पत्थर नहीं थे बल्कि उस समय के सोशल मीडिया की तरह थे, जिन पर राजा अपनी जनता के लिए प्यार और शांति की बातें लिखवाया करते थे। मौर्य काल में सिर्फ महल और खंभे ही नहीं बने बल्कि स्तूप भी बनाए गए। सांची का स्तूप तो आपने देखा ही होगा, ये एक उल्टे कटोरे जैसी आकृति का है जिसके अंदर भगवान बुद्ध की यादें सजोई गई हैं। इसकी बनावट इतनी शांत और सुंदर है कि वहां जाकर मन को बड़ी तसल्ली मिलती है। इसके अलावा उस दौर के कलाकारों ने पहाड़ों को काट कर गुफाएं बनाना शुरू किया। बराबर की पहाड़ियों में बनी ये गुफाएं अंदर से इतनी चिकनी है कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये हथौड़े और छेनी से बनी है। ये गुफाएं साधु संतों के रहने के लिए बनाई गई थी, जो दिखाती है कि उस समय का समाज कला और अध्यात्म को कितनी अहमियत देता था। दोस्तों सारनाथ सिंह शीर्ष मौर्य मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। फिर है दीदारगंज यक्षी, ये पॉलिशयुक्त मूर्ति कला का सुंदर सा नमूना है। बराबर गुफाएं रॉक कट वास्तुकला को दिखाती है। और बात रही अशोक स्तंभ की, तो शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण ही है ये कला शैली। भारतीय महाद्वीप में मौर्य साम्राज्य की शक्ति और बौद्ध धर्म के प्रसार का प्रतीक बनी। इसी के साथ दोस्तों ये सेगमेंट अब यहीं पर समाप्त होता है। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जो है फिल्म तुम बिन टू से, गाया है अरिजीत सिंह ने, लिखा है मनोज मुंतशिर ने, संगीत दिया है अंकित तिवारी ने।

0: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596242404 और 7800037222।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: दोस्तों वक्त हो चला है हमारे अगले और आखिरी सेगमेंट चक्रव्यूह का, जिसमें हम आपसे पूछते हैं 7 सवाल और आप उन्हें भेदते हुए हमें भेजते हैं इसके सही जवाब। तो दोस्तों आज के चक्रव्यूह संख्या 604 में हम आपसे पूछेंगे 7 सवाल, लेकिन इसके पहले दोस्तों हम आपको चक्रव्यूह संख्या 603 के सवालों का सही जवाब बताएंगे। और दोस्तों मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि किन्हीं कारणों की वजह से हमें चक्रव्यूह संख्या 603 का मेल नहीं प्राप्त हो सका, इसलिए आज हम सिर्फ उनके सही जवाबों को जानते हैं। साथियों चक्रव्यूह संख्या 603 का पहला सवाल था, हाल ही में अलीगढ़ जिले में स्थित एक अभयारण्य को रामसर स्थित घोषित किया गया है, उस पक्षी अभयारण्य का नाम क्या है और किस क्रम का भारतीय रामसर स्थल है? उत्तर है शेखा झील पक्षी अभयारण्य क्रम 99। दूसरा सवाल था दोस्तों, मद्रास प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब की स्थापना कब और किसने की? उत्तर है 31 जुलाई 1924 में सीवी कृष्णमूर्ति चेष्टी ने। तीसरा था दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ और इसमें किन भारतीय शासकों का गठबंधन था? उत्तर है 22 अक्टूबर 1764 मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय। चौथा सवाल था दोस्तों, फिडे विमेंस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 को जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? उत्तर है वैशाली रमेश बाबू। पांचवा सवाल था दोस्तों, दुनिया का पहला अप्तसार उपग्रह कब और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तर है 3 मई 2026।

भारत के बेंगलुरु के स्पेसटेक स्टार्टअप गैलेक्सी आई द्वारा किया गया। छठा सवाल था दोस्तों, उड़ने वाले गुब्बारों के अंदर सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? उत्तर है हीलियम। सातवां सवाल था दोस्तों, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? उत्तर है 24 कैरेट। तो साथियों, ये थे चक्रव्यूह संख्या 603 के सही जवाब। और अब हम चलते हैं दोस्तों, वक्त आ गया है चक्रव्यूह संख्या 604 के सवालों का। तो आइए इसके चक्रव्यूह को रचते हैं। तो साथियों, आप तैयार हो जाएं पेन कॉपी लेकर, या रिकॉर्ड जो करना चाहते हैं वो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। हम सवालों को बताएंगे, साथ ही उन्हें दोहराएंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों की झड़ी। हमारा पहला सवाल है दोस्तों, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने और कब पढ़ा था? एक बार फिर से दोहराती हूँ दोस्तों, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने और कब पढ़ा था? हमारा दूसरा सवाल है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो कहाँ स्थित है? एक बार फिर से सुनिएगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो कहाँ स्थित है? हमारा तीसरा सवाल है दोस्तों, भारत में शून्यकाल यानी जीरो आर संसदीय प्रक्रिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, भारत में शून्यकाल यानी जीरो आर संसदीय प्रक्रिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? और हमारा चौथा सवाल है, अप्रैल 2026 के ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? एक बार फिर से सुनिएगा, अप्रैल 2026 के ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? और फिर हम चलते हैं अपने पांचवें सवाल की तरफ। साथियों, भारत और मलेशिया के बीच दिसंबर 2025 में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? एक बार फिर से सुनिएगा, भारत और मलेशिया के बीच दिसंबर 2025 में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? और फिर हमारा छठा सवाल है, नमो भारत डिपो गाजियाबाद में भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम किस संगठन ने शुरू किया है? एक बार फिर से सुनिएगा, नमो भारत डिपो गाजियाबाद में भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम किस संगठन ने शुरू किया है? और हमारा सातवां और आखिरी सवाल है दोस्तों, जून जुलाई 2026 में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एक बार फिर से सुनिएगा, जून जुलाई 2026 में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो साथियों, सवाल अब यहीं पे खत्म होते हैं और 604 के सवाल खत्म हुए, जिसे भेजते हुए आप हमें सही जवाब लिख भेजिएगा हमारे मेल पर। हमारी मेल आईडी है yuvvanaiodhya@gmail.com पर। चक्रव्यूह संख्या 605 का प्रसारण होगा 18 मई 2026 को और मेल भेजने की अंतिम तिथि है 17 मई 2026। हमें बहुत खुशी होती है जब आपके मेल हमें प्राप्त होते हैं, तो आप हमारी ये खुशी बनाए रखें और चक्रव्यूह को इसी तरह भेजते रहें। इसी के साथ दोस्तों, ये सेगमेंट अब यहीं पर समाप्त होता है। और दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस गर्मी की तरफ। साथियों, गर्मी अब धीरे धीरे ही सही लेकिन अपना रूप दिखा रही है। काम पर जाने वालों के लिए ये एक चुनौती की तरह होती है। इससे बचने के लिए लोग कई जतन करते हैं, क्योंकि काम पर जाना तो आवश्यक है। इसी वजह से कड़ी धूप गर्म हवा के चलते कितने ही लोग बीमार पड़ जाते हैं जो काम पर जाते हैं। तो साथियों, जब गर्मी अपने चरम पर हो तो काम करने वालों की सेहत का ध्यान रखना हर मालिक या एम्प्लॉयर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले अपने वर्कर्स के लिए ठंडे पानी की उचित व्यवस्था करें और सुनिश्चित करें कि वो थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लेते रहें। काम के घंटों में थोड़ा बदलाव करें, ज्यादा मेहनत वाले काम सुबह जल्दी या शाम को ठंडक होने पर करवाएं, ताकि कोई हीट स्ट्रोक का शिकार ना हो। दूसरी बात, काम करने की जगह पर छाया और हवा यानी वेंटिलेशन का पूरा इंतजाम रखें। अगर संभव हो तो कूलर या पंखे लगवाएं और वर्कर्स को हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने की सलाह दें। साथ ही सभी को हीट स्ट्रेस के लक्षणों के बारे में बताएं, ताकि अगर किसी की तबीयत बिगड़े तो तुरंत प्राथमिक उपचार मिल सके। याद रखिए, जब आपके कर्मचारी सुरक्षित और तंदुरुस्त रहेंगे तभी हम आपका काम बेहतर होगा। दोस्तों, वक्त हो चला है एक धमाकेदार गीत सुनने का, जो है फिल्म वेलकम से। गाया है आनंद राज आनंद ने और श्वेता पंडित ने, लिखा है

0: इसी के साथ दोस्तों हम अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। बात कर लेते हैं अगले दिन के कार्यक्रम की। कल चर्चा का विषय होगा मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम। व्यक्ति विशेष में जानेंगे आर के नारायण के बारे में। उसके बाद दोस्तों होगा आप सबका पसंदीदा खेल संसार और साथ ही होंगे मनोरंजक गीत भी। इसी के साथ दोस्तों आशा कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अपने रेडियो दोस्त आकांक्षा सिंह को दें इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
1: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अभी युवा साथियों ने सुना अपना कार्यक्रम युवावाणी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। लीजिए सुनिए लोक संगीत।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

Waves OTT app now and watch for free. लोक संगीत कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं छबिलाल पाल व साथियों की आवाज में ये सोहर।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: सुनिए।
1: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचाती और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत

सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।

0: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन, बिना दर्द, बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 9161877347।
2: अभी आपने सुना लोक संगीत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम को 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में, तत्पश्चात अंग्रेजी में हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: समाचार के साथ मैं लवली निगम। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि ये भारत और नेपाल की अटूट मित्रता तथा

पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में एक सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बीच सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व के अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रोड की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: has decided to cancel the NEET UG 2026 examination conducted on the 3rd of this month for admission to undergraduate medical education. In a social media post, the NTA informed that this decision has been made in the interest of students and in recognition of the trust on which the national examination system rests. The agency also stated that the government has decided to refer the matter to the Central Bureau of Investigation for a comprehensive inquiry into the allegations of paper leak. The agency said it will extend full cooperation to the Bureau and provide all materials, records and assistance required for the investigation. It said the decision was made following the inputs examined by the NTA in coordination with central agencies and investigative findings shared by law enforcement agencies. The NTA said the examination will be reconducted on dates to be notified separately. Registration details, candidature information and examination centres selected for the May 2026 cycle will remain unchanged and be carried forward to the reconducted examination. The agency informed that no fresh registration will be required and no additional examination fee will be levied. Senior BJP leader Hemanta Biswa Sarma has taken oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered him the oath of office in secrecy at a ceremony held at the Veterinary College ground in Khanapara, Guwahati. Along with Dr. Sarma, four MLAs were also sworn in as cabinet ministers. They include Rameshwar Teli and Ajanta Niyog from the BJP, Atul Bora from Ahom Gana Parishad and Charan Bora from Bodoland People's Front. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers from the NDA-ruled states attended the ceremony. Chief Justice of India Surya Kant has announced to constitute a high-powered committee headed by Supreme Court Justice Arvind Kumar to prepare a blueprint for the modernization of courts across the country and secure a government allocation of 40 to 50,000 crore rupees for the purpose. The Judicial Infrastructure Advisory Committee will address infrastructural deficiencies in courts through substantial financial support from the government. The committee has been tasked with submitting its detailed findings and funding requirements to Sanjeev Sanyal, a member of the Prime Minister's Economic Advisory Council, by 31st August this year. In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad today. The match will begin at 7:30 p.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.
1: अभी आपने सुना समाचार पहले हिंदी में तत्पश्चात अंग्रेजी में जिसे हमने अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर गर्म लाल शुष्क त्वचा का होना पसीना ना आना पल्स तेज होना व्यवहार में परिवर्तन भ्रम की स्थिति सिरदर्द मितली थकान और कमजोरी होना चक्कर आना मूत्र ना होना या कम होना ये हीट स्ट्रोक के लक्षण हैं उच्च तापमान से शरीर के आंतरिक अंगों विशेष रूप से मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है तथा शरीर में उच्च रक्तचाप उत्पन्न करता है मनुष्य के हृदय पर प्रतिकूल प्रभाव होता है जो अगले एक या दो घंटे से अधिक समय तक 40.6 डिग्री सेल्सियस यानी 105 डिग्री फारेनहाइट या अधिक तापमान अथवा गर्म हवा में रहते हैं तो उनके मस्तिष्क में क्षति होने की संभावना प्रबल हुई होती है ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और हीट स्ट्रोक से बचें लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना रामू केवट सनाफ राम समुज निवासी आदिलपुर मजरे सुमीरपुर थाना पयागपुर जनपद बहराइच के रहने वाले हैं ये कहीं लापता हो गए हैं इनकी उम्र 28 वर्ष है शरीर की बनावट औसत है चेहरा औसत है ऊंचाई इनकी 5 फीट है रंग गेहुआ है बाल काले घने हैं पैंट शर्ट काला व सफेद पहने हुए ये कहीं पर लापता हो गए हैं जिस किसी भी व्यक्ति को इनके बारे में सूचना प्राप्त हो कृपया अपने नजदीकी थाने पर सूचना देने का कष्ट करें सूचना समाप्त हुई हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर लीजिए सुनिए कार्यक्रम शाम सुहानी शाम सुहानी कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं रिश्ते फिल्म का ये गीत उदित नारायण अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में गीत है अब्बास कटका का संजीव है

0: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
1: कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं ये गीत फिल्म तलाश से। आवाज है कुमार सानू की, गीत है समीर का, संगीत दिया है संजीव दर्शन।

अभी आपने सुना कार्यक्रम शाम सुहानी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:20 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: केन्द्रीय संस्थाभिः आरक्षक बलैः च सह समन्वयानन्तरं प्राप्त सूचनानां आधारेण एषः निर्णयः कृतः। भारतीय जनता दलस्य वरिष्ठनेता डॉ. हिमन्त बिस्वा सरमा अनवरतं द्वितीयवारं असम राज्यस्य मुख्यमन्त्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। गुवाहाटी नगरस्य खानापाड़ा स्थिते पशु चिकित्सा महाविद्यालयस्य प्रांगणे आयोजिते समारोहे राज्यपालः लक्ष्मण प्रसाद आचार्यः तस्मै पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रादापयत्।
1: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরের নামত শপথ লও যে বিধির দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি মই প্রকৃত বিশ্বাস আর আনুগত্য পোষণ করি।
0: ডক্টর শর্মা মহোদয়েন সহ অন্যে চত্বারহ অপি মন্ত্রিমণ্ডলহ মন্ত্রিত্বেন শপথম স্বীকৃতবন্তহ। তেষু ভাজপা দলস্য পক্ষতহ রামেশ্বর তেলী, अजंता नियोग च असम गण परिषदः पक्षतः अतुल बोरा तथा बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट पक्षतः चरण बोरो च सम्मिलिताः सन्ति। अस्मिन् समारोहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहः, अनेके केन्द्रीय मंत्रिणः तथा एनडीए शासित राज्यानां मुख्यमंत्रिणः अपि उपस्थिता आसन्। अनेन सह डॉ. शर्मा असम राज्यस्य प्रथमः कांग्रेस रहितः नेता अभवत्, यः अनवरतं द्वितीयवारं मुख्यमंत्री पदम् अलंकृतवान्। अस्मिन् मासे 14-15 दिनांकयोः ब्रिक्स विदेश मंत्रिणां सम्मेलनस्य आतिथ्यं भारतं करिष्यति। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकरः अस्य सम्मेलनस्य अध्यक्षतां करिष्यति। अद्य नवदिल्ल्यां प्रसार माध्यमान् संबोधयन् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् अस्मिन् सम्मेलने ब्रिक्स सदस्य राष्ट्राणां सहभागी राष्ट्राणां च विदेश मन्त्रिणः प्रतिनिधिमण्डल प्रमुखाः च उपस्थिताः भविष्यन्ति। सः अपि उक्तवान् यत् ते प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह अपि मेलनं करिष्यति। श्री जायसवालः अवदत् यत् अस्मिन् सम्मेलने ब्रिक्स सदस्य राष्ट्राणां विदेश मन्त्रिणः परस्पर हितस्य वैश्विक क्षेत्रीय विषयेषु स्वविचाराणां आदान प्रदानं करिष्यन्ति।
2: 14 और 15 तारीख को ब्रिक्स विदेश मंत्री की बैठक हो रही है, जिसकी अध्यक्षता हम लोग कर रहे हैं। जहां तक देशों का आपने जिक्र किया, उनकी तरफ से कौन आएगा ये तो खैर उनको तय करना है, लेकिन जैसे जैसे लोग आएंगे आपको पता चल जाए कौन उनके नेतृत्व कर रहे हैं, कौन लोग उसमें भाग ले रहे हैं।
0: अद्य अन्ताराष्ट्रिय परिचारिका दिवसः आचर्यते। अयं दिवसः आधुनिक परिचारिका व्यवस्थायाः संस्थापिकायाः फ्लोरेंस नाइटिंगल इत्यस्याः जन्मवार्षिक्याः उपलक्ष्ये प्रतिवर्षम् आचर्यते। रोगी परिचर्यायां सामुदायिक स्वास्थ्ये आर्थिक विकासे च परिचारिकाणां महत्वपूर्णां भूमिकां स्वीकृत्य अयं दिवसः आचर्यते। अस्मिन् वर्षे अन्ताराष्ट्रिय परिचारिका दिवसस्य विषयः अस्माकं परिचारिकाः अस्माकं भविष्यम् इति। सशक्ताः परिचारिकाः जीवनानि रक्षन्ति इति उपविषयः अपि निर्धारितः अस्ति। एतत् वैश्विकस्तरे परिचर्या व्यवसायिकानां कृते उत्तम सहयोगस्य संरक्षणस्य संसाधनानां च आवश्यकतां प्रकाशयति। अस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रपति भवने आयोजिते कार्यक्रमे 15 परिचर्या वृत्तिकर्तृभ्यः राष्ट्रिय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारान् प्रदत्तवती। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पश्चिम बंगाल राज्यस्य नूतन निर्वाचित मुख्यमन्त्रिणः शुभेन्दु अधिकारिणः नेतृत्वे प्रथम मन्त्रिमण्डल गोष्ठ्याः निर्णयानां भूरि प्रशंसां कृतवान्। सामाजिक माध्यमेन प्रधानमंत्री प्रोक्तवान् यत् पश्चिम बंगाल राज्यस्य जनानां कल्याणमेव सर्वोपरि प्राथमिकता वर्तते। श्रीमोदी हर्षं प्रकटितवान् यत् अधुना राज्यस्य नागरिकाः विश्वस्य बृहत्तम स्वास्थ्य योजनायाः आयुष्मान भारत इत्यस्य लाभं

0: भारतं बांग्लादेश स्मीनः कंटक तार वेष्टनार्थं पञ्चचत्वारिंशत् दिनाभ्यन्तरे सीमा सुरक्षा बलाय भू हस्तांतरणस्य ऐतिहासिक निर्णयः अपि स्वीकृतः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवासरात् आरभ्य संयुक्त अरब अमीरात नीदरलैंड्स स्वीडन नॉर्वे इटली पञ्चदेशानां यात्रायां भविष्यति। प्रधानमंत्री श्री मोदी शुक्रवासरे संयुक्त अरब अमीरात देशस्य राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। उभौ नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतः ऊर्जा सहकारे परस्पर हितानां क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयेषु च विचार विनिमयं करिष्यतः। गुजरात राज्ये जनगणनायाः प्रथमः चरणः जून मासस्य प्रथम दिनांकात् आरभ्यते। जून गुजरातस्य गांधीनगरे वार्ताहरान् संबोधयन् जनगणना परिचालन निर्देशकः सुजल जे मायात्रा इत्येषः अवदत् यत् राज्य जनगणना परिचालन निदेशालय जनगणना 27-2000 वर्षस्य कृते सज्जतां करोति। प्रथमवारं भारत सर्वकारेण आरब्धस्य सर्व स्वयं गणना पोर्टल इत्यस्य माध्यमेन जनगणनायां भागं ग्रहीतुं नागरिकेभ्यः अवसराः प्रदीयन्ते। मई मासस्य 17 दिनांकात् 31 दिनांक पर्यन्तं जनाः अस्मिन् पोर्टले स्वीयां स्वयं गणनां पूरयितुं शक्नुवन्ति। अस्य उपक्रमस्य अन्तर्गतं नागरिकाः स्वेच्छया स्वगृहाणां उपलब्ध सैविध्यानां संपत्तीनां अन्य विवरणानां च सूचनाः सरलतया सुरक्षितरूपेण सरलरीत्या च ऑनलाइन इति आभासीय माध्यमेन पूरयितुं शक्नुवन्ति। क्रिकेट प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य सायंकाले अहमदाबाद नगरे गुजरात टाइटन्स अथ च सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति। एषा क्रीडा सायं 7:30 आरप्स्यते। इति वार्ताः।
1: अभी आपने सुना संस्कृत में समाचार, जिसे हमने अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव की।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
1: गुंजेश्वर गांव के कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं शारदा सिन्हा व सखियों की आवाज में ये पारंपरिक लोकगीत।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: अपना वाहन चला

0: करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट हैं।
1: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें, गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध न करें।
0: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल ना करें और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुने।
1: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
0: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आके अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
1: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
0: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
2: कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं ये बाल श्रम गीत।

इसी के साथ लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव की यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। स्टूडियो की घड़ी में 6:45 होने को हैं। अब हमारे किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: किसान महिला बहनों जय हिंद।
7: पूजा।
6: हाँ लीला।
7: सूरज के तपन तेज है, धरती भई अंगार, तबई याद आवत है झट से ठंडा ठंडा पिए पदार्थ।
6: वाह लीला बहनी, का बात कहियो। नींबू पानी के चुस्की माँ, पुदीना के स्वाद निराला बाय, लू से बचावे ठंडक पहुंचावे, इस शीतल पेय के प्याला बाय।

0: हम पूजा का बात है और जनते बाटी ऐसे थी घाम कितना जोर के मुड़े में लागत है कि ना। और जब कहूँ राही बिराही आदमी जब जाय आवत है भाई कोनो कारबूत भाई मने के परबे करत है जाय आवे लागत है तो या तो भाई जोर जोर छा हेरत है पेड़े का है कि ना।
1: बिल्कुल।
0: और जब पेड़े के नीचे सुहताए लिए थे बैठ के तो यह मन कहा था बहनी ना कि अब है
1: जोर जोर हाँ
0: कुछ पिए का मिल जाए तनी तरी हो जाए जीव माँ।
1: एकदम बात सही कहा तू बहनी। तरी तरावट के जहाँ तक बात है बाहर मने निकरत है तो ठंडे चीज हेरे लागत है। लेकिन एक बात बताई जोन बहरे बाजार में मिलत है ठेला पे मिलत है दुकान इन पे तमाम मेर मेर के ठंडा पे पदार्थ मिला करत है ये जान ले कि वो कोनो भी तरह से कहते सुरक्षित ना रहते स्वास्थ्य के तय।
0: बिल्कुल।
1: बढ़िया तब हुए कि जब हम सब ही ओका अपने घर में तैयार करके ओके आनंद लीन जाए तो भाई देखा ओके आनंद के साथ साथ अपन सेहत भी बनावा जाए।
0: अब पूजा देखा जाके जैसे आनंद के जोन बात की हूँ ना तो हमका तो वो दिन याद है बहनी ना जब हमारे सब आमे के पेड़ के नीचे जात रहे दोपहरिया माँ तो ऐसे झोर के आम झोर मतलब कहा तो ना ढेला मारो जल्दी से आम बटोरो ठीक है जे जितना पावत रहा सब इकट्ठा करत रहा और ओका लाए के बढ़िया पानी से धोए धाए के जुड़वाए के ओका और जब अपने सब आगे मुका भूजत रहन याद हुए तो हूँ का बहनी।
1: बिल्कुल याद
0: भूज के बढ़िया से ओके आम जब छिलका उलका उतार के साफ सफाई के करिया नमक उमक डारी के बढ़िया से पना जब बनावा जात रहा और बैठ के जब पिया जात रहा तो भाई आनंद ही आनंद रहा।
1: आनंद हो कितना फायदा है बहनी। आम के पना देखा गर्मी से कितना राहत पहुंचावे था और अगर केहू के लू जैसे दोपहरिया में निकले पड़ जाते मने निकला था पर बहुत कारबूत रात है अपने सब कहाँ तक छाए बैठा रहा जाए तो मने बाहर निकला था तो घाम से बचत के तो पूरे इंतजाम करे चाहिए लेकिन लू से बचावे में आम के पना के बहुत बड़ा हाथ रहा है और भाई एक पिए में स्वाद एक है तो का कहने तो बहनी लोग बखूबी जाना थी और ये समय है एक मौसम है आम के पना पिए और एक लाभ उठावे
0: और इतने ना है पूजा आम एक पनक साथ ही साथ मेर मेर के पेय पदार्थ अपने बहनी लोग जो सुघड़ होती ना वो घर ही में बनाए धरे रहा थी। कलिया हमारे एक बहनी के फोन आवा रहा वो बतावे लगी कहीं की हम सौंफ का जो है बढ़िया से भाई साफ सफाई कर ली थे ओमन बादाम है और ये मिश्री है और पता नहीं कौन कौन बहनी दो चार चीजें है तो हमारे दिमकवा से उतर ही सोचे लिख लिया भाई लेकिन ना कह पाए कहा तो कि बनाए के हम भैया उमा हाँ गुलकंद वगैरह डारा थी या गुलाब के पत्ती झुरवा के डार देते थी ओका पीस पास के धै लिए थी और कहा थी ना कि संझा सवेरे जब उनका भाई पिए खाए कोनो चीज मन कहा था तो उल्टा सीधा चीज खाए तो भाई बचे के चाहिए मने का।
1: बिल्कुल।
0: तो वो कहा थी पनिया में दो चम्मच वही डाल लिए थी और बढ़िया से घुमा लिही चाहे दूधे माँ और पी ली ना कहा थी तरावट इतना मिलत है बहनी ना कि कुछ पूछे लायक ना
1: तरावट के साथ साथ ताकत भी भरपूर।
0: हाँ ताकत
1: तो ये सब चीज बहनी अपने बहुत बढ़िया से जाना थी इतने ना है बहनी देखा बहुत सारी चीजें हैं जैसे बेल के शरबत है इस मौसम चलत बाटे बेल देखा अपने पेड़न में तैयार भाया बाजार से खरीद लाइन और बाजार में पिए के बजाय ओका घर में तैयार करके पिया जाए स्वाद के स्वाद और सेहत के खजाना। तो बेल के शरबत पिए आम के पना पिए और एक चीज नेबुआ के शरबत पिए बहनी पुदीना के बहुत बड़ा हाथ रहा था ये शरबत का बनाने में छाछ है लस्सी है देखा एका कुल बने के मटका में पानी भर लियो और हम कहे थे कि फ्रिज अगर ना है फ्रिज के पानी ना पी मिलत बाटे मटका के पानी पियो शीतल पे और भाई तरावट की तरावट देते हो माटी के गुड़ भी मिलत है हमारे सबन का तो फ्रिज के पानी से ज्यादा कहा थे ना फायदेमंद होते मटका के पानी।
0: हाँ।
1: तो हम सभी मटका के पानी पी जाए अपने बच्चन में भी एक आदत डाला जाए।
0: और पूनम पूजा बहनी इतने ना है कहा थी ना कि सत्तू
1: हाँ?
0: अब जैसे सवेरे सवेरे मने कहा था रोटी परेठा खा लो भैया घटेई तक भाई खा लीज मनी खवा तो ना खाओ लीज मान ले नीक लाग भाई चटकने चटनी पटनी सब लेके मने खाई पीस तो पेट तो भरिन जाए लेकिन ओकरे बाद ही कहा था मने मन कहा था कि लाओ सोइन जाई है कि ना दोपहरिया में लेकिन ओकरे जगह अगर नाश्ता में हन सवेरे भाई भर पेट सत्तू जोन होते कहा थी ना ओका पानी निहाय घोर बना लियो और वही में पुदीना पीस के डाल दियो।
1: हाँ
0: पुदीना पीस के डाल दियो थोड़ के आम के चटनी टाइप का बना के डाल दियो अनुपात हुए वही हिसाब से खाए पी लिए तो कहा थी निक तो पेटो भरा रहा।

0: और दूसरे दहिया कहन समल्या हर एक अंग समल्या शीतलता ओका मिल जाते
1: मिल जाते हैं। वैसे भी जौ के सत्तू है चना के सत्तू ये सब में जो है एक तत्व पावा जाते हैं जिसका फाइबर कहा जाता है ऐसा जो की हम सब इनका भोजन का पचावे में बहुत बड़ा एक हाथ रहा है तो ये सब चीज मिला था तो गुड़न के खान है बस हम सभी एक जानी समझी के सेवन करियो अपने बच्चन में भी एक आदत
0: सही बात है। हम तो कहते कि अपने बच्चन का बतावे चाहिए कि भाई देखा ये जो दुकानी उकानी मिला था मेर मेर के
1: बोतलवा
0: मिले पाउच में मिले वो कल लाए के घट से पी ले हैं घामे से दौड़ के आई है खेल कूद के या स्कूले से अरे का खरीद दिया हमें जैसे भैया रहीम
1: बच्चे कहा थे की बर्फ वाला आया बर्फ खरीद दिया बर्फ भी बहनी हमारी दवा जमा सकते
0: चीज मतलब अगर कहा जाए की तो अपन जो सुगर बहनी लोग हैं वो खाली मतलब बताऊ
1: बिल्कुल सही बात है। अपने बच्चन का तमाम हानिकारक चीज जो उनकी डिब्बा बंद बाजार में मिलत बाटे उसे हम सब चाहिए तो अपने बच्चन के बचा सकी थे उनका हेल्दी कहा थे स्वास्थ्य वर्धक चीज का खिया पिया सकी थे
0: बिल्कुल सही कहो। लेकिन बहनी अब देखा कुछ और अपने बहनी लोगन बदे हुए तो भाई वह का अपने बहनी का सुनवा चला जाए।
1: अरे बिल्कुल है देखा अब आपन बहनी लोगन के कार्यक्रम लेके आए और बहनी बदे अपने पिटरिया में कुछ सामान ना हो कुछ जानकारी ना हो ऐसा हो ना सकत देखा एक बत कही लेके आए किसान बहने अचार मुरब्बा बनाकर लाभ कमाए और ये जो जानकारी दे रही है डॉक्टर स्नेहा सिंह बहनी से मंजू मौर्य बहनी बतिया रही है तो ये जानकारी चलो बहनी लोग भी ले साथे साथे हम रहू सब सिखा जाए।
0: हाँ बिल्कुल सिखा जाए
2: पर हम सभी रोजे अपनी पंचायती माँ बहनन बदे बढ़िया बढ़िया जानकारी देवे बदे मेरे मेरे के डॉक्टर बहनी का बलावा करी थी ठीक है इसने आज अपनी पंचायती माँ आई है डॉक्टर स्नेहा सिंह जो उनकी बीएम मेमोरियल डिग्री कॉलेज अम्बेडकर नगर से ही। सबसे पहले तो डॉक्टर बहनी आपका पंचायती माँ स्वागत है स्वागत के हैं के साथ हैं हम आपसे जानब की जैसे की आज हमारा विषय भी है की कि किसान बहने अचार मुरब्बा बनाकर लाभ कमाए। सबसे पहले आप हमारे बहन को बता जाए की अचार और मुरब्बा बनावे के व्यवसाय हमारे बहने शुरू कर रहे हैं और वैसे में कितना आमदनी ले सकते हैं कितना लाभकारी उनके ताई है हमारे बहनन का बताओ चले।
3: सभी किसान महिला बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि अचार मुरब्बा का व्यवसाय महिला किसान अगर करती है तो उन्हें कितना लाभदायक होता है तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो अचार मुरब्बा का व्यवसाय है महिलाओं के लिए वो बहुत ही लाभदायक है और साथ ही साथ उनको आत्मनिर्भरता भी उनको देता है वो आत्मनिर्भर हो सकती है और अपने लिए कुछ रोजगार भी शुरू कर सकती है। ये जो व्यवसाय है ये कम पूंजी में घर से ही शुरू किया जा सकता है क्योंकि खाली समय होता है तो जो बहनें हैं हमारी वो आसानी से इसको कर सकती हैं। इसमें वे कच्चा माल जो होता है वो स्थानीय स्तर से आसानी से उनको उपलब्ध भी हो जाता है और देखा जाए तो जो फल और सब्जियों को अचार और मुरब्बे के रूप में जब वे तैयार करती हैं तो उनकी कच्चे माल से उस उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है तो उनको अधिक मुनाफा होता है और साथ ही साथ ये जो व्यवसाय है पोस्ट हार्वेस्ट जितने भी जैसे तोड़ाई के बाद जो भी नुकसान हमारे फल सब्जियों में होता है उनको रोकता है तो उससे क्या होता है कि हम उत्पाद तैयार कर लेते हैं तो उसकी कीमत बढ़ गई और साथ में जो हमारे फल और सब्जियां हैं उनका नुकसान को भी वो रोकने के लिए बहुत लाभदायक होता है संरक्षण हो जाता है।
2: लेकिन जैसे आप बताएं कि किसान बहने जो ये अचार मुरब्बा बनाने वाली जो व्यवसाय है या शुरुआत घर से तो कैसे कैसे करती हमारे बहनों का बताओ। चलो
3: देखिए घर से ये बहुत आसानी से शुरू किया जा सकता है। सबसे पहले तो किसान बहनों को हमारे ये ध्यान देना है कि उनके क्षेत्र में कौन कौन से फल और सब्जियां उपलब्ध हैं वो उनका चयन करें जैसे कि आम है नींबू है हरी मिर्च है ये सब जो है बहुत आसानी से आसपास के उनके इलाकों में मिल जाता है। गाजर हो गया ठंडी और गर्मी के मौसम के हिसाब से वो इसका ध्यान दें उन्हीं सब्जियों का या उन्हीं फलों का ही चयन करें और पास के इलाकों में मिलने वाले ही फल और सब्जियों का उपयोग करें। दूसरी बात उनको क्या ध्यान देनी है कि साफ सफाई का बहुत ध्यान देना है। जैसे जब भी हम कोई चीज बना रहे हैं और आजकल क्या होता है कि जो हमारे लोग हैं वो कि साफ सुथरी चीजें होनी चाहिए और अगर हम कोई भी उत्पाद बना रहे हैं सफाई से नहीं बना रहे हैं तो उनमें फफूंदी लगने का या उनके सड़ने का जो वो ज्यादा बना रहता है डर तो इस चीज का इनको विशेष ध्यान देना है। सही विधि से अचार और मुरब्बा तैयार करना चाहिए उनको और सबसे महत्वपूर्ण बात यह क्या है कि उसकी गुणवत्ता और उसका मतलब उसमें किस तरह के मसाले कितना सामग्री पड़ना चाहिए उसका उनको सही जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों को अगर वो ध्यान रखती हैं उसके बाद से ये व्यवसाय शुरू करती हैं तो उनको हमेशा मुनाफा ही

0: मिलेगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर बनी तो वही मेरे से बनी है तो। लेकिन डॉक्टर बनी एक बात हम आपसे जानब कि अचार और मुरब्बा बनावे थी कौन कौन फल और सब्जी सबसे बढ़िया है हमारे बनन बदे बताओ। चलो
0: देखिए अचार और मुरब्बा बनाने के लिए बहुत सी ऐसी हमारी फल और सब्जियां हैं जो उपयुक्त तो होती हैं। सबसे पहला तो हमको ये देखना है कि वो स्वाद में अच्छी होनी चाहिए, उनकी गुणवत्ता अच्छी हो और आसानी से वो मिल सके और लंबे समय तक वही फल और सब्जियों को वो चुने जो लंबे समय तक संरक्षित किए जा सके। अब अगर अचार की हम बात करते हैं कि कौन कौन से फल और सब्जियां अचार के उसमें यूज किया जा सकता है, प्रयोग में लाया जा सकता है, तो आम हो गया, नींबू हो गया, कटहल हो गया, ठंडी के मौसम में आंवला मिलता है, करौंदा मिलता है, ये सारे सब्जियों का वो चयन कर सकते हैं, फलों का चयन कर सकते हैं, हरी मिर्च हो गया, लहसुन अदरक, इनका अचार बना सकते हैं। मुरब्बे की अगर हम बात करते हैं तो मुरब्बे में आम का भी मुरब्बा बनता है, बेल का भी मुरब्बा बनता है और सेब आपका पपीता इन सबके भी मुरब्बे बहुत ही आजकल डिमांड में है।
1: अच्छा
0: हाँ, तो इनका भी वो प्रशिक्षण लेकर के किसान विज्ञान केंद्र से और सरकारी योजनाओं के द्वारा ये इस प्रशिक्षण ले सकती हैं और इसको भी वो उपयोग में ला सकती हैं।
1: डॉक्टर बहनी एक बात हम आपसे और जानब कि ये व्यवसाय का अगर हमारे बहनी लोग शुरू करा चाहते हैं तो ये मन का लागत है कि उनका कितनी लागत लगावे का पड़े और कितना मुनाफा मिले बताओ। चले
0: यदि किसान बहने हमारी जो है वो छोटे स्तर से शुरुआत कर रही है, घर से शुरुआत कर रही है, लमसम 5,000 से लेकर के 20,000 तक का उनका खर्चा आता है। शुरुआती दौर पे तो उन्हें छोटे स्तर से ही शुरू करना चाहिए और आसपास के अपने बाजार में लोकल जो उनके मार्केट है, स्थानीय बाजार है, उनमें उसको ले जाना चाहिए बेचने के लिए और धीरे धीरे जैसे ही जैसे मांग बढ़ रही है, उत्पादन की क्षमता उनकी बढ़ रही है कि हम उत्पाद ज्यादा अमाउंट में बना सकते हैं, तब वो धीरे धीरे मशीनें खरीदें, मार्केटिंग में निवेश कर सकती हैं, बेहतर पैकेजिंग के लिए आय को लगा सकती हैं अपने। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये स्वयं सहायता समूह के मदद से भी और सरकारी ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं महिलाओं को दी जाती हैं जिनके माध्यम से वो प्रशिक्षण ले सकती हैं और आर्थिक सहायता भी उनको मिलती है जिससे वह अपने इस व्यवसाय को, अचार मुरब्बे के व्यवसाय को आसानी से शुरू कर सकती
1: हैं। मैंने उनका ऋण मिला था, उनका जानकारी,
0: इसकी जानकारी उनको करनी होगी।
1: बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर बहनी उत्पाद है उनका लंबे समय तक हमार बहने सुरक्षित रखे बदे वके ताई वे कौन उपाय अपनावे जैया उनके जो उत्पाद है कैसे सुरक्षित रख सके।
0: देखिए इसमें मैंने आपको ये बताया है कि लंबे समय तक किसी भी उत्पाद को रखने के लिए साफ सफाई
1: अच्छा
0: और सही संरक्षण विधियों का पालन करना बहुत जरूरी है। यदि किसान महिलाएं हमारी जो है बहने वो सही तरीका अपनाएंगी तो किसी भी उत्पाद को, जैसे अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, अगर इनके अलावा भी वो जैम, जेली, ये सब भी बनाती हैं तो उन उत्पादों को भी वो लंबे समय तक स्वादिष्ट भी रख सकती हैं और सुरक्षित भी रख सकती हैं। उनको सबसे पहले ध्यान देना है कि हमेशा वो ताजे फल का प्रयोग करें, ये ना हो कि 10 दिन पुराना फल है तोड़ा हुआ उसका वो उपयोग ला रही है अचार या मुरब्बे के लिए।
1: चोट ना लगे, हुए
0: चोट नहीं लगना चाहिए उसमें, कोई कीट वीट ना पड़े हो, कुछ भी, ये इन सब चीजों का ध्यान दें। बनाने से पहले जो सामग्री वो इकट्ठा कर रही है उनका और साथ में जो बर्तन वो प्रयोग में ला रही है उनका भी अच्छे से ध्यान दें कि वो साफ सुथरी है कि नहीं है। बर्तन हमेशा सूखे होने चाहिए, नमी वाले एरिया के पास जगहों पर वो अपने उत्पाद को ना रखें और समय समय पर जो उत्पाद उन्होंने तैयार किया है उनका वो जांच करती रहें कि अगर कुछ भी सड़न या आप ये कह सकते हैं कि फफूंदी लग रही है तो वो उसको सही समय पर ही उसका इलाज कर सकती हैं, उसको सही कर सकती हैं।
1: बिल्कुल। लेकिन उनका देखत रहा है कि परे हमारे बहनन का निगरानी में रखी थी तो निगरानी रखे का है तभी हम सभी अपने सामान का उत्पाद का बचा सकी थी। लेकिन डॉक्टर बहनी किसान बहने मार जो ये उत्पाद का बाजार तक कैसे पहुंचा सकतीन, कितना आसानी से पहुंचा सकतीन का कुछ यस है
0: जी। जो हमारे किसान बहने हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि अचार और मुरब्बा जैसे जो उत्पाद हैं वो बाजार तक बहुत से आसानी तरीके से पहुंचाए जा सकते हैं। पहला तो वो अपने स्थानीय स्तर पर दे सकती हैं और बेच सकती हैं, अपने जान पहचान में जो है उनको दे सकते हैं, गाँव में उनको ला सकती हैं, तो उससे क्या होगा कि घर घर प्रचार होता है कि भाई उनके यहाँ से अचार आया, वो अचार बनाते हैं, वो बहुत अच्छा बनता है। होता है उनका, और सीधा वो जो लोकल उनके मार्केट है दुकानदार है उनसे भी वो बात कर सकती हैं, और किसान मेला लगता है वहां पर भी वो ला सकती हैं, और आपका ये हाट बाजार होता है, प्रदर्शनी होती है, उन सब जगह भी बाजार में ला सकती हैं उनको। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो आजकल सोशल मीडिया का बहुत जमाना है, तो वो अपने उत्पाद का प्रचार फेसबुक इंस्टाग्राम है व्हाट्सएप है उस पर भी कर सकती हैं, सही तरीके से उसका अपने उत्पाद

0: के फोटो खींच करके डाल दें, उसके बारे में पूरी जानकारी दें और व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप के माध्यम से वो जो ग्राहक है उनसे सीधे संपर्क में आएंगी और उस ऑर्डर को अपने लगा सकती हैं और वो अच्छा खासा उससे आमदनी भी ले सकती हैं।
1: डॉक्टर बहनी, यह व्यवसाय महिला का जो हमारा किसान महिला बहनी है, कौन कौन यह सरकारी योजना है वो के लाभ मिल सकता है और मिल सकता है तो कैसे?
0: जी, अचार मुरब्बा जैसे जो व्यवसाय हैं, खाद्य व्यवसाय जो हैं, उनमें महिलाओं को बहुत से ऐसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है जिसमें उनको सीधा प्रशिक्षण और सब्सिडी हो गया, मार्केटिंग सहायता मिलती है। अगर हम मुख्य योजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए सहायता, आर्थिक सहायता दी जाती है। दूसरा, अगर हम योजना की बात करें तो महिला किसान सशक्तिकरण योजना होता है, इसमें भी उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहायता दी जाती है सरकारी योजनाओं के तहत। मुद्रा लोन योजना है, इसमें क्या होता है कि आप ये कह दीजिए कि कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है और वो जिसके मदद से वो अपने कच्चा माल है या अन्य आवश्यक सामग्री उनको भी खरीद सकती है। किसान क्रेडिट कार्ड है, तो ऐसी, और एफपीओ के माध्यम से, इसमें क्या होता है एफपीओ के माध्यम से कि वो जितने भी किसान उत्पादक संगठन है उनसे वो सीधा महिलाएं किसान हमारी जुड़ करके अपने उत्पादों को बेहतर पैकेजिंग और ब्रांडिंग से उसकी मार्केटिंग कर सकती हैं। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो मदद करती हैं हमारी किसान महिलाओं के लिए।
1: डॉक्टर बहनी, लेकिन ये जो पोस्ट हार्वेस्ट आप तो इधर पहले बता रही
0: जी,
1: इसे का होते का नुकसान का कम करे में अचार मुरब्बा का निर्माण कैसे मदद करता है?
0: देखिए, पोस्ट हार्वेस्ट जो नुकसान है उनको रोकने के लिए, कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है हमारा कि हम उसका अचार मुरब्बा बनाएं या उनका इस तरह से संरक्षित करें। देखिए, जो भी हमारे उत्पाद है, कच्चा माल है, कई बार होता है आम है बहुत ज्यादा उसका पैदावार हो गई है और वो मार्केट में उतना नहीं बिक रहा है, ना उतना बिक्री उसकी हो रही है, ना उतना प्रयोग समय पर हो रहा है, तो उनमें सड़न पैदा होने लगती है, वो सड़ना चालू कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमारे जो किसान महिलाएं हैं या किसान भाई लोग हैं उनको आर्थिक नुकसान बहुत उठाना पड़ता है। तो इस स्थिति में वे फल और सब्जियों को अचार या मुरब्बा के रूप में लंबे समय तक के लिए सुरक्षित कर देती हैं, उसको रख सकती हैं। और उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जैसे आम हो गया, नींबू हो गया, गाजर हो गया, करौंदा, जैसे ये जो है जितने भी फल हैं सब्जियां हैं इनको वो संरक्षित करके लंबे समय तक रोका है उन्होंने, और साथ में ही जो कच्चे माल का जो उनको मुनाफा, मतलब आमदनी मिल रही थी, उससे कहीं 2 गुना 3 गुना ज्यादा उनको उसमें मुनाफा होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो इससे क्या होता है कि हमारे पोस्ट हार्वेस्ट जितने भी नुकसान हो रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है और साथ ही साथ वो आत्मनिर्भर हो ही रही हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर बहनी, आप कितनी बढ़िया बात बताएं, लेकिन चलत चलत आप हमारे महिला बहन का क्या कहा चाहिए कि ये काम शुरू करें और उसे पूरा लाभ लें?
0: जी देखिए, मैं यही बताना चाहूंगी कि जो हमारी किसान महिलाएं हैं जो पहली बार ये व्यवसाय शुरू कर रही हैं अचार मुरब्बे का, तो उन्हें सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि वो छोटे स्तर से शुरू करें, एक साथ बड़े स्तर पर ना करें, छोटे स्तर से करें, कम मात्रा में ही उत्पाद बना करके ध्यान दें कि उनके उत्पाद की गुणवत्ता और जो स्वाद हो उस पर विशेष उनको ध्यान देना है। साफ सफाई, सही मात्रा में मसालों का और अच्छी पैकेजिंग का जरूर ध्यान दें, क्योंकि जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी ग्राहक उतना ही उसकी तरफ खिंचता है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसका वो अवश्य ध्यान दें और महिलाएं जो है वो स्थानीय और मौसमी फल का, सब्जियों का उपयोग करें, इसमें लागत तो कम होगी और उनको अधिक, आप ये कह सकते हैं कि लाभ मिलेगा।
1: बिल्कुल
0: जी, और बाजार की, साथ ही साथ वो बाजार की क्या मांग है उसको भी उनके लिए समझना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, अगर आपके ये बात का हमारे बनी लोगे ध्यान में रखिए तो हम जाने थे कि भविष्य में वह ये काम कह के, ये व्यवसाय अपनाए के बढ़िया लाभ ले सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बिल्कुल सही चेताएं डॉक्टर बहनी। आप डॉक्टर स्नेहा सिंह, आप कृषि वैज्ञानिक भी रही और आप बीएम मेमोरियल डिग्री कॉलेज अम्बेडकर नगर से हैं। आप हमारे बहनन का आइन कम समय में किसान बहने अचार मुरब्बा बनाकर लाभ कमाए, यह विषय पर पूरा जानकारी दी। एक बार आपका पंचायती की वारी से और किसान महिला बहनन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पूजा।
3: हाँ लीला।
2: जौन जानकारी रही किसान बहने अचार मुरब्बा बनाकर लाभ कमाए, डॉक्टर स्नेहा सिंह बहनी और मंजू मौर्य बहनी, कितना बढ़िया से मतलब एक बताई हुए और कितना बढ़िया से पूछी एक एक चीज कि कैसे अपन बहनी लोग है उसे लाभ ले सकती।
3: बिल्कुल सही बात है, मौसमी जोन फल है, सब्जी है, कैसे समय राहत हम सबे ओके संरक्षण के लिए ओका जोगे ले सालों सालों के इस्तेमाल की जाए और 4 पैसा के आमदनी भी कमाओ जाए।

0: एक अग्रित प्रशिक्षण वगैरह भी मिलत है और हाँ। तमाम योजना भी है कि हम सभी जो है कुछ काम कही के अपना आर्थिक स्थिति का मजबूत की जाए।
1: बिल्कुल।
0: तो देखा बहनी बात बत कही गीत गुनाई के साथ है, भाई फिर हाजिर हुआ जाए, लेकिन यह अंतराल के बाद।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
3: परम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: लीला बहनी।
1: हाँ बहनी।
0: देखा हम अपने पंचेती में जो बहनी लोग बैठी हैं, इनके मन के बात हम बूझ ली थे बहुत जल्दी।
1: अरे भाई तो समझदार तो है ये बाटी,
0: बेसब्री से इनका इंतजार बाटे कि आज लीला पूजा तुम जो काउ बतुआत है कि जो है गोनी उनी नहीं सुनवा रही हैं।
1: अरे नहीं भाई, तो बतुआओ ना जल्दी से, उनका बियाहु गीत सुनवाए दो ना।
0: अंजू मिश्रा और सखी इनकी आवाज में सुना जाएगी दोनों।

0: पूजा
1: हाँ बेटी
0: लागल जनकपुर के मेला देखे मेरा मनवा करेला
1: बिल्कुल मन बाद में मेला देखे का करे पहले देखो ही जोन बाजार के भाव अपने अयोध्या मंडी से मिली बा अपने बहनी लोगन कहे के बतावत चलो
0: बिल्कुल चाउर के जोन भाव रहा 3060 रुपया प्रति कुंतल गेहूं के 2585 रुपया मक्का पीली वाला 2300

0: 390 रुपया, उड़द काली जोन है 8,970 रुपया प्रति क्विंटल,
1: और देसी चना रहा 6,340 रुपया, मसूरी के भाव रहा 6,900 रुपया, अरहर के दाल के भाव रहा 10,900 रुपया, आलू उजर की रही 700 रुपया प्रति क्विंटल और ललकी प्याज रही 1,290 रुपया प्रति क्विंटल,
0: टमाटर के भाव 1,700 रुपया प्रति क्विंटल, लहसुन रहा 6,840 रुपया, तरोई के भाव 2,420 रुपया, खीरा के रहा 1,670 रुपया प्रति क्विंटल, बैगन रहा 2,250 रुपया, हरियर मिर्च 3,000 रुपया प्रति क्विंटल,
1: कद्दू के भाव रहा 1,430 रुपया, अदरक 5,100, शिमला मिर्च के भाव रहा 2,500 रुपया, और भिंडी रही 1,800 रुपया, लौकी रही 1,570 रुपया, और करेला रहा 1,280 रुपया प्रति क्विंटल,
0: केला पक्का वाला 2,550 रुपया प्रति क्विंटल, नेबुआ के भाव रहा 9,600 रुपया, पपीता के भाव रहा 2,600 रुपया, सेब के भाव 11,000 रुपया प्रति क्विंटल, अनार के भाव रहा 8,200 रुपया, गुड़ बट्टी 4,900 रुपया प्रति क्विंटल, और चीनी के भाव रहा 4,140 रुपया प्रति क्विंटल।
1: और यही के साथ ही लीला बहनी देखा ये मौसम के हाल मिला हुआ है। कृषि मौसम विज्ञान विभाग आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से, अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा और न्यूनतम 27 डिग्री रही, सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 83% रही है और न्यूनतम 48% रही है,
0: हवा की गति 4.3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, हवा की दिशा दक्षिणी पूर्वी और जो है पूर्वा अनुमान है आगामी 24 घंटा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंशिक बादल छावा रहे के संभावना है और वर्षा होए के संभावना नहीं है, औसत तापमान सामान्य से ज्यादा रहे के और हवा के सामान से वह सामान से तेज गति से पूर्वा चले के आसार है।
1: बिल्कुल देखा मौसम की जानकारी भय पे ना अपने खेती पाती में बहुत सुविधा रहा थे कि समय के हिसाब से हमें काम करे बटे तो उन्हें अपने उपज से हम भरपूर फसल से भरपूर उपज ले पाई।
0: हाँ।
1: और के साथ ही साथ जो हमारे गोरु बछरू हैं वो के पूरा देखभाल की जाए तो उन्हों से बढ़िया उत्पादन ले मिले। और लेकिन देखा घड़ी का इशारा है कार्यक्रम के समय होत बा समाप्त, लेकिन बहनी लोगन से विदा लीन जाए पहले बता दी काल जोन है अपन कृषि जगत कार्यक्रम हुए।
0: हाँ।
1: सुनम न भूलिए 6:45 से 7:15 के बीच में, तो देखा आगे यही कार्यक्रम में फिर कही हो मुलाकात, तब तक के लिए पूजा का
0: और लीला का देनमती जय हिंद।

0: ज्ञानवाणी कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी किसान भाइयों ने सुना अपना कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। लीजिए सुनिए आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत गुंजन। 9:15 पर होगा महफिल गजल। आज 9:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। 7:15 पर कार्यक्रम विवरण। 7:30 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। 8:15 पर आप सुनेंगे सुर संगम। कल 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या, जिसमें कल आज की बात का विषय होगा तकनीकी से जुड़ी शिक्षा आज की आवश्यकता। भेंट वार्ता होगी अनियमित रक्तचाप से बचाव में आयुर्वेद की भूमिका। वार्ताकार होंगे डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह आयुर्वेदाचार्य। भेंट करता होंगे संजय धर द्विवेदी और होगा फिल्म संगीत व समाचार पत्रों से। कल 9:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। 9:30 पर होगा कार्यक्रम हेलो अयोध्या। कल 12:30 आप सुनेंगे लोक रंग। 1:00 होगा कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।

कल दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतांजलि। 2:30 पर होगा कार्यक्रम अंगना, जिसमें कल चर्चा का विषय होगा स्वयं बने जिम्मेदार नागरिक और होगा लोक सुरमाला। कल शाम 5 बजे हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवावाणी, जिसमें कल चर्चा का विषय होगा मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम विषय पर, और व्यक्ति विशेष में होगा आर के नारायण व खेल संसार। कल शाम 5:30 पर होगा कार्यक्रम लोक संगीत। 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शाम सुहानी। 6:30 पर होगा कार्यक्रम गूंजेश्वर गांव की। कल शाम 6:45 पर होगा कार्यक्रम कृषि जगत, जिसमें कल चर्चा होगी ऊर्जा संरक्षण पर और भेंट वार्ता होगी जायद की फसलों में सामयिक कृषि कार्य। उर्द मूंग लोबिया सूरजमुखी की खेती पर वार्ताकार होंगे डॉक्टर प्रेमनाथ जी और भेंट करता होंगे रामप्रीत निषाद। कल 8:15 पर आप सुनेंगे गीत गुंजन। 9:15 पर महफिल गजल और 9:30 पर होगा फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। ये थी हमारे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते। एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द। सीबीआई जांच के आदेश, नई परीक्षा तिथि का ऐलान जल्द। आगरा में यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूबे, 4 की मौत, 2 का उपचार जारी। जेठ महीने के दूसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में दिखा आस्था और सेवा का संगम। प्रमुख हनुमान मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित। आगामी 24 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और बिजली गिरने का अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित और राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

0: सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि वह सीबीआई के साथ पूरा सहयोग करेगी और जांच के लिए जरूरी सभी सामग्री, रिकॉर्ड और सहायता उपलब्ध कराएगी। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे और दोबारा होने वाली परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, सोने की खरीद को टाले।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज असम में नव निर्वाचित एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने नव निर्वाचित मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और मंत्रिमंडल के नव नियुक्त सदस्यों को उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में FIR दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है और मामले की जांच जारी है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। आगरा के थाना कमला नगर क्षेत्र में आज यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूब गए। पीएसी और गोताखोरों की रेस्क्यू टीम ने बच्चों को नदी से बाहर निकाल लिया। सभी को गंभीर हालत में SN मेडिकल कॉलेज भेजा गया जहां उपचार के दौरान 4 बच्चों की मौत हो गई। 2 बच्चों का उपचार जारी है। पुलिस उपायुक्त नगर सैयद अली अब्बास ने बताया कि सभी बच्चे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आगरा आए थे। राजस्व परिषद के अधीन लेखपाल के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 21 मई को राज्य के 44 जिलों में मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक की तरफ से जारी सूचना के अनुसार परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को आवंटित जिले की अग्रिम सूचना आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। चंदौली में बीते 24 घंटों में 3 लोगों की हत्या करने वाले व्यक्ति को बीती रात पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। मारे गए अपराधी ने 24 घंटों में ट्रेन में यात्रा करने वाले 2 लोगों और अस्पताल में भर्ती एक महिला की हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने बताया कि पूछताछ में अपराधी ने तीनों हत्याओं की बात कबूल की थी। ज्येष्ठ मास के दूसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में आस्था और सेवा का संगम दिखाई दिया। जनपदों के प्रमुख हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। अयोध्या में ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल के अवसर पर रामकोट परिक्रमा में श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ देखने को मिली। बिजनौर में जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रसाद बांटा। लखनऊ में भी बड़े मंगल पर हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: अलीगंज के पुराने और नए हनुमान मंदिर, हनुमान सेतु मंदिर, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर समेत अन्य मंदिरों को बड़े मंगल पर भव्य रूप से सजाया गया है। इन मंदिरों में सुंदर

0: और हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ का आयोजन किया गया। दिन में तेज धूप के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कमी नजर नहीं आई। शहर भर में सामाजिक संस्थाओं और व्यापारिक संगठनों ने जगह जगह भंडारों का आयोजन कर सेवा की परंपरा निभाई। भंडारों में प्रसाद वितरण के साथ शीतल पेय और पानी की विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं ने भी सेवा कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में आज हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं और आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से कई इलाकों में आवागमन बाधित हो गया। एक रिपोर्ट।
2: बदायूं जिले में जमकर बारिश हुई, जिस कारण जगह जगह पेड़ टूटने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। आज दोपहर जिले के कई इलाकों में अचानक घने बादलों के साथ आई तेज आंधी से जहां पेड़ टूटकर गिर गए, वहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। साथ ही बारिश को देखते हुए किसानों ने भी खेतों की जुताई शुरू कर दी है। मौसम के लगातार करवट बदलने से लोगों को गर्मी से भी काफी राहत मिली है। मोहम्मद नईम, आकाशवाणी समाचार, बदायूं।
1: मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आगामी 24 घंटों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने का अनुमान है।
3: आने वाले दिनों में अगर लखनऊ की बात करें तो मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप खिलेगी, लेकिन तापमान ऐसा कोई एक्सट्रीम लेवल तक का नहीं पहुंचेगा। हालांकि तापमान में यहाँ धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं प्रदेश की बात करें तो कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई बेल्ट में हल्का बूंदाबांदी, गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है, उसका सबब जारी रहेगा कल के लिए। उसके बाद मौसम आने वाले दिनों के लिए पूरी तरीके से साफ है। अब यहां से धीरे धीरे तापमान में हल्की हल्की आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

0: प्रदेश की बात करें तो कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई बेल्ट में हल्का बूंदाबांदी गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है, उसका सबब जारी रहेगा कल के लिए। उसके बाद मौसम आने वाले दिनों के लिए पूरी तरीके से साफ है। अब यहां से धीरे धीरे तापमान में हल्की हल्की आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
1: प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आज गोरखपुर में संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में सरकार, उद्योग जगत, निजी आईटीआई संचालकों और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने युवाओं को रोजगार परक और भविष्य आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को लेकर मंथन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला कौशल विकास संस्थान है। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित माटी कला कौशल विकास योजना के अंतर्गत रामपुर में 15 दिवसीय विशेष शिल्पकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। योजना के तहत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में माटी कला कार्य से जुड़े कुम्हार और परंपरागत कारीगरों को आधुनिक तकनीक, आकर्षक डिजाइन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन एवं विपणन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इच्छुक कारीगर 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच के आदेश, नई परीक्षा तिथि का ऐलान जल्द। आगरा में यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूबे, 4 की मौत, 2 का उपचार जारी। जेठ महीने के दूसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में दिखा आस्था और सेवा का संगम, प्रमुख हनुमान मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित, आगामी 24 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और बिजली गिरने का अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: अभी आपने सुना प्रादेशिक समाचार, जिसे हमने अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। लीजिए सुनिए मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

धुरंधर द रिवेंज। अब सुनिए इस फिल्म का गीत, आवाज और संगीत खासाब और शाश्वत सचदेव की, बोल नुसरत फतेह अली खां के।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से
2: मैंने पढ़ा।

0: कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आपने विक्की चंदेल का लिखा और संगीत बद्ध किया गीत सुना, आवाजें कनिका कपूर और विक्की चंदेल की थी। इसी के साथ ही पॉप एक्सप्रेस कार्यक्रम यही समाप्त होता है।

0: श्रोताओं, आज हवा महल में आपको सुनवाते हैं मदन मोहन खन्ना की लिखी झलकी विश्व प्रेमी सम्मेलन। निर्देशक दीना नाथ।
1: अरे यहाँ इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई? अरे अरे अरे अरे हैं? अरे सिर्फ भीड़ ही नहीं, यहाँ तो एक शानदार पंडाल भी खड़ा हो गया। तो क्या यहाँ कोई सम्मेलन हो रहा है? लेकिन लहरों के मेले में सम्मेलन जैसी गंभीर चीज का क्या काम? लेकिन ठहरिए, पंडाल के बाहर लगे इस बोर्ड को जरा पढ़कर तो देख लूं। मोटे मोटे अक्षरों में हमारे मित्र मदन मोहन खन्ना लिख रहे हैं विश्व प्रेमी सम्मेलन।
2: विश्व प्रेमियों के सम्मेलन में मैं आप सब डेलीगेट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों, ये पहला अवसर है कि संसार भर के प्रसिद्ध प्रेमी एक साथ एक स्थान पर इकट्ठे हुए हैं। हर प्रेमी को इजाजत है कि वो दिल खोलकर अपनी दास्तान गम सुनाए, ताकि संसार सुने और देखे कि उसने दो दिलों को ना मिलाकर क्या जुल्म किया है। प्रेमियों का हृदय बड़ा कोमल होता है, वो बड़े भावुक होते हैं, इसलिए जो प्रेमी दूसरे प्रेमियों की दर्दनाक दास्तान सुनकर या अपनी प्रेमिका को याद करके रोना चाहे, वो कृपा करके पंडाल से बाहर चले जाएं, क्योंकि प्रेमियों के आंसू कोई मामूली आंसू नहीं होते, एक एक किलो का आंसू होता है जनाब। रोने पे आए तो नदियां बहा दें, पंडाल में कहीं बाढ़ ना आ जाए इसलिए पंडाल के बाहर आंसू खाने यानी वीपिंग बूथ लगाए गए हैं। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हर प्रेमी स्वयं स्टेज पर आकर अपना परिचय दे। आप आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए पधारिए।
3: जी मैं फरहाद हूँ।
4: फरहाद
2: प्रेमियों, भाइयों, आपके सामने विश्व के प्रसिद्ध प्रेमी फरहाद खड़े हैं।
5: खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ।
6: आप ठीक कहते हैं, मुझे कुछ भी न मिला, पहाड़ खोद कर उसमें मैंने नहर बनाई।
7: अकेले?
6: जी हाँ, बिल्कुल अकेले। और साहब अंदाजा लगाइए, मेरे पास पेशे यानी कुल्हाड़ी के अलावा कुछ नहीं था।
7: क्या पहाड़ तोड़ने के लिए डायनामाइट या बुलडोजर अवेलेबल नहीं थे?
6: अजी साहब छोड़िए, कोई हाथ बटाने वाला भी नहीं था।
7: ओ हो, इतना बड़ा डैम बना

0: आने के लिए कोई एड भी नहीं मिला आपको?
1: एड? आप सहायता की बात करते हैं? खैर साहब, 20 साल की मेहनत के बाद नहर तो बन गई, मगर एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई।
0: वो क्या मिस्टर?
1: मुझे हुक्म हुआ कि मैं नहर में पानी की जगह दूध डालूं।
0: वो किस लिए मिस्टर?
1: ताकि शर्त के मुताबिक वो मेरी बनाई हुई नहर में नहा सके।
0: ओ आई सी, दूध में नहाए।
2: हाँ, ताकि दूधो नहाए और पूतो फले।
0: मिस्टर फरहान, शीरी के डैडी ने आपको स्विमिंग पूल बनाने के लिए क्यों नहीं कहा?
1: मैं क्या बताऊं साहब, मैं शीरी का प्रेमी हूँ, शीरी का डैडी नहीं।
0: आई एम सॉरी। अच्छा साहब, फिर क्या हुआ?
1: अब और कुछ नहीं कहा जाता, कलेजा मुंह को आता है, बेसाख्ता मेरी जबान से शेर निकला ही चाहता है। मर जाएंगे पर हम कभी शिकवा न करेंगे, सर देंगे मगर यार को रुसवा न करेंगे, हम हश्र में इस खून का चर्चा न करेंगे।
3: आप कहाँ चले आ रहे हैं? आप नहीं जानते ये विश्व प्रेमी सम्मेलन है?
4: जी मैं भी एक प्रेमी हूँ।
3: आप और प्रेमी?
4: और प्रेमिया तो कोई खास मोर लगी होती है? मैं महिवाल हूँ।
3: महिवाल?
0: सोनी के अलावा?
4: जी
3: सोनी के दीवाने महिवाल।
2: भाई इन्हें मंच पर आने दिया जाए।
5: भैया भारतवर्ष से डेलीगेट है।
4: प्रेमियों, मैं भी आपकी तरह सताया हुआ एक प्रेमी हूं। मैंने भी सोनी को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। आपको शायद मालूम नहीं, मेरी सोनी नु कबाब खान का बहुत शौक थी, और एक दिन जब मुझे उसको मिलना था, मैं कोई मछली ना पकड़ सका। बस चला, मैंने अपनी जांग काट कर कबाब बनाया और अपने हाथों से सोनी की नजर की।
0: लेकिन मिस्टर महिवाल, जब सोनी आपकी दीवानी थी तो फिर आपको समाज के खिलाफ क्या शिकायत?
4: आप सुनिए तो सही, सोनी की ननद को हमारा मिलना ग्वारा ना था। उसने हमारे खिलाफ एक बड़ी खतरनाक चाल चल ली। सोनी के दरिया पार करने वाले पक्के कड़े की जगह और उस कमबख्त ने कच्चा कड़ा रख देता।
0: मिस्टर महिवाल, क्या मिस सोनी को तैरना नहीं आता था?
4: जी नहीं।
0: What a pity. तो उसके पास स्विमिंग बेल्ट भी नहीं था, बिल्कुल का इंतजाम कर लिया होता मैन। फिर क्या हुआ?
4: फिर वही होया जो हम जैसे प्रेमियों के साथ होंदा आया है, वो डूब गई। मैंने दूसरे किनारे से छलांग भी लगाई पर उस ताई पहुंच ना सकिया, और हम दोनों कट्ठे इस जालिम समाज के पंजों से आजाद हो गए।
0: आपने तो मरकर दुनिया से खलास पाया, मगर हमारे साथ जो समाज ने जुलम किया वो आप सुन भी नहीं सकेगा।
3: ये आप सुनाए, हम सब सुन लेंगे।
2: आप हैं कौन साहब?
5: कौन साहब?
2: आप कौन साहब हैं?
0: जी मैं रोमियो।
2: रोमियो भाइयों, प्रेमियो, सुनिए, अब आपके सामने यूरोप के प्रसिद्ध प्रेमी रोमियो खड़े हैं।
6: तो क्या आप अपने साथ वो सास भी लाए जिन्हों छेड़कर अपनी जूलियट को खिड़की तले बुलाते थे?
2: जरा सुनाइए तो हम भी सुने वो धुन।
0: वो नगमा मेरी प्यारी जूलियट के लिए था, अब किसके लिए बजाऊं?
2: बजाइए बजाइए, शर्माइए नहीं, तबले पर संगत मैं कर दूंगा। बजाइए।
3: अगर आप सुर में नहीं है तो ना सही, ये प्रेमी सम्मेलन है, संगीत सम्मेलन।
2: कौन हो तुम?
1: मैं हूँ दीवाना।
2: हाँ
1: दीवाना हूँ, लैला का सौदाई।
3: आइए मजनू साहब, मंच पर आइए, यहाँ तशरीफ लाइए। हाँ, और अपने लंबे आश की तजुर्बे से फैजियाब कीजिए। आइए ना।
1: क्या मुझे मेरी लैला मिलेगी?
3: देखिए मिस्टर कैश, ये विश्व प्रेमी सम्मेलन है और आप हमारे निमंत्रण पर भारत आए।
1: नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपनी लैला को ढूंढने आया हूँ।
0: मिस्टर मजनू, सुना है लैला कोई खूबसूरत लड़की नहीं था और रात की तरह एकदम डार्क था।
1: जी हाँ, इसीलिए उसका नाम लैला रखा गया। मेरे दिल और आँखों पे किया जादू मोहब्बत ने, मुझे अंधा बनाया लैला तेरी सावरी सूरत ने।
0: लेकिन मिस्टर मजनू, हमारा मतलब है एक काली सी लड़की जिसके लिए आपने दीवानेपन का रिकॉर्ड कायम कर रखा है, आखिर उसमें क्या था ऐसी बात?
1: मिस्टर रोमियो, लैला के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। लैला की खूबसूरती देखनी है तो मजनू बनकर देखो, मजनू की निगाहों से देखो, साज बजा कर नहीं।
0: देखिए मिस्टर मजनू, मेरे सास के बारे में कुछ

0: साथ?
1: जी हाँ, अब आप इत्मीनान से पंडाल से बाहर जाकर आंसू खाने में अपनी अपनी प्रेमिकाओं को याद करके खूब आंसू बहाएं। हमें इजाजत दीजिए, हमें आपके तजुर्बे से कुछ नहीं लेना। बाय बाय।
2: ओ मैम,
0: प्रेमियों, भाइयों, आइए सब आंसू खाने में आंसू।
3: विश्व प्रेमी सम्मेलन, मदन मोहन खन्ना की लिखी ये झलकी अभी आपने सुनी। निर्देशक थे दीना नाथ। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अयोध्या के इंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। स्टूडियो की घड़ी में 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हमसफर, आकाशवाणी अयोध्या।
3: घर घर जन जन तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
4: जग घूमे थर जैसा न कोई।
2: ये है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
3: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
0: गीत गुंजन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को गणेश सिंह का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं ऐतराज फिल्म से। आवाजें हैं उदित नारायण अलका याग्निक की, गीत है समीर का, संगीत दिया है हिमेश रेशम।

गीत गुंजन कार्यक्रम का अगला गीत ये सुनते ही फिल्म आन से आवाजी हैं उदित नारायण सबीर कुमार सारिका कपूर और उज्ज्वला की संगीत दिया है अन्नू मलिक ने।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम महफिल गजल। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन EIR ऐप पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
2: अब के शहर में भरोसेमंद इलाज
3: कैंसर हृदय डायलिसिस हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त
2: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा
3: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायबरेली रोड अयोध्या। कॉल करें 90-44-20-70-70।
4: सुनत है सखी सुनत है कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास।
5: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
4: हाँ जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
5: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
6: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
0: हेलो अयोध्या कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को गणेश सिंह का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं आप हमसे बातें करने के लिए हमारे नंबर 7376-8040-90 पर कॉल कर सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी पसंद के नगमे। और देखिए हमारे एक कॉलर लाइन पर आ चुके हैं, हम इनसे बातें करेंगे। हेलो हेलो जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? हेलो हेलो हेलो, लगता है हमारे श्रोता लाइन से कट गए हैं, हमारी इनसे बातें नहीं हो पा रही हैं। कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए 7376-8040-90 इस नंबर पर आप हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी पसंद के नगमे। और हमारे एक और कॉलर लाइन पर हैं, हम इनसे बातें करेंगे। हेलो हेलो लगता है हमारे कॉलर हमारी लाइन से डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, बातें नहीं हो पा रही हैं। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा।

0: हमारे एक और कॉलर लाइन पर हमसे जुड़ चुके हैं, हम इनसे बातें करेंगे। हेलो हेलो हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं?
1: बोलिए सर।
0: हेलो
1: हाँ बोलिए।
0: जी, नाम बताएं अपना। हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हमसे एक कॉलर जुड़े हुए थे, मिस्टर विशाल शर्मा जी, जिनसे हमारी बातें नहीं हो पा रही हैं, इनकी आवाज़ हमें नहीं मिल पा रही है। हेलो, आवाज़ आ रही है? अपना नाम
1: हाँ जी
0: बताएं।
1: आवाज आ रही
0: अच्छा, विशाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं विशाल जी? जी विशाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: अयोध्या हनुमानगढ़ी नजरबाग से।
0: अयोध्या हनुमानगढ़ी नजरबाग से। और बताइए, क्या करते हैं आप?
1: सैलून का काम है सर।
0: सैलून का काम करते हैं, साथ में रेडियो भी सुनते रहते हैं?
1: डेली सुनते हैं।
0: अच्छा, डेली सुनते हैं। कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं हमारे यहाँ के? कौन से कार्यक्रम आपको पसंद हैं आकाशवाणी अयोध्या के? अच्छा जी, गाना कौन सा आज आप सुनना पसंद करेंगे? सनम बेवफा का कौन सा गीत? अच्छा, टाइटल सॉन्ग आपको सुनना है। चलिए, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: दीवाने।
1: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
0: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
2: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
3: क्या आप चाहते हैं आपकी

0: को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
0: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
2: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
3: ayodhyaakashwani@gmail.com।
4: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
5: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
6: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: हमारे एक और कॉलर हमसे लाइन पर जुड़ चुके हैं आज के इस हेलो अयोध्या कार्यक्रम में। हेलो हेलो
9: हेलो
8: जी, कौन बोल रहे हैं? और बताइए विजय पाल जी, क्या हाल चाल हैं आपके? अभी मिल रही है? और बताइए क्या हाल चाल हैं आपके? क्या चल रहा है?
9: इस समय गन्ने की गुड़ाई चल रही है।
8: गन्ने की गुड़ाई चल रही है, धूप बहुत होती है, कैसे गुड़ाई करते हैं?
9: गुड़ाई तो इनको पहले पहले उसमें जुटवा देते हैं।
8: हाँ,
9: और उसके बाद में जो हिस्सा छूट जाता है उसको मशीन से उसकी खुदाई कर देते हैं तो सुविधा हो जाती है।
8: अच्छा जी, मतलब स्वयं भी करते हैं और बैल से भी उसकी जुताई भी करवाते हैं, मतलब आपने सुनियोजित ढंग से गन्ने की बुआई की है, लाइन बाय लाइन, है ना? हाँ, तभी तो ऐसा संभव हो पाता है। ये बताइए, वहाँ भी धूप खूब निकल रही है या कुछ मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है? अच्छा, अच्छा जी, तो गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिली होगी।
9: अरे नहीं, बूंदाबांदी होने के बाद में बहुत बहुत तेज गर्मी लगी।
8: गर्मियों में बूंदाबांदी होती है तो ऐसा होता है। अब ठंडा है, चलिए इस ठंडे मौसम में क्या सुनना पसंद करेंगे? गीत कौन सा सुनेंगे आज आप? चलिए आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तेज धूप और बढ़ती गर्मी इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी मुश्किल समय लेकर आती है।
1: आइए इन पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर और छत पर किसी खुले बर्तन में स्वच्छ पानी और चिड़ियों के लिए दाना रखें।
0: अपने घर के आसपास जानवरों को पानी और भोजन दें, शेड लगाकर छांव की व्यवस्था करें और घायल पशु पक्षियों की मदद करें।
1: आपकी छोटी सी पहल इन बेजुबान पशु पक्षियों की जिंदगी बचा सकती है।
0: आइए इस गर्मी इंसानियत दिखाएं,
1: जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का ध्यान रखें।
0: छोटा सा प्रयास बड़ा उपकार।
1: पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से ही सजे ये संसार।
2: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
3: हेलो अयोध्या कार्यक्रम, आप सुन रहे हैं गणेश सिंह के साथ। कार्यक्रम में बने रहने के लिए हमारे नंबर 7376 8040 90 पर कॉल करें। और देखिए एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो
4: जी,
3: क्या नाम है आपका? शिवकार जी, कहाँ से आप बात कर रहे हैं? बालापुर गोंडा से। अच्छा अच्छा जी, नंदिनी कॉलेज के पास। क्या करते हैं आप शिवकार जी? घर पे रहते हैं, तो ये बताइए पढ़ाई करते हैं या कुछ तैयारी वगैरह चल रही है?
4: पढ़ाई नहीं करते।
3: अच्छा, पढ़ाई नहीं करते हैं?
4: नहीं सर।
3: अच्छा, तो अभी क्या करते हैं? पढ़ाई नहीं करते हैं तो क्या करते हैं?
4: सर कुछ नहीं करते, घर पे रहते हैं।
3: घर पे ही रहते हैं
4: जी सर।
3: कितनी उम्र है आपकी शिवकार जी?
4: क्या सर?
3: आपकी उम्र कितनी है?
4: उम्र हमारी 20-22 साल है।
3: 20-22 साल है, तो मतलब कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है आपने कि नहीं किया है?
4: नहीं सर, कुछ नहीं पढ़ाई की।
3: कुछ नहीं, ऐसा क्यों? आपने पढ़ाई बिल्कुल क्यों
4: नहीं? सर आँख में थोड़ा हमारे दिक्कत था।

0: थोड़ा ना, इसलिए हम पढ़ाई कर पाए।
1: अच्छा जी, आप आंखों से देख नहीं सकते हैं इसलिए आपने पढ़ाई नहीं
0: हाँ
1: की।
0: सर, हाँ इसीलिए पढ़ाई नहीं कर पाए सर।
1: तो फोन कैसे लगाते हैं आप,
0: क्या सर
1: फोन कॉल कैसे करते हैं?
0: जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी सर।
1: आप फोन कैसे करते हैं जब आप देख नहीं पाते हैं, तो फोन कैसे लगाते हैं
0: देखने
1: आकाशवाणी
0: में
1: में?
0: बहुत कम दिखाई पड़ता है
1: अच्छा, दिखता है लेकिन बहुत कम दिखता है।
0: जी सर।
1: चलिए, गाना कौन सा आप सुनेंगे आज?
0: जी राजा हिंदुस्तानी फिल्म सर, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी सर, धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्कार जी।

अभी आपने सुना कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत खेल दर्पण हमारे लखनऊ।

हमारी निगाहें टिकी रहती हैं और महज भारतीय क्रिकेट प्रेमी ही नहीं पूरे क्रिकेट जगत में सभी खेल जानकार विशेषज्ञ पूर्व खिलाड़ी तथा आम खेल प्रेमियों के मध्य इस वक्त यदि चर्चा का कोई सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है तो वह आईपीएल ही है। वर्ष 2008 में अपने प्रारंभ के समय जिस आईपीएल की वैश्विक ब्रांड वैल्यू करीब $2 बिलियन यानी 1700 करोड़ रुपए हुआ करती थी वो आज बढ़कर लगभग 6 गुनी यानी $12 बिलियन हो चुकी है जो कि भारतीय मुद्रा में तकरीबन 10,200 करोड़ रुपए बैठती है। वर्ष 2008 में बीसीसीआई ने कुल 8 फ्रेंचाइजी टीमों के साथ आईपीएल के आयोजन की शुरुआत की थी। यह वो समय था जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में T20 फॉर्मेट का चलन प्रारंभ ही हुआ था। उस वक्त तक विश्व स्तर पर क्रिकेट में मुख्यतः 5 दिन के टेस्ट मैच और 50 ओवर प्रति पारी वाले एक दिवसीय मुकाबले ही लोकप्रिय हुआ करते थे। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठा था कि क्या T20 फॉर्मेट वाली आईपीएल व्यावसायिक रूप से अपने कदम जमा पाएगी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ यह सारी आशंकाएं निराधार साबित हुई। आईपीएल न केवल व्यावसायिक रूप से बेहद कामयाब साबित हुई बल्कि इसकी आशातीत सफलता ने पूरी दुनिया में T20 क्रिकेट को भी लोकप्रियता के चरम पर पहुंचा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, आईपीएल की सफलता ने दुनिया के दूसरे क्रिकेट बोर्डों को भी व्यावसायिक कामयाबी की एक नई राह दिखाई और नतीजा यह हुआ कि आने वाले सालों में दुनिया के अन्य कई हिस्सों में भी आईपीएल की तर्ज पर प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीगों के आयोजन शुरू हो गए। इस तरह के कुछ प्रमुख टूर्नामेंटों में ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग, इंग्लैंड की इंग्लिश क्रिकेट लीग, दक्षिण अफ्रीका की SA20, पाकिस्तान की PSL और वेस्टइंडीज की कैरेबियन प्रीमियर लीग के नाम लिए जा सकते हैं। इनके अलावा श्रीलंका, USA, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल के क्रिकेट बोर्डों ने भी अपने यहाँ प्रोफेशनल T20 लीग के आयोजन प्रारंभ किए। ये अलग बात है कि इन तमाम लीगों में से अधिकांश व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाई और कुछ सीजन के बाद बंद हो गई। दरअसल आईपीएल की जबरदस्त व्यावसायिक कामयाबी के लिए जिम्मेदार है इसका सुव्यवस्थित ढांचा और अनुभवी प्रोफेशनल टीम जो कि मैदानों और क्रिकेटरों के प्रबंधन से लेकर प्रसारण, टिकट बिक्री, प्रचार और आर्थिक मुद्दों तक आयोजन के प्रत्येक पहलू को बड़े प्रभावी ढंग से संभालती है। इस सामूहिक प्रयास का ही परिणाम है कि साल दर साल आईपीएल की प्रसिद्धि, लोकप्रियता और व्यावसायिक कामयाबी में बढ़ती ही जा रही है। आज यह न सिर्फ विश्व की सबसे महंगी क्रिकेट लीग बन चुकी है बल्कि दुनिया भर की तमाम प्रोफेशनल खेल लीगों में भी चौथे नंबर पर आ गई है। ब्रांड वैल्यू के हिसाब से आईपीएल ने इंग्लैंड की मशहूर फुटबॉल लीग इंग्लिश प्रीमियर लीग को भी पीछे छोड़ दिया है। वर्ष 2008 में

0: आठ टीमों के साथ आईपीएल का पहला सीजन खेला गया था। उस वर्ष शेन वॉन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर खिताब जीता था। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें कुल मिलाकर 5-5 बार आईपीएल चैंपियन बनने में कामयाब रही हैं और उनके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 बार आईपीएल खिताब जीता है। समय के साथ आईपीएल में उतरने वाली टीमों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई, साथ ही टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि और विभिन्न टीमों द्वारा अपने प्रमुख खिलाड़ियों को दी जाने वाली अनुबंध राशि भी कई गुना बढ़ चुकी है। 2008 के पहले सीजन में जहां टूर्नामेंट का टाइटल प्रायोजक बनने के लिए डीएलएफ समूह ने प्रतिवर्ष 40 करोड़ रुपए की बोरी लगाई थी, वहीं आज टाटा समूह ने 2024 से 2028 तक के 5 वर्षों के प्रायोजन अधिकार 500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष में हासिल किए हैं। लेकिन आईपीएल की सबसे बड़ी खासियत यह है, अपनी लंबी कामयाब यात्रा के दौरान अब यह महज एक खेल टूर्नामेंट नहीं रहा है बल्कि एक बहुत बड़ा व्यावसायिक अवसर बन चुका है, जिसका लाभ असंख्य व्यक्तियों कॉरपोरेट हाउसेज को होने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी इससे कई रूपों में लाभान्वित हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं उन युवा क्रिकेट प्रतिभाओं की, जिनके लिए आईपीएल के जरिए से सर्वोच्च मंच पर अपनी काबिलियत साबित करने का एक सुनहरा मौका हाथ लगा। इस मंच पर सही वक्त पर चमक जाने वाले कई युवा खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के द्वार भी खुलते देखे गए और इनमें देशी और विदेशी दोनों ही तरह की प्रतिभाएं शामिल थी। विभिन्न टीमों द्वारा अनकैप्ड खिलाड़ियों को भी अच्छी खासी रकम में अनुबंधित किए जाने की जो परिपाटी आईपीएल ने शुरू की, उसकी बदौलत क्रिकेट को करियर बनाने का ख्वाब देखने वाले युवाओं की संख्या में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। युवा प्रतिभाओं के अलावा खेल से अवकाश ले चुके पूर्व दिग्गजों के लिए भी आईपीएल ने संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। ऐसे तमाम नामचीन खिलाड़ी आज कमेंटेटर, तकनीकी विशेषज्ञ, कोच के रूप में विभिन्न फ्रेंचाइजी टीमों के साथ जुड़कर अपनी आजीविका चला पा रहे हैं। अब बात करते हैं देश की समग्र अर्थव्यवस्था पर आईपीएल के प्रभाव की। एक प्रमुख अखबार के सर्वे के मुताबिक आईपीएल के जरिए से देश में लगभग 12.5 लाख रोजगारों का सृजन हुआ है। इनमें होटल, पर्यटन, टैक्सी, खानपान तथा विज्ञापन सेक्टर में बने अवसर शामिल हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में अप्रैल और मई के 2 महीनों में, जबकि आईपीएल का सीजन अपने पूरे शबाब पर होता है, उस दौरान देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि देखी जा रही है। सीजन के दौरान विभिन्न फ्रेंचाइजी टीमों के लिए खेल रहे विदेशी स्टार खिलाड़ियों के प्रशंसक उनका प्रदर्शन देखने के लिए निश्चित रूप से भारत पहुंचते हैं। यदि देश की अर्थव्यवस्था और जीडीपी में आईपीएल के प्रत्यक्ष योगदान की बात करें तो अब तक आईपीएल प्रबंधन, आयकर व जीएसटी के रूप में भारत सरकार को करीब 3,500 करोड़ रुपए की कर राशि अदा कर चुका है। इसे भी आईपीएल के एक सकारात्मक योगदान के रूप में देखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आईपीएल आज की तारीख में महज एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक व्यापक जीवन दृष्टि अर्थात परसेप्शन की शक्ल ले चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर तो वो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ढंग से प्रभाव डाल ही रहा है, साथ ही इसके अनूठे बिजनेस मॉडल ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे दुनिया के दूसरे क्रिकेट बोर्डों को भी समृद्धि की एक नई राह दिखाई है।
1: श्रोताओं, खेल न केवल शारीरिक मजबूती प्रदान करते हैं बल्कि मानसिक मजबूती के साथ व्यक्तित्व विकास में भी ये योगदान करते हैं। इनसे ऊर्जा का सदुपयोग होता है और आजकल खेल एक शानदार करियर विकल्प भी बन गया है जो युवाओं को न केवल नाम बल्कि अच्छी आय भी प्रदान करता है। बस आवश्यकता है प्रतिभाओं को खोजकर एक मंच देना और कुशल प्रशिक्षण प्राप्त करके वे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनकर अपना नाम रोशन कर सकते हैं। जनपद मथुरा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हैं, उन्हें उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, आइए सुनते हैं जिला खेल अधिकारी राकेश यादव से की गई ये बातचीत। इनसे बातचीत कर रहे हैं जितेंद्र सिंह।
2: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि यहाँ जिला खेल कार्यालय से जुड़कर जो खिलाड़ी हैं वो किस तरह का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
3: हमारे यहाँ सुबह और शाम, सुबह 5:30 बजे से 9 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक प्रशिक्षण का कार्य चलता है, जिसमें हमारे पास 8 कोचेज हैं, फुटबॉल, हॉकी, फेंसिंग, जूडो, बॉक्सिंग, कुश्ती, एथलेटिक्स, ये सारे और स्विमिंग के। हम लोग 8 लोग हैं तो बच्चे आते हैं यहाँ रोज प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने यहाँ चले जाते हैं और उनको जितने भी हमारे कोचेज हैं सब बहुत डिसिप्लिन और अनुशासित हैं, बच्चों को

0: स्किल पर और उनकी फिजिकल फिटनेस पे काम किया जाता है तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे बच्चे प्रतिभाग करते हैं।
1: और वर्तमान में हमारे जिले के खिलाड़ियों के लिए विभिन्न खेलों से संबंधित किस प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं?
0: हमारे पास सभी ग्राउंड आधुनिक तरीके से बने हुए हैं, जैसे फेंसिंग का है, उसमें पिस्ट वगैरह है जो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, जूडो है, जूडो का हॉल है, मैट्स हैं, कुश्ती है, कुश्ती का हॉल है, मैट्स हैं, तो सारे उन मानकों पे है जो एक बाहर खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेता है। तो वो हमारी सरकार साथ में बहुत अच्छे सहयोग कर रही है, खेलों को आगे बढ़ा रही है, खेलों में बहुत सारे पुरस्कार सरकार के द्वारा, सरकार नौकरियां भी खेल कोटे से देने लगी है, ये सब है।
1: जिला खेल कार्यालय से खिलाड़ी किस प्रकार से जुड़ सकते हैं इसके बारे में और बताएं?
0: बड़ी सरल प्रक्रिया है, हमारे यहाँ जो कोचेज हैं आठों खेल के या और अन्य खेल के, तो उनमें आता है बच्चा एक 18 साल से नीचे है, वो 210 रुपए उसका पूरे साल का कार्ड बनता है, जो हमारे यहाँ फीस एक है सरकार द्वारा निर्धारित, उससे लेके 210 रुपए में पूरे साल का एक कार्ड वो अपना प्रशिक्षण प्राप्त करने लगता है। सुबह शाम आके वो कार्ड आइडेंटिटी कार्ड रहता है, मिनिमम फीस है, आ सकता है और अपना रजिस्ट्रेशन करा कि जिस खेल में इच्छुक है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। उस पे फिर हमारे कोचेज उस बच्चे पे काम करते हैं, काम करके वो बच्चा हमारे जिले के लिए, हमारे मंडल के लिए, हमारे राज्य के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए खेलता है।
1: जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर आते हैं सीधा अपना यहाँ जुड़ सकते हैं या वो किसी स्कूल से संबंधित होना चाहिए?
0: ऐसा कुछ नहीं है किसी स्कूल से, लोकल बच्चे गार्जियन आते हैं अपने घर से बच्चे लाते हैं, जरूरी नहीं है कि स्कूल का बच्चा है, सारे बच्चे स्कूल में ही पढ़ते हैं तो वो इंडिविजुअल गार्जियंस ले आता है, कोई स्कूल नहीं आ रहा है, उनकी संख्या नहीं हो रही है तो वो सीधा आ सकता है, तो ऐसी कोई उसमें पाबंदी नहीं है।
1: वर्तमान में किस खेल में विशेष रूप से खिलाड़ियों की रुचि देखने को मिल रही है?
0: यहाँ जो बेल्ट है हमारी मथुरा की या मथुरा के आसपास की, वो कुश्ती वाली है, तो कुश्ती यहाँ का एक समझ लीजिए जनपद का खेल है, यहाँ के लोकल खेल है, तो कुश्ती में ज्यादा बच्चों की रुचि रहती है, तो यहाँ हमारा खेलो इंडिया का सेंटर भी कुश्ती का ही चल रहा है, तो उसमें बच्चे लाभान्वित होते हैं, खेलने जाते हैं।
1: और इसके अलावा और किन किन खेलों में खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा है?
0: एथलेटिक्स में है, फुटबॉल में है, सारे बच्चे, जूडो में है, बैडमिंटन में भी है, सारे खेलों में बच्चे पर्याप्त है।
1: यहाँ पर स्टेडियम में एक तरणताल बना हुआ है, उसमें क्या विशेष सुविधा है, क्या उसके लिए यहाँ विशेष कोच रखे हुए हैं?
0: बिल्कुल, स्विमिंग का मैं खुद हूँ तो मैं बच्चों को कोचिंग देता हूँ, लाइफ गार्ड है, उसकी प्रक्रिया आजकल में पूरी हो जाएगी, रेगुलर चालू हो जाएगा, अभी भी स्विमिंग पूल चल रहा है, उन बच्चों को एडमिशन है जो बच्चे स्विमिंग जानते हैं या स्विमिंग के खिलाड़ी हैं, उन सारे बच्चों को हम एडमिशन दे रहे हैं और चला रहे हैं स्विमिंग।
1: तैराकी में भी क्या कुछ विशेष रुचि देखने को मिल रही है?
0: हाँ, तैराकी में जो बच्चे हैं वो आते हैं, अपने कंपटीशन में भाग भी लेते हैं और अपना प्रैक्टिस करते हैं।
1: सरकार के द्वारा खेलो इंडिया जैसी योजनाओं का लाभ हमारे जनपद के खिलाड़ियों को किस प्रकार मिल रहा है?
0: पूरे इंडिया स्तर पर खेलो इंडिया भारत सरकार की स्कीम है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई है पूरे देश में, तो हर एक जनपद में अलग अलग खेल है। हमारे यहाँ कुश्ती का चयन हुआ है, जो कुश्ती खेल है वहाँ 30 बच्चों का चयन किया जाता है और उन 30 बच्चों को रेगुलर अभ्यास किट वगैरह हमारी सरकार द्वारा दिलाई जाती है, जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके बच्चों का पूरा ध्यान दिया जाता है।
1: ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में भी काफी ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी रहते हैं लेकिन उनको एक सही मंच नहीं मिल पाता है, तो ग्रामीण अंचल के क्षेत्रों में भी खेलों को लेकर क्या कोई विशेष योजना है?
0: जी बिल्कुल, विशेष योजनाएं इस बार जो विधानसभा स्तर पर विधायक खेल स्पर्धा, जिले स्तर पर सांसद खेल स्पर्धा, वो ही उसी का भाग है जो ग्रामीण अंचलों से जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं वो पहले विधानसभा स्तर पर भाग लेंगे, फिर सांसद खेल स्पर्धा वे जिले स्तर पर, और इसके बाद जोन स्तर पर आगरा में जोन होगी, फिर इसके बाद स्टेट होगी, ऐसे उन बच्चों को अवसर दिए जाते हैं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए और अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए।
1: मथुरा जनपद में मोहन पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम के अलावा अन्य जगह भी स्टेडियम वगैरह या अन्य सुविधाएं खेलों से संबंधित मौजूद हैं?
0: जी, जैसे हमारा एक समकक्ष विभाग है, हम लोग मिलके काम करते हैं, जिला युवा कल्याण अधिकारी, वो माट में उनका स्टेडियम है, कोसी में है, एक शेरगढ़ में है, तीन उनके बड़े स्टेडियम बने हुए हैं, वहाँ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, उनके बीओज वगैरह है तो उसको देखते हैं।
1: जो खिलाड़ी आर्थिक रूप से कमजोर है लेकिन वो प्रतिभावान है तो ऐसे खिलाड़ी अगर खेलों में आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या सरकार द्वारा उन्हें कुछ सहायता

0: या सुविधा उपलब्ध कराई जाती है?
1: जी बिल्कुल कराई जाती है, जूनियर स्तर पे, सब जूनियर स्तर पे और सीनियर स्तर पे। हमारे यहाँ एक क्लब क्रीड़ा कोष की व्यवस्था है, जो खेल साथी पोर्टल पे अच्छे बच्चे हैं जिनकी फर्स्ट से लेके सिक्स प्लेस तक पोजीशन है, वो राष्ट्रीय स्तर पे है और प्रतिभावान है, अच्छे खिलाड़ी हैं, गरीब हैं, उनको एक क्लब क्रीड़ा कोष के माध्यम से आर्थिक सहायता उनके उपकरण खरीदने पर, उनके भोजन पर, उनके अभ्यास हेतु मुख्यमंत्री द्वारा एक कोष बनाया गया है, उसमें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और यहाँ से चार तीरंदाजी में बच्चे हैं और दो कुश्ती में हैं, उनको लाभ अभी तक हम 14 लाख रुपए दे चुके हैं तीरंदाजी पे और लगभग 4 लाख रुपए कुश्ती पे।
0: इसमें राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार से भी कुछ सहायता मिलती है?
1: बिल्कुल, जब बच्चा अच्छा अचीव करने लगता है तो छात्रवृत्तियां हैं, खिलाड़ी को पुरस्कार राशि है जो हमारा विभाग सब देते हैं।
0: आगे आने वाली कुछ विशेष बड़ी प्रतियोगिताओं के बारे में बताना चाहेंगे?
1: अब इस साल 26-27 में बहुत सारी यहाँ राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, बहुत सारे ट्रायल्स होंगे, बहुत सारे जिले और मंडल स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी, तो उनमें हम लोग प्लान कर रहे हैं कैसे कराना है।
0: यहाँ जो खिलाड़ी जुड़े हुए हैं तो समय समय पर उनको प्रतियोगिताओं के बारे में और ट्रायल्स के बारे में सूचित किया जाता है?
1: बिल्कुल, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से खिलाड़ियों का जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनका प्रचार प्रसार करके अधिक से अधिक जनमानस तक हमारी बात पहुंचे, सरकार की बात पहुंचे। सरकार खेल के रूप में बड़ा काम कर रही है, तो वो बच्चे पार्टिसिपेट करें और प्रतियोगिताओं में भाग लें।
0: ऐसे अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा जोर देते हैं और उनको खेलों से दूर रखते हैं? देखा जा रहा है कि आजकल खिलाड़ी जो हैं खेलों में भी बड़ा देश का नाम रोशन कर रहे हैं और अपना अच्छा कैरियर बना रहे हैं, तो क्या संदेश रहेगा इसको लेकर आपका?
1: खेल में अनुशासित रहें बच्चे और अपना बेस्ट करें, ये नहीं देखें कि ये आइडियल, सबके आइडियल होते हैं, उनके भी आइडियल हैं, उन आइडियल को पकड़ें। जैसे आप एथलेटिक्स के हैं तो पीटी ऊषा वगैरह या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे, हमारे थ्रोअर हैं अभी चोपड़ा जी, उनका इतिहास देखें कि इतना कितना ये वर्क करते थे, जब ये सफल हुए तो उस पे फोकस करना पड़ेगा। बच्चों को जो ट्रेनिंग करने वाले हैं तो वो जरूर वो अचीव करेंगे जो उनने किया, नीरज चोपड़ा ने जो अचीव किया, हमारी उड़न परी कहलाने वाली पीटी उषा थी, उनने बहुत अचीव किया, हमारे नामी ग्रामी आप जानते ही हैं, दद्दा ध्यानचंद का नाम सुना होगा आपने, वो तो महान हस्ती थे। उनके जन्म दिवस पे हम लोग 29 अगस्त को बढ़िया खेल डे बनाते हैं और बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं कराते हैं।

0: और अब श्रोताओं खेल की सुर्खियों के साथ हैं हेमेंद्र कृष्ण शर्मा।
1: खेलों में सबसे पहले बात खेल हॉकी की। हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार 2025 समारोह में महिला टीम की स्टार फॉरवर्ड खिलाड़ी नवनीत कौर और पुरुष टीम के उपकप्तान हार्दिक सिंह को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। 1980 के मास्को ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य और पूर्व कप्तान जफर इकबाल को मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की दौड़ में हार्दिक के अलावा सुखजीत, संजय और अभिषेक शामिल हैं। 2025 की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब बलजीत सिंह पुरस्कार विदु देवी खारी बम को दिया गया, जबकि हॉकी इंडिया प्रगट सिंह सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का पुरस्कार संजय ने जीता। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर का अजीत पाल सिंह पुरस्कार सुमित को और सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड का धनराज पिल्ले पुरस्कार सुखजीत सिंह को मिला। सभी खिलाड़ियों को 5-5 लाख का चेक दिया गया। फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए 48 टीमें तैयार हो गई हैं। पिछले 2.5 साल से क्वालिफाइंग प्रक्रिया चल रही थी। उत्तरी मेक्सिको के मॉन्टरी में मंगलवार को खेले गए अंतर महाद्वीपीय

प्लेऑफ में इराक ने बोलीविया को 2-1 से हराकर 48वां और अंतिम स्थान हासिल किया। यह मैच बोस्निया हर्जेगोविना की यूरोपीय प्लेऑफ में 4 बार के चैंपियन इटली पर पेनल्टी शूटआउट में उलटफेर भरी जीत के कुछ घंटे बाद खेला गया। क्वालिफाइंग के आखिरी दिन यूरोपीय टीमें 4 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। विश्व कप के लिए क्वालिफाइंग करने वाली एक अन्य टीम कांगो थी, जिसने मेक्सिको में जमैका को 1-0 से हरा दिया। स्वीडन, तुर्की और चेक गणराज तीनों ने यूरोपीय प्लेऑफ में क्वालिफाइंग किया है। स्वीडन ने पोलैंड को 3-2 से, तुर्की ने कोसावा को 1-0 से, चेक गणराज ने डेनमार्क को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराया। विश्व कप 11 जून से अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। यह पहला अवसर होगा कि विश्व कप फुटबॉल में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज ने मेलबर्न में जबरदस्त कारनामा किया। वे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के चैंपियन बन गए हैं। 22 साल के अल्कराज ने पुरुष एकल के फाइनल में दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 2-6, 6-2, 6-2, 7-5 से हराया। अल्कराज का यह 7वां ग्रैंड स्लैम है। पहली बार उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर इतिहास रचा था। सर्बिया के जोकोविच का 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना टूट गया। हालांकि जोकोविच के पास हर रिकॉर्ड है। उन्होंने रोजर फेडर और राफेल नडाल को भी पीछे छोड़ दिया है। उनके पास सेरेना विलियम्स से एक और अधिक खिताब है। सेरेना के नाम 23 एकल खिताब है। जोकोविच टेनिस के दमदार खिलाड़ी रहे हैं। कोर्ट पर उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। उनकी सर्विस और बैकहैंड ड्राइव देखते ही बनता है। जोकोविच से आने वाले समय में भी बेहतरीन खेल देखने को मिलेगा। भारत में 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हॉकी और क्रिकेट को जरूर शामिल किया जाएगा, जबकि कबड्डी, योगासन, खो खो और मलखम जैसे पारंपरिक भारतीय खेलों में से 2 को जगह दी जाएगी। राष्ट्रमंडल खेल अध्यक्ष डोनाल्ड रुकारे की अध्यक्षता में इसके प्रतिनिधिमंडल ने पिछले सप्ताह मेजबान शहर अहमदाबाद में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने खेल मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की। हमारे पारंपरिक खेलों में से कबड्डी, मलखम, खो खो और योगासन में से 2 को शामिल करने का प्रयास है। ग्लासगो में इस साल होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में बजट में कटौती के कारण क्रिकेट और हॉकी को शामिल नहीं किया गया है। खेल मंत्री ने कहा कि भारत में होने वाले खेलों में इसकी वापसी होगी। भारत में अब खेलों को प्राथमिकता में रखा जा रहा है। भारत में 2010 के बाद राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो रहा है। भारत में फॉर्मूला 1 रेस की वापसी होगी। इसके लिए सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा। भारत में 2013 के बाद रेस नहीं हुई है। ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है। दिल्ली के 10 वर्षीय आरित कपिल स्पेन के मेनारका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता के अंतिम दौर में ऑस्ट्रेलिया के सैमुअल असाका के साथ ड्रॉ खेलकर अंतर्राष्ट्रीय मास्टर आईएम नाम हासिल करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। आरित ने यह उपलब्धि 10 साल 7 महीने की उम्र में हासिल की। प्रतियोगिता में आरित का सबसे शानदार प्रदर्शन अर्जेंटीना के 12 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय मास्टर ओरो के खिलाफ रहा, जिन्हें शतरंज की दुनिया का मेसी कहा जाता है। टिपेश सिंगेमन एंड कंपनी शतरंज टूर्नामेंट के 31वें संस्करण में भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरेगेसी ने शानदार शुरुआत करते हुए दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को पहले दौर में ड्रॉ पर रोक दिया। मैच के दौरान कार्लसन ने क्वीन साउंड पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने सटीक बचाव करते हुए 24वीं चाल चलकर पास्ट प्यादे के खतरे को खत्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने घोड़े को सक्रिय करते हुए स्थिति को सरल बनाया। रुक के आदान प्रदान के बाद सफेद मोरों के पास जीत का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं बचा और मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। ये टूर्नामेंट क्वालिफाइंग शतरंज के सबसे मजबूत आयोजनों में से एक माना जाता है। इसमें 2024 के विजेता नॉडरबैक, 2021 के चैंपियन जॉर्डन वान, फॉरेस्ट और स्वीडन के नंबर 1 खिलाड़ी निल्स जैसे दिग्गज खिलाड़ी खिताब के लिए मुकाबला कर रहे हैं।
क्रिकेट के खेल में आईपीएल का 19वां संस्करण चल रहा है। ये टूर्नामेंट मई के

0: तक चलेगा। इस समय आईपीएल टूर्नामेंट अपने रोमांचक दौर में चल रहा है। प्रत्येक टीम प्लेऑफ में आने के लिए संघर्ष कर रही है। टूर्नामेंट में अब तक 50 से ज्यादा मैच हो चुके हैं। इस समय में खेले जा रहे सभी टीमों के सभी मुकाबले टूर्नामेंट के लिए अहम माने जा रहे हैं। अभी तक पहले नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद, दूसरे स्थान पर पंजाब किंग्स, तीसरे स्थान पर आरसीबी और चौथे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स जैसे टीमें हैं। इस बार मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। बल्लेबाजी में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से वैभव सूर्यवंशी ने सभी को प्रभावित किया है। सूर्यवंशी ने आकर्षक क्रिकेट खेली है। सूर्यवंशी बहुत जल्द भारतीय टीम में खेलते नजर आएंगे। तिलक वर्मा, संजू सैमसंग, रिंकू सिंह ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। रिंकू सिंह ने कोलकाता नाइट राइडर्स की दो बार मैच में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। कोलकाता नाइट राइडर्स अभी तक अपना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाई है। आईपीएल क्रिकेट अपने चरम पर है। कौन जीतेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आईपीएल क्रिकेट भारतीयों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। खेल जगत में महीना उपलब्धियों और संघर्ष से भरा रहा। खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि मेहनत और समर्पण से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
1: श्रोताओं, खेल दर्पण के आज के इस अंक में बस इतना ही। आलेख वाचन और प्रस्तुति सहयोग देवराज कृष्ण दीक्षित का था। प्रस्तुतकर्ता थे ओपी सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र पर तैयार किया गया।

0: अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। आकाशवाणी का
1: अभी आपने सुना राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत खेल दर्पण, जिसे हमने अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

श्रोताओं सावधान रहें, प्रचार माध्यमों से हीट वेव लू के संबंध में जारी की जा रही चेतावनी पर ध्यान दें। हीट स्ट्रोक, लू लगना के लक्षणों जैसे कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, उबकाई, घबराहट, धड़कन और सांसों में तेजी, मूर्छा आदि को पहचानें। यदि उपरोक्त में से किसी भी लक्षण एवं हीट रैश, घमोरियों या हीट क्रैम्प मांसपेशियों में ऐठन का अनुभव करते हैं तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें। हाइड्रेटेड रहें, शरीर में जल की कमी से बचाव करें, अधिक से अधिक पानी पिएं। यदि प्यास न लगी हो तब भी पानी अवश्य पिएं। घर से बाहर जाते समय पीने का पानी साथ लेकर जाएं। ओआरएस घर में बने हुए पेय पदार्थ जैसे लस्सी, चावल का पानी, माड़, नींबू पानी, छाछ आदि का उपयोग करें, जिससे कि शरीर में पानी की कमी की भरपाई हो सके। जल की अधिक मात्रा वाले मौसमी फल एवं सब्जियों जैसे तरबूज, खरबूज, संतरे, अंगूर, अनानास, खीरा, ककड़ी, सलाद पत्ता, लेट्यूस इत्यादि का उपयोग करें। श्रोताओं, शरीर को ढक कर रखें, हल्के वस्त्र पहनें। अगर आप खुले में कार्य करते हैं तो धूप से बचाव के लिए शरीर को ढक कर रखें। सिर ढकने के लिए छाता, टोपी, तौलिया, गमछा आदि का प्रयोग करें। धूप में जाते वक्त आंखों की सुरक्षा के लिए धूप का चश्मा पहनें एवं पैरों के बचाव के लिए जूते चप्पल का प्रयोग करें। यथासंभव अधिक से अधिक अवधि के लिए घर, कार्यालय इत्यादि के अंदर रहें। उचित वायु संचरण वाले शीतल स्थानों पर रहें। सूर्य की सीधी रोशनी तथा शुष्क हवा को रोकने हेतु उचित प्रबंध करें। अपने घरों को ठंडा रखें। दिन में खिड़कियां, पर्दे तथा दरवाजे बंद रखें, विशेषकर घर तथा कार्यालय के उन क्षेत्रों में जहां सूरज की सीधी रोशनी पड़ती हो। घर, कार्यालय से बाहर किए जाने वाले कार्यों को सुबह और शाम को करने की

यथासंभव कोशिश करें शाम रात के समय घर तथा कमरों को ठंडा करने हेतु इन्हें खोल दें। जानवरों को छायादार स्थानों पर रखें तथा उन्हें पर्याप्त पानी पीने को दें। उच्च जोखिम समूह हेतु निर्देश, उच्च जोखिम वाले समूह जैसे कि एक वर्ष से कम आयु के शिशु तथा अन्य छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बाहरी वातावरण में कार्य करने वाले व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, विशेषकर हृदय रोगी अथवा

बीमार व्यक्ति विशेषकर हृदय रोगी अथवा उच्च रक्तचाप से ग्रस्त व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्रों में जा रहे हों, इस समूह के लोग सामान्य आबादी की तुलना में हीट वेव के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। इन समूहों के बचाव पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के अयोध्या के इंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। लीजिए सुनिए मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: तो दिल पे चले कटारी।
1: है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी,
0: झोंके चले तो दिल।

अभी आप सुन रहे थे मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में तत्पश्चात अंग्रेजी में, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशियाई की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।